من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए

0: Bay. Wake up. समर मॉर्निंग पर यू नीड टू वेक अप. सुनिए हर संडे से थर्सडे सुबह 6 बजे से समर मॉर्निंग आरजे नाजिया और महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पे. दिल से देसी.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.

0: क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: रोड ट्रैफिक सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाने और उसकी मजीद तरक्की के मुसलसल एफर्ट्स के सिलसिले में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की सरबराही असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बराए लैंड ट्रांसपोर्ट अफेयर्स अब्दुल्ला सैफ अहमद अल सुलैती कर रहे थे, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने रिसीव किया। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के डायरेक्टर कर्नल सालिम सुल्तान अल नुएमी भी मौजूद थे, जबकि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स भी इस मुलाकात में शरीक थे। दौरे के दौरान शरीका ने मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया जो रोड ट्रैफिक सेफ्टी के मियार को बुलंद करने के लिए की जा रही हैं और इन्हें मजीद बेहतर और तरक्की देने के तरीकों पर भी गौर व खौज किया गया। ये तमाम एफर्ट्स ट्रैफिक सेफ्टी सिस्टम की हिमायत और सड़कों पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के आला तरीन स्टैंडर्ड्स हासिल करने के लिए की जा रही हैं। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सर्विस जो मैतराश ऐप पर दस्तयाब है। कतरी व्हीकल ओनर्स शहरी और मुकीम अफराद को ये सहूलत फराहम करती है कि वो क्रॉसिंग के जरिए सफर के तमाम प्रोसीजर्स को आसानी और सहूलत के साथ मुकम्मल कर सकें। ये सर्विस ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को GCC मुल्कों से और मुख्तलिफ विजिटर्स को एड करने की सहूलत भी देती है, चाहे व्हीकल ओनर खुद सफर करने वालों में शामिल ना हो। ये सर्विस यूजर्स की खिदमात करने के लिए पेश की गई है। मैतराश ऐप के ट्रैवल विंडो के जरिए अबू समरा बॉर्डर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुहैया है, जो ट्रैवल के प्रोसीजर्स को आसान बनाती है और इंतजार के वक्त को कम करने में मदद देती है। मैतराश ऐप में ट्रैवल विंडो को ओपन किया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन

टाइप का इंतखाब करिए, एंट्री या एग्जिट, और उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन फॉर अबू समरा को सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद जरूरी मालूमात मुकम्मल की जाती हैं, जिनमें मुतवक्का सफर या पहुंचने की तारीख और व्हीकल का इंतखाब शामिल होता है। दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्फानी ने परमानेंट यूनिफाइड कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स कैंडिडेट्स का दौरा किया, जहां उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए क्वालिफाइड नेशनल टैलेंट्स की तैयारियों में कमेटी के अहम किरदार को सराहा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाईसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा, बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए।

चाहिए वो ये है कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। वजारत दाखिला की जानिब से 3 मार्च 2026 को जारी करदा प्रेस रिलीज की बुनियाद पर जो तमाम किस्म के एंट्री वीजा जो एक्सपायर हो चुके थे या एक्सपायर होने के करीब थे उनकी मुद्दत में तौसी के हवाले से जो ऐलान था, मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि तौसी का फैसला अब खत्म किया जा रहा है जो इतवार 7 जून 2026 से मुअस्सर होगा। वजारत दाखिला ने वाजे किया है कि मस्कूरा तारीख के तमाम किस्म के एंट्री वीजा के लिए मंजूर शुदा प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के मुताबिक दोबारा अमल शुरू कर दिया जाएगा जिनमें हर किस्म के वीजा की मुकर्रर मुद्दत और फीस भी शामिल है। मिनिस्ट्री ने तमाम मुकीम अफराद, विजिटर्स और मुतालिका पार्टी से दरख्वास्त की है कि अपनी लीगल स्टेटस की तस्दीक करें, वीजा की तजदीद को यकीनी बनाएं, मुकर्रर मुद्दत के अंदर फीस अदा करें या फिर अपने वीजा की वैलिडिटी खत्म होने पर मुल्क से रवानगी इख्तियार करें ताकि मुल्क में क्याम की इजाजत मुद्दत से ज्यादा ठहरने की सूरत में किसी भी कानूनी खिलाफवर्जी या कार्रवाई से बचा जा सके। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना निहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से फलांगे या पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक तरीके से बंद कीजिए। कभी बच्चों को पूल के पास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी की हालत में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके।
पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सकें। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल

0: ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। वजारत दाखिला का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादात या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, जरा सोचिए, एक जुमला है बिस्मिल्लाह। इस जुमले को कहने में शायद एक या दो सेकंड लगते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहने में भी सिर्फ चंद लम्हे, यानी पूरी सुन्नत अदा करने में शायद तीन या चार सेकंड ही लगते होंगे। इतना मुख्तसर अमल, लेकिन इसकी बरकत भी बहुत बड़ी है। आज हमारी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, हम घर में दाखिल होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है, जहन में कुछ काम होते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम खामोशी से घर में दाखिल हो जाते हैं, ना अल्लाह का नाम, ना सलाम, ना घर वालों से मोहब्बत भरा कलाम। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निहायत खूबसूरत तरीका सिखाया कि जब घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम लो और सलाम करो। सामिन किराम, यह अमल पूरे घर के माहौल को बदल देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज न तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह है और न खाना, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लिए बगैर

0: के लिए दुआ है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो, सुकून हो। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, आज हम दिमाग की सेहत और जहनी ताकत बढ़ाने के आसान जो रोज़ाना इकदाम किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग सेहतमंद रहे तो याददाश्त बेहतर होती है, फोकस ज़्यादा होता है और सोचने की सलाहियत तेज़ हो जाती है। हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पानी की कमी की वजह से फिर ब्रेन फोग हो सकता है। और अगर जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उससे हमारे सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। और जैसे हम एक्टिव होते हैं तो जो हमारा जो माइंड है वो स्टिमुलेट होता है। ऐसी खुराक जो अगर हम लें तो हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, अच्छी तरह से काम कर सकता है। जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, उसमें फिश है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें बेरीज और डार्क चॉकलेट भी है। विटामिन बी रिच फूड्स बहुत ही अहम हैं, उसमें एग्स हैं और लेग्यूम्स हैं। और इसी तरह से जो हमें चीज़ें नहीं लेनी उनमें शुगर है, ज़्यादा आप शुगर से जो है वो दूर रहिए। जब हम शुगर ज़्यादा लेते हैं तो एकदम से आप एनर्जी महसूस होती है कि आप एनर्जेटिक हो गए हैं, मगर कुछ देर के बाद अपने आप को क्रैश भी महसूस करते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ जो ब्रेन की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप कीजिए, जैसे कि पजल्स हैं और मेमोरी गेम्स हैं, वो अगर हम करेंगे तो ज़्यादा शार्प माइंड होगा। और इस तरह से रीडिंग करना और जो नए नए जो महारत है उसे सीखना, जो न्यू स्किल्स हैं उनकी तरफ जाना भी हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। इसमें जो ब्रेन का जो वर्कआउट है वो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि न्यूरो प्लास्टिसिटी कहते हैं। और शॉर्ट डेली जो मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप 5 से 10 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस भी करेंगे और बहुत जल्द चीज़ों तक पहुंच जाएंगे। और नींद बहुत ज़रूरी है हमारी जो

0: सेहत है उसके लिए 7 से 8 घंटे नींद जो है वो ज़रूरी होती है। और इसी तरह स्क्रीन जो है या स्क्रीन टाइम जो है, आप सोने से 1 घंटा पहले अगर आप बंद कर दें अपनी स्क्रीन्स, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और इसी तरह से आप जो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है तो उसमें मेडिटेशन है या जो डीप ब्रीदिंग है वो आप कीजिए। इसी तरह से आप वॉक कीजिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी वॉक हो, शॉर्ट हो सकती है। और इसी तरह से आप टाइम मैनेजमेंट जो है उस तरफ ज़रूर जाइए, और कोई भी काम कर रहे हैं तो टाइम को मैनेज कीजिए, उससे हमारी जो माइंड है उसमें क्लैरिटी आती है। तो हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन की सेहत के लिए बहुत छोटे छोटे जो रोज़ाना की जो हैबिट्स हैं वो हमें अपनानी है, और फिर अपने ज़हनी फोकस और याददाश्त को मजबूत बनाना है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। कतर स्पोर्ट्स लेजेंड्स के बारे में हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, और आज एक बहुत ही दिलचस्प एथलीट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। उनका नाम हर कोई जानता है, कतर में अगर आप मुकीम हैं डेफिनेटली यू नो नासिर सालेह अल अतिया। जी हाँ साहब, नासिर सालेह अल अतिया सबसे मशहूर और कामयाब मोटर रैली ड्राइवर्स में से एक है। उन्होंने मोटर स्पोर्ट की दुनिया में कतर का नाम रोशन किया और कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती हैं। इनफैक्ट मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप का ही इज द वन एंड द ओनली अनबीटेबल रैली ड्राइवर। नासिर सालेह अल अतिया ने FIA वर्ल्ड कप फॉर क्रॉस कंट्री रैलीज और मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में कई मरतबा खिताब अपने नाम किए। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी डकार रैली है, जिसे उन्होंने मल्टीपल टाइम जीता और दुनिया के टॉप रैली ड्राइवर्स में अपनी जगह मजबूत बनाई। तो नासिर सिर्फ रैली ड्राइवर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड ओलंपिक शूटर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ओलंपिक में यानी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कतर की नुमाइंदगी की और शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मुल्क को फख्र महसूस करवाया। मोटर स्पोर्ट में उनकी स्पीड, कंसिस्टेंसी और प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत उनको दूसरे ड्राइवर से अलग बनाती है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि नासिर सालेह अल अतिया नौजवान ड्राइवर नहीं है, ठीक है, 50 प्लस एज है, और इस उम्र में भी वो उतना ही चुस्त और फुर्तीला और फिट हैं कि आप अगर उनको ड्राइव करते हुए देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कई बड़ी टीमों के साथ कम्पीट किया और हर रेस में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। आज नासिर सालेह अल अतिया कतर के स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर जाने जाते हैं और नए एथलीट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशनल फिगर भी हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हम भी वो हैं जो कभी

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूर

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आरजे मावश और आज का टॉपिक है नमाज की अहमियत। नमाज इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट सुतून और बुनियादी इबादत है। ये दिन में 5 वक्त हमें अपने रब से जोड़ती है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये हमें गुनाहों से बचाती है, दिल को सुकून देती है और जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करती है। कुरान में फरमाया गया है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। आज की बिजी और तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग नमाज को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि असल बरका और कामयाबी नमाज में ही छुपी है। नमाज को हमेशा प्री रूटीन का सबसे पहला और अहम हिस्सा बनाएं। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे माविश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। एफएम 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, हेल्थ चेक में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है मतवाजन गिजा यानी बैलेंस डाइट। लिसनर्स, हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है। अगर हमारी गिजा मतवाजन हो तो जिस्म मजबूत रहता है, बीमारियों से बचाव होता है और इंसान खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, फाइबर और मुनासिब मकदार में कार्बोहाइड्रेट शामिल हों। मसलन ताज़ा सब्जियां, मौसमी फल, दूध और दही, दालें, अंडे और मछली हमारी गिजा में शामिल होनी चाहिए। ये तमाम गिजाएं जिस्म को ताकत और ज़रूरी गजायत फराहम करती हैं। आजकल फास्ट फूड और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और ये वक्ती तौर पर जायका तो देते हैं, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल मोटापे, डायबिटीज़, दिल के मसाइल और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकता है। खाने में एतदाल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खाना या बार बार गैर ज़रूरी स्नैक्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर हम अपनी प्लेट में कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं या रंग बिरंगी सब्जियां हैं और फल शामिल करें तो ये ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ गज़ाई अज़ा भी फराहम करते हैं। टिप ऑफ द डे ये है, रोज़ाना कम अज़ कम एक फल और एक सब्जी अपनी खुराक में ज़रूर शामिल रखिए। याद रखिए कि सेहतमंद गिज़ा सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। अल्लाह हाफिज़।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
2: One Step to 2030.
1: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ विजन का रोल, फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना। जी हाँ, कतर नेशनल विजन 2030 सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बनाया गया है। ये सवाल पूछता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा कतर छोड़कर जाना चाहते हैं। इसका जवाब सस्टेनेबिलिटी में छुपा है। विजन ये इंश्योर करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली यूज हों, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म हो। अगर आज सब कुछ खत्म कर दिया जाए तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और हेल्दी एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। विजन 2030 इसी वजह से प्लानिंग और बैलेंस पर जोर देता है। ये विजन असल में एक वादा है कि कतर अपनी तरक्की के साथ सेक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विस्टम का रास्ता इख्तियार करेगा ताकि मुस्तकबिल महफूज और रोशन हो। विजन इस बात पर भी यकीन रखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड। इसीलिए कतर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट में हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। विजन ये भी इंश्योर करती है कि लोग सिर्फ अर्निंग मशीन्स ना बन जाएं, बल्कि बैलेंस और प्रोडक्टिव सिटीजन्स रहें। दोस्तों, जब इंसान खुश और सिक्योर होता है तो सोसाइटी भी स्टेबल होती है। कतर नेशनल विजन 2030 ये समझाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो हो सकता है वो है ह्यूमन, और ह्यूमन अगर मोटिवेटेड है तो फिर कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस को आसानी से निपटा जा सकता है। और डेफिनेटली मोटिवेटेड और केपेबल लोग जो हैं वो बेहतर मुल्क के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो बस इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: चल सकते हैं कतर से, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर जाकर आपको सामने आगे जाकर रुकावटें पेश आएंगी। उस मुल्क में जाकर वो आपको वहाँ एंटर होने नहीं देंगे, कहेंगे कि भाई आपके पासपोर्ट की जो सलाह जो यानी वैलिडिटी जो मतलूब थी वो नहीं है आपके पासपोर्ट में। बाज़ औक़ात जो यानी एयर ट्रैवल्स वगैरह जो भी हैं या फिर एयरलाइंस हैं जो कंपनी हैं वहाँ जो बोर्डिंग के वक्त ही वो बता देते हैं कि भाई हम जो है ना ये आपका जो पासपोर्ट है इसमें इतनी वैलिडिटी नहीं है, तो फिर आपके मसाइल हैं, आप वहाँ आपको जाने नहीं दे सकते। बाज़ तो वहीं रोक देते हैं, लेकिन अगर वहाँ से आप निकल भी गए तो इमिग्रेशन आपको इसके लिए नहीं रोकेगी, तो आपको फिर मसाइल पेश आएंगे। तो भाई आप सही से जांच लें कि आप जिस मुल्क के लिए आप जिस मुल्क की तरफ आप सफ़र कर रहे हैं, जिस मुल्क का रुख कर रहे हैं, उस मुल्क की अपनी ख़ास शर्त क्या है पासपोर्ट की वैलिडिटी के हवाले से। मज़ीद उन्होंने कहा कि जब आप जो मुख्तलिफ़ इमिग्रेशन के काउंटर वग़ैरह या ई गेट्स की तरफ आप रुख करते हैं तो भाई वहाँ ख़ास एक रूट बनाया गया है, उन रूट का आप ख़ास पासदार यानी पाबंदी करें, ऐसे ही यानी ख़ुद जल्द अज जल्द जाने के लिए इन रूट वग़ैरह जो तंजीमी जो हैकल है इसको आप तोड़ कर अब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है ना बहुत नाजेब एक हरकत है और इससे हमें दूर रहना है। ये गलत आदत है, हर जगह में जो है ना रूट का जो तरतीब है तंजीम है उसको आप ख़ास उसकी रियायत करें। तो ये काफ़ी अहम बातें थीं और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपने कोई आपकी जो बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर कोई चेंजिंग आई है तो ज़रूर आप यानी जो जनरल डायरेक्टरेट फॉर इमिग्रेशन में जाकर वो पासपोर्ट के हवाले से जो अहम जो कुछ यानी बयानात क्यों आप अपडेट कर लें ज़रूर, क्योंकि बाद में इस ये मसाइल पैदा होंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि जिनकी पैदाइश कतर में है यानी वो बच्चे हैं नौ मौलूद बच्चे हैं तो उनके हवाले से भी यानी ये ज़रूरी है कि मुकीम जो है ना मुकीम अफराद जवाज़ात का रुख करें और अपने जो मौलूद है या नौ मौलूद बच्चा है तो उसकी ख़बर उन्हें ज़रूर दें और उनका वीज़ा निकलवाने के लिए जो जो पे करने की ज़रूरत पड़ती है वीज़े के पे के हवाले से तो उसे पे करके आप यानी कोई कार्रवाई न की जाए बाद में आप पर कोई मसाइल ना पैदा हो उसका आप इसके ख़ास ख्याल रखें। तो नौ मौलूद के मामलात में भी उन्होंने कहा कि आप ज़रूर इस सिलसिले में उन्हें खबर करें खबर दें और साथ साथ जो है ना वीज़ा इशू करने के लिए जो भी पैसे देने पड़ते हैं फ़ी वगैरह हैं वो भी आप अदा करें। तो ये कुछ अहम बातें थीं और ओवरऑल उन्होंने सबसे सबके लिए जो है ना पुरअमन महफूज सफ़र की दुआ दी। अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। वज़ारत दाखिला जो हमारे लिए जो अहम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक खिदमात जो हमारे लिए मुतवफ़िर और यानी इनकी सहूलियात फराहम कर रही है इसके लिए भी हम वज़ारत दाखिला का शुक्रिया अदा करते हैं। तो सामने किराम जुड़े रहिए हमारे साथ, हम थोड़ी देर में ही मुंतकिल होंगे हमारे एक दूसरे अफसर की तरफ। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी हमारे यहाँ एक अफसर तशरीफ़ फरमा है तो उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबान।

0: हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड आई नो कैलेंडर इज पैक्ड। आपको बहुत सारे इवेंट्स के बारे में पता है, बहुत सारे इवेंट्स को आपको बताया जा रहा है बहुत सारे इवेंट्स के बारे में, एंड कुछ ऐसे इवेंट्स है जो आपके स्क्रीन पे पॉप अप हो जाएंगे और आपको बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं जाती। बट मैं दोहा वाला कबीर आपको कुछ इवेंट सजेस्ट करना चाहता हूँ जो चल रहे हैं लगातार, और बहुत सारे जो आने वाले हैं, और बहुत सारे जो हो चुके हैं जो आपने मिस कर दिए। सो आपको थोड़ा सा वो जो जेंजीज यूज करते हैं ना लैंग्वेज, फोमो होगा। तो गेट रेडी, वेलकम टू कतर 2026। ये

कैलेंडर कहां से कहां तक जाएगा सब पता लगेगा आपको, पर ये नई शुरुआत है मेरे साथ। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि सबसे पहले तो गर्मियां मुबारक हो। आई नो द मोमेंट आई सी गर्मियां मुबारक हो यू विल बी लाइक गर्मियां मुबारक हो कबीर साहब व्हाट इज योर प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू इस समर्स जितनी डील स्टेकेशंस के लिए कतर में है आई डोंट थिंक अभी तक मैंने किसी भी साल में ऐसा देखा, तो इस बार

मुल्कों में, आपको सबसे पहले फोकस करना है स्टेकेशन में, ऑन अ वीकेंड या कोई लॉन्ग वीकेंड, अभी ईद वाला वीकेंड गया, ऐसे वीकेंड्स अभी आएंगे और भी आएंगे, बट एज सून एज यू गेट टाइम स्टेकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कतर में एक चीज बड़ी कमाल की होती है, जब लोग कोशिश करते हैं बुक करने का ऑफ सीजन में, लोग कहते हैं तो ऑफ सीजन में कम मिलेगा, लेकिन उसका ऑपोजिट हो जाता है। अभी समर्स की जो डील है वो बड़ी कमाल की है, चाहे आप किसी भी रिजॉर्ट को बुक करने की कोशिश करें या फिर होटल्स जो कि रिजॉर्ट्स की तरह है या बीच पे बने, अमेजिंग ऑफर्स, ऑफकोर्स आई एम नॉट नेमिंग देम बिकॉज कमर्शलाइज नहीं करना, बट आप जाके खुद देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप खुद जब ऑनलाइन स्टेकेशन, द मोमेंट यू टाइप स्टेकेशन कतर, फिर देखिए क्या आता है आपके सामने। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स जो अभी तक चल रही हैं, चलती रहेंगी। बीते हफ्ते आपने देखा, ये बीते हफ्ते क्या, बस कुछ दिनों पहले ही ईद उल अदा के कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, सब स्टार्टिंग फ्रॉम कतारा, कतारा कल्चर विलेज में, हर एक जगह पे, ऑन द फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ढलान के बाद मैं उसे फर्स्ट लेवल मान लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। तो नीचे बिल्डिंग से लेकर प्रोमनाद और ऊपर से जो बीच वाला एरिया है कतारा फैमिली बीच का, वहाँ पे ईद उल अदा के बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। इस बीच ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट को केटर नहीं कर रहे थे, दीज इवेंट्स वर केटरिंग टू द हेरिटेज पार्ट ऑफ ऑफ द ऑफ कतर एंड ऑल्सो द कल्चरल पार्ट ऑफ इट। तो बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत इवेंट्स कतारा कल्चर विलेज में हुए एंड आई वॉज अमेज। ऑल्सो द फायर वर्क हैपेंड, सो जितने लोगों ने अपने फोन में कैप्चर किए हैं फायर वर्क, भाई तस्वीरें हमारी तरफ भेजते रहे, आने दो आने दो आने दो आने दो। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हमारी जगह मौजूद है, सो प्लीज डू दैट। आपके पास ईद की यादें हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं तो आपको कैलेंडर के बारे में बता रहा हूँ कब क्या कैसे होने वाला है ये होगा, बट आपने जो अभी इन रिसेंट डेज एक्सपीरियंस किया है वो भी आप बता सकते हैं, मेरा भी कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, जहां मैं नहीं जा पाया हो सकता है मुझे भी आप वो फील करा दे, तो एक नॉस्टैल्जिया प्लस एक फोमो फीलिंग दोनों आ जानी चाहिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन, इवेंट दर इवेंट एक एक महीना बुक्ड है। स्टार्टिंग ऑफ जो इवेंट पिछले 31 अक्टूबर 2025 से चलता आ रहा है, अभी भी रहेगा, अगस्त तक रहेगा आपके साथ, ये मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मिस ना करें। वाई? बिकॉज अगर कोई नया आया है कतर में और वो सोच रहा है कि वो कहां जाए, मैं हमेशा कहता हूं विजिट द म्यूजियम्स इन कतर। और इस बार क्योंकि कतर में 15 साल पूरे हुए हैं मतहफ एग्जीबिशन के, सो दे आर सेलिब्रेटिंग इट, 15 साल की जो एनिवर्सरी है इन देयर रोल इन अरब मॉडर्निज्म, उसमें आर्ट, एजुकेशन, आइडेंटिटी, विजुअल कल्चर, ये सब कुछ आपको एक पिविटल थीम के अराउंड घूमता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कतर को एक डिफरेंट लेंस से, देखो एक तो होता है कि लोग आपको बता रहे होते हैं कतर में ये कल्चर है, कतर में वो है, ये ट्राई करना, फिर ये जो म्यूजियम्स ने किया है यहाँ पे, बिकॉज ये म्यूजियम्स आपको बोर नहीं करते बल्कि आपको लिटरली उस जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां से कतर की शुरुआत हुई थी या जहां पर कतर जाना चाहता है। सो इफ यू हैवंट बीन देयर, आप जरूर जाएं मतहफ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये एग्जीबिशन जो खास करके 15 साल को सेलिब्रेट कर रही है, ये 31 अक्टूबर से लेकर आने वाले 8 अगस्त तक है। सो उसकी टाइमिंग में बताता हूँ आपको, टाइमिंग्स बहुत सिंपल है, दोपहर के 1:30 बजे से है और शाम के 7 बजे तक है, अब बीच में कभी भी आप जा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा और किसी भी किस्म में कोई इस पर टैग नहीं है, सो देर आर नो टिकट्स परचेसिंग इन्वॉल्व। आपको सिंपल जाके या तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है या यू कैन डायरेक्टली गो एंड जस्ट बी देयर, सो 1:30 बजे से 7 बजे के बीच, एंड विजिट दिस मतहफ अरब म्यूजियम। बट नॉट जस्ट दैट, म्यूजियम्स की बात आती है जो इवेंट्स ना भी हो, इस गर्मियों में मौका मिलता है ना आपको कहीं जाने का जहां पे एसी चल रहा हो, थोड़ा सुकून हो, तो मॉल में तो जाती है पब्लिक, बट विजिट अदर म्यूजियम्स एज वेल। आप अगर अभी तक MIA नहीं गए हैं, नेशनल म्यूजियम नहीं देखा है, प्लीज इन म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करें, समर इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, वेर इन आपको ये फील होता है कि चलो कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पे मुझे ठंडू लगे गर्मी के मौसम में। सो एंजॉय योर समर्स, टेक योर किड्स अलोंग, बिकॉज समर वेकेशंस में इफ यू आर नॉट फ्लाइंग आउट तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बच्चों के लिए भी, एक एजुकेशनल पर्पज के लिए भी। एंड देर आर मेनी मेनी म्यूजियम्स इन कतर, और मैं हमेशा कहता हूँ आई हैव सीन म्यूजियम्स इन अदर कंट्रीज एज वेल, बट कतर हैज आउटडन इटसेल्फ। उसमें 3-to-1 म्यूजियम भी देखा, इतने सारे म्यूजियम और इंटरैक्टिव म्यूजियम्स हैं द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। सो इस गर्मी में, शुरुआत में, आखिर में, बीच में, व्हेनेवर यू गेट टाइम,
अपनी फैमिली के साथ जरूर जाइए एंड

विजिट. और अगर आप बैचलर भी हैं, यहाँ पे अकेले भी रहते हैं, तो म्यूजियम तो देखना बनता ही बनता है, कोई मसला नहीं है. ओके, इसके बाद एक बहुत खास ये चीज है जो कि आर्टिस्ट के लिए है, आर्टिस्ट के लिए. तो फायर स्टेशन में अक्सर एग्जीबिशन होती रहती है और अक्सर उसे कवर भी करते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जीबिशन है गैलरी 4 में जो होने जा रही है, इनफैक्ट ये हो रही है अभी तक, बस खत्म होने वाली है, या यूं कहो खत्म हो चुकी है, बट इसके जो आखिरी फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं फायर स्टेशन में. तो गैलरी 4 में मोहम्मद बिनतानी, यहाँ पर एक एग्जीबिशन है जिसका नाम है होटल एपोरिया एग्जीबिशन बाय हो ज़ुनियन. तो अगर आप थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहते हैं जहां पर मल्टी चैनल वीडियो इंस्टॉलेशन आपको देखना है, फिलोसॉफिकल थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, सो यू कैन बी देयर. हालांकि ये एग्जीबिशन के, मैं जैसे मैंने कहा कि ये लिटिल लेट, सो लास्ट के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, बट सिंस वी आर मेंशनिंग दिस, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं लगे हाथों आपको बता ही देता हूँ. सो दिस वॉज देयर. मीनवाइल अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, इफ यू आर विजिटिंग सम प्लेस एंड आप चाहते हैं कि कहीं पर पहुंच जाऊं मैं एज इन माई, अपनी माई, तो आप भी हमें बता सकते हैं. गिव अस योर थिंग्स एज वेल, क्या आपको लगता है कि गर्मियों के लिए ये बेस्ट जगह है घूमने फिरने के लिए, प्लीज बताएं, लोगों को बताएं. सोशल मीडिया हैंडल हमारा FM107 Qatar. ओके, चलते जरा मताफ अरब म्यूजियम वापस, सिर्फ एक और बात करने के लिए. यहां पर जो एग्जीबिशन है वो 22 अगस्त तक है, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट. एक और चीज है इसके अलावा, अगर आप 321 म्यूजियम नहीं गए, बी अ पार्ट ऑफ द इंटरक्टिव सेशन जो यहाँ पे चालू है. अगेन कोई भी फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं. नाउ द नेक्स्ट वन, कतर 2026 में एक और जगह जहां पे मैं चाहता हूँ कि आप जरूर विजिट करें, स्पेशली इन समर्स. आई नो वो जगह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में विंटर सीजन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ इस बार आप यहाँ पे जाए, हिनत सलमा फार्म. फ्रॉम फैब्रिक टू फैब्रिक, इस थीम के अंडर एक टेक्सटाइल वीविंग जर्नी को प्रेजेंट करने की कोशिश है, और ये जो जर्नी है आप हिनत सलमा फार्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मुझे मौका मिला 2 बार जाने का वहां पे, एंड इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू बी. तो अगर आप बुकिंग देखना चाहें तो बुकिंग इसकी ऑनलाइन है, आप जाके देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन भी है, आप ऐसे ही जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर आप स्पेशली इसी में पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं. दोनों ही ऑप्शन है, बट टेक योर फैमिली अलोंग एंड एक्सपीरियंस दिस इज वेल, क्योंकि ये भी बहुत बहुत बहुत खास है. एंड हिनत सलमा फार्म की और भी मैं तारीफ करना चाहूँ तो उसमें ये है कि अगर समर सीजन में स्पेशली जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल कल्टिवेटेड खाना है जो बनाया गया है बहुत ही प्यार से, बिल्कुल रॉ, वो आपको मिलेगा, एंड यू कैन स्पेंड समर इवनिंग्स वहाँ पे. कतर की खास बात यह है कि जब आप थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा बाहर आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, सो यू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कतर ऑल टुगेदर. सिटी के अंदर बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. तो शहर से बाहर निकलने के मौके 2 बार आते हैं, देखो गर्मी में और ठंडे में, बारिश को लेट्स नॉट इंक्लूड इट, पर इन दोनों सीजन में इफ यू गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस कुछ बाहर जाके, सो एक्सपीरियंस फार्म्स लाइक हिनत सलमा फार्म. अब चलो थोड़ा स्विच करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत हलचल है और कुछ भी मिस आउट होने लायक है ही नहीं. तो प्लान नंबर 1 आपके कैलेंडर में जरा मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये कैलेंडर में मार्क आपको करना पड़ेगा बहुत बहुत बहुत बहुत आगे तक. ये नवंबर की 30 तारीख तक खास इवेंट है, ये 7 जनवरी को शुरू हुआ था, वी वर मेंशनिंग इट लगातार, लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पे कार्टिंग सेशन. मतलब कम ऑन, अभी मत कहिएगा आपको उसमें फोटोज नहीं खिंचवानी, सोशल मीडिया हैंडल्स अपने चलाने वाले लोग हैं, जिनको सोशल मीडिया भी चाहिए, जिनको एडवेंचर भी चाहिए, दिस इज फॉर यू. एंड स्पेशली अगर आप एक आउट गोअर हैं तो आपके लिए तो ये बेस्ट है. ये कार्टिंग सेशन जो है लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में है, 7 जनवरी से 30 नवंबर तक इस साल के. टाइमिंग है इसकी शाम के 6 बजे रात के 11 बजे तक, तो 6 से 11 तक, विच इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइमिंग. तो वहां पे जाया जा सकता है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस है, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस के लिए कई मरतबा इतना तो चलता है. कई मरतबा ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जो बाहर नहीं मिल सकते कतर में इस प्राइस में मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है. सो ट्राई इट आउट. ये मल्टीपल डेज ऑफ द वीक में ओपन होती है, वैसे चलती रहती है, पब्लिक कार्टिंग सेशंस होते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को महसूस कर सकते हैं, और वो जो लुसेल का सर्किट है जहाँ पे एक्चुअल रेसेस हमने इतनी सारी देखी हैं दूर से, कभी टीवी पे कभी करीब से, उनमें आप लिटरली यू कैन कार्ट, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. ये जो कार्ट व्हील ट्रैक बनाया गया है अप्रॉक्सिमेटली 900 मीटर्स का है,

और 15 कार्ट जो जो है वो ट्रैक पे उतर सकते हैं एक साथ में. 12 मिनट का सेशन टाइम है और जो कार्ट कार्टिंग ट्रैक है वो ऑपरेशनल रहता है वेंसडे से सैटरडे तक. तो ये दिन जरा ध्यान में रखिएगा, गलती से आप मंडे ट्यूसडे चले गए तो मामले खराब हो जाएगा, संडे भी नहीं. सो वेंसडे से थर्सडे शाम को 6 बजे से 11 एडल्ट्स के लिए प्राइसिंग अलग है. और बच्चों का सिस्टम ऐसा है कि 13 साल से अबव जो है बच्चे वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मिनिमम हाइट 153 सेंटीमीटर्स और जो मैक्सिमम वेट है वो 120 किलो, उससे ऊपर नहीं. सो इफ यू आर अंडर 18 इयर्स आपको रजिस्टर किया जाएगा अंडर योर पेरेंट. तो ऐसा नहीं है बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, पर उनको पेरेंट के साथ ही लीगल गार्जियन के प्रोफाइल के अंडर रखा जाएगा. बाकी जो कैंसिलेशन पॉलिसीज हैं वो लुसाइल इंटरनेशनल सर्किट की आप जाके देख सकते हैं. यू विल कम टू नो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी. ऑलराइट, अनदर इवेंट जो बहुत मेजर है, बड़ा खास है एंड इट इज ऑल्सो कमिंग अप. ये आ रहा है मीना पार्क में टर्मिनल के ठीक पीछे और ये इस महीने की आखिर तारीख तक है. 7 अप्रैल को शुरू हुआ था 2026 से 30 जनवरी 2026 तक है और ये शाम को 5:30 से रात के 8 बजे तक है. इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्यूसडे रनिंग प्रोग्राम मीना पार्क. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रनर्स के लिए और जो फिट आइलैंड कतर ज्वाइन करना चाहते हैं. सो हर ट्यूसडे यहाँ पे 7 अप्रैल से शुरू हुआ ये और चलता रहेगा अभी 30 जून तक. जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहे इसमें जाके कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, फिट आइलैंड एक ऐप है उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टाइप कर सकते हैं ट्यूसडे रनिंग प्रोग्राम मीना पार्क पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा. इन्होंने वहां पे लोकेशन सब कुछ अपलोड करी है एंड टाइमिंग से 5:30 बजे से शुरू होते हैं. सो एंड ये ऐसा है ना कि आप ट्यूजडे जा रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं है. तो अगर एक मरतबा ट्राई करने के लिए जाएं कि चलो एक बार रनिंग करके देख लेते हैं, हो सकता है कि आप हर ट्यूजडे के इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं. बिकॉज व्हाट दे डू इज इस प्रोग्राम के जरिए दे प्लान एंड उसके बाद आने वाले जो मैराथॉन्स होते हैं या एक्टिविटीज होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद इन द कम्युनिटी एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. क्योंकि आपको एक तो डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी मिलती है, साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का मौका मिलता है इन अ वेरी डिफरेंट वे. वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रीच कर रहा है. वो लोग बोलते ना, अरे भागो भाई देखिए तुमने पेट भर आ रहा है, तो वैसा फील नहीं होता. यू फील के चलो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मुझे जज नहीं कर रहा एंड आई एम लाइकिंग इट एज वेल. सो ये आपकी जिंदगी में एक एड ऑन हो सकता है ऑन एवरी ट्यूजडे अगर आप मीना पार्क की तरफ रुख करते हैं. तो लेट्स स्विच इट वन मोर टाइम. अब जरा एंटरटेनमेंट की तरफ हो जाते हैं. एंटरटेनमेंट के मामले में इतना सब कुछ है कि मैं गिनते गिनते मतलब मैं फोन स्क्रॉल कर करके भी थक सकता हूं, बट मैं स्टिल थकूंगा नहीं. एक तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है, पर उस पर बात करने से पहले मैं फिर से आपको इन्वाइट करूंगा, इफ यू हैव एनीथिंग टू से आप प्लीज सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बोल दिया करें, दिल में रखने वाली बात नहीं. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट जो बड़ा खास है, इसकी तरफ तो लोग बढ़ेंगे भाई और बहुत बहुत मिनिमम फीस है. मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रो होम बेस अलविदा पार्क में होने वाले इस इवेंट की. इसका नाम है एस्ट्रो वर्ल्ड वॉल्यूम 001. ये एक ऑटोमेटिव एग्जीबिशन है. पहुंचने वाले हैं भाई इसमें, मुझे पूरा यकीन है इसमें भर भर के लोग पहुंचेंगे. 17 मई से एग्जीबिशन शुरू हुई है और ये 17 जून तक चलने वाली है, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक. एक बहुत ही मिनिमल फीस एंड जो टिकट परचेज अगर आप ऑनलाइन ना जाके वहां जाके खरीदना चाहें तो आप जा सकते हैं एट द डोर और वहां से खरीद सकते हैं. दे हैव दिस ईमेल कॉल्ड info@astro.qa. यहां पर भी आप ईमेल कर सकते हैं विद रजिस्ट्रेशन. मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन बता देता हूं. सो एस्ट्रो होम बेस यूनिट 1 जोन 12 स्ट्रीट 222 बिल्डिंग 322 अलविदा पार्क अंडरग्राउंड पार्किंग. ओके, तो तारीख क्या है? 17 मई से 17 जून. टाइमिंग्स है डेली दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक और प्राइसिंग बहुत मिनिमल. आई थिंक 75-80 का 3 रियाल पर पर्सन और इसमें इंक्लूडिंग वन स्पेशलिटी कॉफी बिस्किट्स एंड वाटर, बट अपॉइंटमेंट ओनली. तो एक बार देख लीजिएगा, बट ये एक ऐसा इवेंट है जो आप यहाँ से ना छूटे तो बेहतर है. गर्मी में बाहर जाने का थोड़ा बहाना मिल जाता है तो ज्यादा आसानी रहती है, तो इस पर जरा ध्यान रखिएगा. एंड ऑल्सो इसी से जुड़ा हुआ, मतलब इस जुड़ा हुआ नहीं, एक फैमिली इवेंट है जो मुशायरिफ गैलरी की तरफ आपको ले जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं एक और इवेंट की तरफ. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
अब जो अगला इवेंट है ये बड़ा

ये इवेंट है फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर में मुशायरे गैलरी में. इसके बारे में मैं कब से सुन रहा हूँ क्योंकि ये चल रहा है 25 मई से एंड लगातार इसके बारे में बात हो रही थी कि ईद में भी जाओ होकर आओ. और ये बहुत लंबा इवेंट है, अभी मतलब खत्म नहीं होगा, दिसंबर तक है ये, इस साल के आखिर तक. सुबह के 10 बजे है से शुरू होगा और रात के 12 बजे तक है. सो वेरी नाइसली फ्रेंड, बहुत बढ़िया है, फैमिली के लिए तो बहुत ही चंगा है. ग्राउंड कंट्रोल के लिए आपको स्टार्टिंग प्राइस भी बता दिया गया है. मैं प्राइसिंग भी नहीं आऊंगा, पर आप देख सकते हैं टोटल टिकट परचेस है, एट द डोर है और ऑनलाइन है, दोनों जगह पर है. एंड ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मुशायरा गैलरिया पहुंचना होगा. इसमें सोशल गेमिंग है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैं, फैमिली के लिए एक बॉन्डिंग करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और ग्लोबली जो माने जाने वाले इवेंट्स हैं वो लोग इवेंट्स कर रहे हैं. तो एक बेसिकली मल्टी एक्सपीरियंस इकोसिस्टम है जो हर एज ग्रुप को केटर करता है. फर्क नहीं पड़ता आप कौन से एज ग्रुप के हैं, आप फुटबॉल वाले हैं, आप टाइम पास करना चाहते हैं या आप जो है मुशायरे डाउनटाउन देखना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप एक्सप्लोर करना चाहें यू कैन बी अ पार्ट ऑफ. सो एज रिक्वायरमेंट 6+ है. कोर एक्सपीरियंस इसमें 10 लेन का जो बोलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा. आर्केड गेमिंग है, रेसिंग सिम्युलेटर्स है, यानी हमारी बात हो रही है, गेमर्स जागो. इसके अलावा सोशल गेमिंग है, उसमें बिलियर्ड्स आप खेल सकते हैं, शफल बोर्ड खेल सकते हैं, डार्ट्स खेल सकते हैं, फूसबॉल है, एयर हॉकी है एंड काफी इमर्सिव और इंटरेक्टिव गेम्स हैं. मेरी नजर बिलियर्ड्स पे है, आर्केड गेमिंग पर है. अगर हम और आप टकरा गए किसी दिन तो हो जाएगा 1-on-1, क्या दिक्कत है. बाकी इसमें कुछ और की फीचर्स हैं क्योंकि बहुत टाइम तक है तो फैमिलीज भी आएंगी, तो उसमें पार्टी रूम्स भी रखे गए इन केस यू प्लानिंग समथिंग. ग्रुप बना के जाएंगे तो उसकी बुकिंग्स अलग हैं. कॉर्पोरेट वाले भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, सोशल सीटिंग एरियाज हैं एंड ऑल्सो गेमिंग जोन्स स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स एंड किड्स बनाए गए. सो काफी प्राइस रेंजिंग है एंड पैकेजेस में भी आप जा सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि इस तरीके से आप इसमें फ्लक्चुएशन का हिस्सा बनना चाहें, बट दैट्स देयर. इसके बाद है प्ले डो फन फैक्ट्री. तो ये स्पेशली बच्चों के लिए, एज रिक्वायरमेंट 4+ है. जो बच्चे 4 साल के अंडर हैं उनके साथ गार्जियन का होना बहुत जरूरी है. ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो लोग कहते हैं कि फैमिली एक्टिविटीज होती रहती है कतर में, कब होंगी क्या होंगी, तो इसका आप हिस्सा जरूर बने बिकॉज दीज आर मेजर इवेंट्स. अगला जो इवेंट है उसका नाम सुनते ही आप बोलेंगे अरे रे रे, ये मेरे सामने कितनी मरतबा आया था, मैं एक बार भी नहीं गया. ये जो आपसे चूक हो गई है आज उसकी आखिरी तारीख है. तो एक बहुत ही मेजर इवेंट और वन ऑफ माय फेवरेट, जो जिससे आपके दिल के अंदर कहने एक बच्चा फुदक के कहता है अरे वाह मुझे भी जाना है, दैट शो हैपेंड, द ग्रेटेस्ट शो एट दोहा क्वेस्ट लाइन. देखो जो क्वेस्ट है ना ओएसिस गेट नंबर 2 अल खलीज, बहुत भाई घर के पास पड़ता है एक, तो फिर मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए. मैंने एक मरतबा एक्सपीरियंस किया है, इट इज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जहाँ पे जाके आपको यकीन ही नहीं होता कि ये लोग कर कैसे रहे हैं भाई, ये कौन सी रिहर्सल है, कितने घंटे रिहर्सल करनी पड़ती है ऐसा एक्ट करने के लिए. दे वर अमेजिंग. बाय द वे इवेंट 30 मई से शुरू हुआ था और आज की आखिरी तारीख है, दोपहर के 3 बजे से रात के 9:30 बजे. सो इफ यू हैवंट बीन देयर और आप मुझे सुन रहे हैं, अभी भी टाइम है तो अभी भी आप जा सकते हैं. टिकट्स आप वहां पे जाके ले सकते हैं. टिकट्स के लिए दे हैव द काउंटर्स एट दोहा क्वेस्ट. अर्ली बर्ड का सवाल ही पता नहीं होता, पर जब अर्ली बर्ड ऑन थे तो लोगों ने धड़ल्ले से भाई टिकट लिए, धड़ल्ले से. यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे लाइव एक्ट्स हैं, शो हाईलाइट्स आपको शुरुआत में दे देंगे वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, फैमिली इवेंट्स बहुत सारे हैं एंड इसमें ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा और आंखों को यकीन नहीं होगा कि क्या हो रहा है, ब्रेन को प्रोसेस करने में टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली यू विल लव इट. बहुत बहुत जबरदस्त एंड जैम पैक्ड इवेंट्स आर कमिंग अप एंड दिस इज वन ऑफ देम. अब जरा स्विच करते हैं उस इवेंट की तरफ जो रिसेंटली भी होके गया है मगर इसकी यादें आपके दिलों में ताजा रहें क्योंकि ज्यादा टाइम हुआ नहीं. सो इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन दिस, पर अगर आप इसका हिस्सा थे तो आप अपने फोटो जरूर शेयर कीजिएगा भाई, बहुत कमाल की जगह थी. लेट मी टॉक अबाउट इट. दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ जो कि शुरू हुआ था 29 मई को और 2 दिन के अंदर जी खली वाली. तो ये इवेंट जो था ये था स्नीकर कॉन दोहा. यहां पर ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए ना, मैंने जूतों को ऐसे कभी बनते हुए देखा ही नहीं भाई, कभी नहीं देखा एंड आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि कितने आर्टिस्टिक तरीके से इतना मेथोडिकली कोई जूतों को इतना तैयार कर सकता है. मगर दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जितने भी स्नीकर हेड से वो पहुंचे हुए थे

इन दो दिनों में शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक इवेंट चला. इसमें जो जनरल एडमिशन था वो तो फ्री था, पर स्नीकर कॉन्सियर्ज जो VIP सेक्शन था वो भी अलग से बनाया गया था भाई, अलग से. उन्हें पता था कि स्नीकर हेड्स आएंगे, उनको चाहिए, मेरे करण अर्जुन लेके जाएंगे स्नीकर. स्नीकर कौन मैं बता दूं किस चिड़िया का नाम है, ये दुनिया का प्रीमियर स्नीकर मार्केट और कल्चरल फेस्टिवल है, जो थाउजेंड्स ऑफ कलेक्टर्स, रीसेलर्स, ब्रांड्स और जो फैंस हैं इन सबको एक छत के नीचे लाके खड़ा कर देता है. इसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट स्नीकर शो ऑन अर्थ. अब बताइए, ऑन अर्थ द ग्रेटेस्ट शो, इसके अलावा क्या जानना चाहते हैं? तो अगर आपने मिस कर दिया, डोंट वरी, इसके जो पेजेस हैं आपको फॉलो भी कर सकते हैं उनको. एंड जो भी कुछ हुआ है, इफ देयर आर रीसेलर्स एंड कलेक्टर्स, तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. मगर इसमें ट्रेडिंग हुई होती है, इस पूरे शो में कल्चरल एक्सचेंज होता है. एंड कतर अपने ऑथेंटिकेशन के लिए जाना जाता है. कतर हमेशा हर साल एयर ऑफ कल्चर बनाता है अलग अलग कंट्रीज और कल्चर्स के साथ. एंड नॉन स्टॉप एनर्जी इस इवेंट में भी रही. इन शॉर्ट, ये एक ग्लोबल स्टेज था जहाँ पे स्नीकर की कल्चरल कनेक्ट को देखा लोगों ने और ट्रांजिशन किया. और भाई साहब, इट वॉज जस्ट अमेजिंग, लाइक अ शेफ्स किस बेसिकली. प्राइवेट VIP शॉपिंग एक्सपीरियंस भी दिया गया कुछ लोगों को, जो कि रियर गोल्स लेके चलते हैं ना, मुझे वही वाला स्नीकर चाहिए, तो वही वाले स्नीकर वाले भी यहाँ पे लोग मौजूद थे. एंड यहाँ पे लाइव इंटरटेनमेंट भी था, DJ था, ब्रेक डांस हुआ, बीट बॉक्सिंग हुई, रोलर स्केटिंग, एवरीथिंग. आई थिंक, मुझे लगता है कि इसे एक कल्चर होता है, कल्चर ऑफ हिप हॉप, कल्चर ऑफ स्नीकर्स, उन सब के अराउंड जितनी एक्टिविटीज होती हैं सारी की सारी यहाँ पर हुई हैं. एंड अलॉन्ग विद द कलरिंग एंड पेंटिंग, लेगो बिल्डिंग टेबल्स एंड ट्रेडिंग पिट्स थी, स्नीकर लवर्स यहाँ पे जाके खरीद सकते हैं. मेरा लिटरली मन कर गया बोलते मैं लिटरली अभी 10-12 पेजेस को एक साथ फॉलो करूँ और जाके स्नीकर्स ले लूँ. बिकॉज ये एक्सपीरियंस स्नीकर कौन दोहा में जो लोगों को मिला है वो आपको भी कुछ टाइम तक तो नहीं मिलने वाला. सो इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस इट, इनके ऑफिशियल पेज पे आके देखिएगा, उसमें हाइलाइट्स आपको जरूर नजर आ जाएंगे. ऑलराइट, अब थोड़ा जया आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त समर एक्टिविटी है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं अपने फैमिली के साथ. ठहरो, बताता हूं. देखिए, पहली बात, गर्मियां शुरू हो गई हैं, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है. दूसरी बात, कुछ तो करना है, जा नहीं पा रहे, फ्लाई आउट नहीं कर पा रहे, कहीं तो जाएं. तो मैरियल वाटर पार्क इज द प्लेस फॉर यू. देखो, मैं उनकी तरफ हूं भी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत जबरदस्त मामला चल रहा है यहाँ पे. 1 जून से 30 जून तक ये पूरे महीने इट इज ऑल बुक्ड. शाम के 6 बजे से रात की 11 बजे तक नो टिकट्स रिक्वायर्ड एट ऑल. आप अंदर जाएं, राइड्स के हिसाब से सब कुछ रहेगा आपके लिए. समर स्प्लैश इस बार के जो टाइटल मिला है इसको, वो मंथ लॉन्ग फैमिली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है. और ये मैरियल वाटर पार्क बीच में होने वाला है 1 से 30 जून. इसमें निकलोडियंस का जो ग्लोबली रिकग्नाइज कैरेक्टर है पॉ पेट्रोल, वो भी होगा. स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स है. और इवेंट इतना इमर्सिव है, इंटरेक्टिव एक्टिविटी के साथ, के बच्चों को जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि वो जाएं कहीं घूमने फिरने के लिए. दिस इज रादर अ बेटर ऑप्शन. एंड आई थिंक अगर मैं बच्चा होता तो सबसे पहले मैं जिद कर यहीं जाता, बिकॉज दिस इज एन एक्सपीरियंस. बच्चों की कोई बात भी नहीं है इसमें, तो बड़े भी जा सकते हैं. आप जाइए, एंड इफ यू हैव फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज विजिट दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ पे इंटरेक्टिव फैमिली एक्टिविटीज हैं, गेम्स हैं, एंड बीच बीच में लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज भी रखी गई हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग थीम जोन बनाए गए हैं, बीच सॉकर है, वॉलीबॉल है. आपको वो जो कतर का वो जो स्पोर्ट्स डे वाला फील है वो पूरा पूरा आएगा. इनफैक्ट वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज जो इसमें होती है, जानते क्या, दैट इज वाटर गन बैटल्स. कभी नहीं हारता कभी इसमें. तो वाटर गन बैटल्स भी हैं यहाँ पर, एंड बहुत अच्छी एरिना बनाई गई है. जस्ट चेक इट आउट, वेरी ब्यूटीफुली डन. तो अगर आप इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहुंचे. एंड इसमें वाटर इन्फ्लेटेबल जो पूल के अंदर, नॉट रियली अ बोट, मगर फ्लोट्स रखे गए हैं और टेंट्स हैं जो कि थीम्ड है. ऊपर से बीच गेम्स भी हैं. तो अगर आपको ये सब कुछ एक जगह पे चाहिए इस समर्स में, तो ये पूरे महीने चालू है समर स्प्लैश एट मैरियल वाटर पार्क. अब उन लोगों के लिए कुछ है जो डिज्नी के बहुत बड़े फैन हैं. आइए आपको बताते हैं हम. यू रेडी? लेट्स गो. तो देखिए, बहुत टाइम से एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कतर में. पहले लायन किंग का भी सिस्टम आया, लायन किंग के बहुत सारे इवेंट्स हुए छोटे मोटे एनिमेटेड, फिर टन्स ऑफ थीम नॉट थीम पार्क्स बट थीम इवेंट्स हुए. और इस बार भी डिज्नी लेकर आया है द लिटिल मरमेड, अ दोहा प्लेयर्स प्रोडक्शन.
ये जो है दोहा प्ले

0: his production. ये बहुत ही खास है क्योंकि मसाईमीर एरिया में जो है ना ये हैमिल्टन इंटरनेशनल स्कूल, उन्होंने ये कैंपस एंट्री फी रखी है इसके लिए मिनिमल फीस, लेकिन उसमें ये लोग बहुत ही जबरदस्त एक चीज करने जा रहे हैं. सो दिस इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियन एंडरसन स्टोरी. अगर आपने क्रिश्चियन एंडरसन की स्टोरी नहीं देखी है पहले यू कैन चेक इट आउट एंड देन आप थोड़े से जब उससे मुखातिब हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है. ओरिजिनली इसे प्रोड्यूस करने वाले डिज्नी थिएट्रिकल प्रोडक्शन है, बट आगे का जो काम किया है वो बाकी टीम से मिलकर किया है एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस. आप जो हैं लिटिल मरमेड एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये 4 जून से 20 जून तक मौजूद है एंड इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो शाम के 7:30 से रात के 10 बजे तक हैं. सो ये ओपन टू ऑल है, मतलब यू कैन जस्ट बाय टिकट्स एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड एक और इवेंट विच इज कमिंग योर वे एंड ये 13 जून तक होने वाला है जो कि बड़ा खास है, तो उसके बारे में बता दूं. एक स्टैंड अप इवेंट है जो काफी टाइम बाद, उसके बारे में वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि ये जरूरी है. सो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 13 जून से इनफैक्ट 13 जून को ही एक ही दिन रखा गया है, रात के 8:30 से रात के 12 बजे तक. इसमें अलग अलग गोल्ड प्लेटिनम डायमंड कैटेगरी है, मगर होने जा रहा है एक स्टैंड अप इवेंट. अमीन राधी लाइव आने वाले हैं कतर में. ही इज अ परफॉर्मर एंड ही परफॉर्म्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये पहली मरतबा कतर में परफॉर्म कर रहे हैं आई बिलीव एंड उनकी कॉमेडी का हिस्सा लोग बन चुके हैं पहले भी. काफी हाई एनर्जी ऑक्टेव रहता है इसमें, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, शार्प ह्यूमर है और नॉन स्टॉप लाफ्टर भी रहता है. उनकी लैंग्वेज जो है वो उनके लिए है जिन्हें अरबिक और फ्रेंच आती है ऑफकोर्स. सो अगर आप इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज समझते हैं और इसमें जोक्स आपके पल्ले पड़ जाएंगे या फिर आप अपनी लैंग्वेज का टेस्ट लेना चाहते हैं कि मुझे कितनी आती है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. मिनिमम जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो 18 साल से ऊपर के ही लोग इसमें अलाउड है और दरवाजे खुल जाएंगे जी 8:30 बजे और 9 बजे तक रहेंगे. एंड दिस इज एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर. बट अगेन ये अगर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप इसका खुशी खुशी हिस्सा बन सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल लव इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तैयार हैं आप? ओके, ये वाला सुन के तो सबके सब दीवाने हो जाएंगे. देखिए 5 जून से 9 जून बहुतों का फेवरेट इवेंट होने जा रहा है. ये भीड़ लगा देगा. ये है कतर आउटलेट एग्जीबिशन 2026. वापिस आ रहा है, वापिस 5 जून से 9 जून 2026. एंट्री एकदम मुफ्त, ऑनलाइन परचेस, टिकट खरीद के पहुंच जाओ भाई. यहां पे मुझे याद है पिछली मरतब हुआ था तो कैसी भीड़ आई थी, एक दिन में सारा सामान गायब. यहाँ पे आप फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल्स सब कैटेगरी में एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इट इज अमेजिंग. देखो विजिटर्स को तो फ्री एंट्री है पर रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर फास्ट ट्रैक एंट्री चाहिए तो. बट प्लीज ये अभी बता दिया है इसमें जल्दी जल्दी रहने का, इसमें आपको एक्टिव रहना है. जो प्रोएक्टिव होंगे उन्हीं का फायदा है इस इवेंट में, पर फायदा ऐसा है कि आप याद रखेंगे. सो कतर आउटलेट एग्जीबिशन 2026 जो है ये होने जा रही है 5 जून 2026 से लेकर 9 जून 2026 तक. टाइमिंग है रात के 12 बजे से 12 AM से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक. तो चल ही रहा है मामला लगातार, समझ रहे हैं आप. सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जैसे मैंने कहा दो ऑप्शन है, आप ऐसे जाना चाहे जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, फ्री में भी जा सकते हैं आप. बट अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे तो कई चीजों में आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक मिल जाएगा, उस पर जरा ध्यान रखिएगा. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस इवेंट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं तो प्लीज हिस्सा बनेगा, हमें जरूर जरूर बताएगा. एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इवेंट है जो आने वाला है जिसपे आपकी नजर बनी हुई है और कतर 2026 के कैलेंडर में आपने मार्क ऑलरेडी कर लिया है, लेट अस नो. बाकी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा कि आप बेहद बेहद जरूरी है. अस्सलाम.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
2: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊँ?
1: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
3: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
1: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked।
4: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked
5: with RGV।
6: With RGV
4: every Sunday शाम 7:15 बजे only on FM 107। दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में. हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए. अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं. हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है. इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं. तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं. सामीन किराम, हम में से अक्सर लोग खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करने की तालीम दी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वो नाकिस रहता है. यानी मुसलमान अपने खाने की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करता है. लेकिन सवाल ये है, क्या हम खाना खत्म होने के बाद भी अल्लाह को याद रखते हैं? जब हमारा शिकम सैर हो जाता है तो उस वक्त क्या हमें अल्लाह याद रहता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पेट भर जाता है और फिर फौरन अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं, हालांकि वो लम्हा शुक्र का लम्हा होता है. दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कितने लोग बीमारी की वजह से खाना नहीं खा सकते, कितने लोग एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं. अल्लाह ताला हमें रिज़्क देता है, पानी देता है, सेहत देता है और फिर सुकून से पेट भरने की नेमत अता फरमाता है. तो क्या ये हक नहीं बनता कि हम कम से कम चंद लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन. तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और हमें मुसलमानों में शामिल फरमाया. सामने किराम, खाना तो बहुत से लोगों को मिलता है लेकिन ईमान की नेमत हर एक को नसीब नहीं होती. इसीलिए ये दुआ हमें रिज्क और दीन दोनों नेमतों की याद दिलाती है. आजकल हमारी जिंदगी में एक मसला ये भी है कि हम नेमतों के आदी हो गए हैं. रोज खाना मिलता है, पानी मिलता है, आराम मिलता है, इसलिए हमें उनकी कदर कम महसूस होती है. लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है. इसलिए मोमिन हर नेमत के बाद अपने रब की तरफ रुजू करता है. और खूबसूरत बात यह कि सुन्नत बहुत आसान है, सिर्फ चंद सेकंड. खाना खत्म हुआ और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया. आइए एक मरतबा फिर इस दुआ को दोहराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन. सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत. याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है. और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: Hafte ke sabse behtareen din mein jab suraj jume ki purkashish ruhani kirne bikherne lagta hai. ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
5: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट हैं और स्पोर्टी हैं और स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे अली अल उबैदली के बारे में। अली अल उबैदली कोई फुटबॉलर नहीं है बल्कि एक स्नूकर प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन किया। अली अल उबैदली ने अपनी कंसिस्टेंसी, फोकस और टेक्निकल स्किल की वजह से गल्फ और एशियन लेवल टूर्नामेंट्स में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। वो कतर नेशनल स्नूकर टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं और कई मरतबा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में कतर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अली ने एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स और अरब लेवल कॉम्पिटिशन्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी। उन्होंने डबल्स और टीम इवेंट्स में मेडल्स जीतकर कतर को फख्र महसूस करवाया। स्नूकर और बिलियर्ड्स जैसे हाईली टेक्निकल स्पोर्ट्स में उनकी काम पर्सनालिटी और प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत उनको दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है। उन्होंने कतर में क्यू स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी कामयाबियों की वजह से कई यंग प्लेयर्स स्नूकर और बिलियर्ड्स की तरफ आए और नए टैलेंट को मोटिवेशन मिली। अली अल उबैदली की डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उनको कतर स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड नाम बना दिया है। आज भी वो नए एथलीट्स के लिए एक मिसाल समझे जाते हैं और कतर के क्यू स्पोर्ट्स के सफीर के तौर पर जाने जाते हैं। बताता चलूं कि पिछले महीने अली अल उबैदली ने फोर्थ गल्फ गेम्स दोहा 2026 के बिलियर्ड्स और स्नूकर मुकाबलों में 15 रेड स्नूकर सिंगल्स इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैमवे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आप

0: आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक सादा, आसान और बिल्कुल मुफ्त वर्जिश के बारे में बात करेंगे जो हमारी सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैदल चलने या वॉक करने की। जदी जिंदगी में हम में से अक्सर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और जिस्मानी सरगर्मी कम हो गई है। ऐसे में रोज़ाना चंद मिनट की वॉक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुस्बत तब्दीली ला सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोज़ाना तेज कदमों से चलने से दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और ब्लड को काबू में रखने में मदद मिलती है। बाकायदा वॉक दिल की बीमारियों, फालिज और हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरात को कम कर सकती है। सिर्फ 3 मिनट की वॉक आपके दिल को ज़्यादा फ़ाल और सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। क्या आप जानते हैं कि पैदल चलना सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। वॉक के दौरान जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो जहनी दबाव, बेचैनी और थकन को कम करते हैं। सुबह या शाम की हल्की वॉक मूड को खुशगवार बनाती है और इंसान को ताजगी और सुकून का एहसास दिलाती है। अगर आप रोज़मर्रा की मसरूफियात से थकावट महसूस कर रहे हैं तो चंद मिनट की वॉक आपकी तवानाई को बहाल कर सकती है। वॉकिंग कैलोरीज बर्न करने का एक आसान तरीका है या जरिया भी है। बाकायदा चलने से वजन को मतवाजन रखने, मसल्स को मजबूत बनाने और जिस्मानी बर्दाश्त में इजाफा होता है। इसके अलावा वॉक हमारे जॉइंट्स की हरकत को बेहतर बनाती है और बढ़ती हुई उम्र में जिस्म को ज़्यादा फाल रखने में मदद देती है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक को जो शामिल कर लें तो उससे लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ियों का अगर इस्तेमाल करें और करीबी अगर शॉप तक आपने जाना है तो गाड़ी के बजाय आप पैदल जाइए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए। दोस्तों या अहले खाना के साथ शाम की सैर को मामूल बना लीजिए। ऑफिस में हर घंटे के बाद चंद मिनट चलने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि सेहतमंद जिंदगी के लिए लंबी और मुश्किल वर्जिश जरूरी नहीं है। रोजाना थोड़ा सा चलना भी बड़े बड़े जो फवायद हैं वो दे सकता है। पैदल चलना एक आसान आदत है जो दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, जहनी सुकून फराहम करती है और जिस्मानी फिटनेस में इजाफा करती है। आज ही अहद करें कि रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि सही मरजियत की बात आ जाती है, तो अगर कहीं भी मसाइल पेश आते हैं तो साथ साथ आप कोई ख़ास आपका मर्जा हो जिससे आप मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। बास तो अपने माशाल्लाह से उनका खोपड़ी साहब या उनके जो जहन है या दिमाग से फ़ैसले करने शुरू कर देते हैं, भाई मेरे दिमाग में अब जो भी आ रहा है मैं उसके उसके यानी उस तरह के फ़ैसले ही करूँगा, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, किसी का मैं यानी हिसाब एतबार नहीं है मेरे पास, मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं उस पर फ़ैसला कर लूँ। तो ये देखें ये गलत बात है, दिमाग में कुछ भी आए लेकिन दिमाग पर तो आपकी जो है ना नफसानी ख्वाहिशात भी हावी हो जाती है, या फिर कुछ और भी आपके अचानक से कोई मसाइल आपके पेश है, आपकी दिली कोई नफसियाती कोई ख़ास यानी आपकी हालत है, तो उसको तो दिमाग उससे मुतासर हो रहा होगा और फिर आपने कहा कि भाई दिमाग से जो भी आ रहा है मैं उसके मानंद मैं फ़ैसला कर लूँगा, तो ये यानी सही मर्जा नहीं है कि आप अपने दिमाग से हर कुछ फ़ैसला कर लें, बल्कि सही मर्जियत है तो एक मुस्लिम के लिए कुरान हदीस है, वो अपने आप को कुरान हदीस से रिलेट करे और इस तरह जो है ना कुरान हदीस जानने वालों के साथ उस वो खुसूसी ताल्लुकात रखें, और जब भी कोई मुश्किलात पेश आए तो साथ साथ अगर आपको कुछ बात कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उनसे शेयर करें, उनसे जो है ना इस सिलसिले में रहनुमाई तलब करें, जैसा कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो अपने हर हालत को इस तरह अपने ख़ातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर करते थे, और यानी बाद में सहाबा इकराम अपने बड़े जो सहाबा होते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी जो बड़े सहाबा थे उनके साथ शेयर करते थे, फिर इस तरह जो है ना ताबीन सहाबा से मुख्तलिफ मसाइल इस तरह उसके हल तलब करते थे, तो बुज़ुर्ग जो भी थे उस ज़माने के किसी भी खैरुल क़ुरून की अगर हम बात करें सीरत में हमने ये देखते हैं कि वो अपने मुख्तलिफ मसाइल जो है ना इस तरह अमीरुल मोमिनीन के पास पेश करते थे, उमर बिन ख़त्ताब के पास पेश करते थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पेश करते थे, और इस तरह जो है ना अपने मसाइल को सिर्फ ये नहीं कि मेरे दिमाग में जो आया भाई मेरा ये खोपड़ी एक यानी है बस इसमें जो बात आ जाएगी बस मुझे उसके उसी के मुताबिक चलना है। तो सवाल ये है कि भाई सही ख़ानदान की बुनियाद की असल क्या है, सही ख़ानदान कहाँ से पैदा होता है, सही यानी ख़ानदान की बात अगर कहें तो वहाँ रवैये की बात आ जाती है कि भाई आपका रवैया एक हद तक यानी ये सही होने चाहिए, रवैये में ये तब्दीली आनी चाहिए, ख़ानदानी तरबियत की बात होती है ना, तो सही रवैये कहाँ से पैदा होते हैं, सही सोच कहाँ से पैदा होती है, तो ये इन तमाम सवालात का ताल्लुक़ है सही मरजियत से, यानी अगर मरजियत दुरुस्त हो तो सोच दुरुस्त होगी, यानी अगर आपका मर्जा जो है ना कुरान और हदीस हो तो आपकी सोच दुरुस्त होगी तो अमल दुरुस्त होगा तो ख़ानदान ये जो इज्तिमाई मुख्तलिफ तकरीबात के एक अहम पहलू हैं, ख़ानदान जो एक मजबूत बुनियाद है, ख़ानदान जिससे इंसान इंसानियत पर उसके बका के लिए एक लाजमी हिस्सा है, तो ये यानी ये दुरुस्त हो जाना इसका दुरुस्त रहना ये काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अगर मरजियत ही कमज़ोर हो जाए, अगर आपकी जो सोर्स है आपकी जो यानी बुनियाद है वही कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी तमाम चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और जैसा कि हमने बताया कि आज बहुत से लोग ख़ानदानी मसाइल की वजह तलाश करते हुए ये तो तालीम मीडिया सोशल मीडिया दूसरी बहुत सी चीज़ों को ज़िम्मेदार करार देते हैं। हाँ जी ये अवामिल बन सकते हैं, अवामिल आप इसे कह सकते हैं कि भाई ये एक आमिल है, ये एक पहलू है, ये एक मसला है, ये अवामिल यकीनन असर रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये क्या ये असल बीमारी है। अगर दरख्त के पत्ते मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ अगर दरख्त के पत्ते जर्द हो जाएँ तो समझदार आदमी सिर्फ पत्तों को यानी रंग नहीं करता बल्कि यहाँ जड़ से उसके इलाज करने की कोशिश करता है। हाँ जी तो बहुत से ख़ानदानी मसाइल की जड़ दरअसल मरजियत का बहरान है, मरजियत में प्रॉब्लम है कि हम अपने मसाइल का हल कहाँ से तलब कर रहे हैं। अगर मसाइल का हल यूँ ही मादियत और फिर और भी मज़ीद यानी ये बात कर दें और ये कह दें और ये इसमें तो ये मसाइल जब गलत जगह से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर उस मसाइल में इजाफा मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो ठीक है सही मरजियत

0: काम करें, फिर कमजोर की मदद करें, तो फिर अल्लाह के हुक्म को आप ताबे करते जाते हैं।
1: सही,
0: ये चीज का एक थल, थल, थल, आपको सिलसिला मिलता है, और इसी की बुनियाद पे एक माशरे में यहाँ चैन और सुकून हो जाता है। और अगर आप इससे दूर जाएं, अब अगर मगरब के माशरों में देखें, जब उन्होंने इस चीज को निकाल दिया है, तो सबसे पहले नुकसान क्या हुआ है, उनकी फैमिली टूट गई है। फैमिली यार जाए अमान, आप घर जाते हैं, बीवी बच्चे, फैमिली सुकून, और वहाँ फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। बच्चे भी पोल्ट्री फार्म की तरह हो गए हैं और बड़े ओल्ड हाउसेज में हो गए हैं, उनको जहनी बीमारियाँ। अच्छा, उम्र उनकी लंबी है, लेकिन वो दरखास्तें करते फिरते हैं, हमें चैन नहीं आ रहा, हमें सुकून नहीं है, हमें मरने की इजाज़त दी जाए।
1: तो अफसोस की बात है, अफसोसनाक बात है, हकीकत है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह हम क्या एक यानी अगर बचपन यानी जन्म से लेकर यानी जब पैदा कोई पैदाइश से लेकर मौत तक की बात करें, आप देखें ना हमारे यहाँ हर तकरीबात में कितनी यानी एक एक तकरीब को हम कितने दिल से वो इसको ये क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं अगर कहें, या फिर इसको इन तकरीबात को मुनाकिद करते हैं। आप अगर देखें वहाँ माशरे, अपने मगरबी माशरे की बात की, तो वहाँ लोग यहाँ तक कि मौत के वक्त जो है ना किसी को पता ही नहीं रहता कहाँ चला गया, या फिर कहीं हॉस्पिटल में कोई चला गया, उसके लिए फिर किसी तरह जो है ना उसे दफना कर कुछ इस तरह ज़मीन वगैरह ख़रीद कर, बस यानी एक बेचारगी की हालत होती है, ये तो मानना पड़ेगा जरूर।
0: ये तो है ना, कुल नफ्स ज़ायकतुल मौत, और ये सबको पता है। और जब अल्लाह ताला ने कहा, और आपकी एक एज जब बढ़ती जाती है ना, इंसान गौर व फिक्र करता है कि या अल्लाह अगर मेरी गलतियां हो गई हैं तो मैं अब नामा अमाल को बेहतर करूं किस लिए, अल्लाह के खौफ से। जब आपको किसी ज़ात का खौफ ही ना हो, यही आप देख लें, तो वहाँ नज़्म व ज़ब्त, आपको रेड लाइट क्रॉस करने का खौफ ना हो, निज़ाम तबाह नहीं हो जाएगा, हर बंदा गुजरता जाएगा, किसी को टक्कर मारेगा, वो करेगा, हर जगह निज़ाम ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला ने निज़ाम ज़िंदगी दी है, और उसमें अखलाकियत सबसे पहले है।
1: और इस अखलाकियत को हमें रिलेट करना है हमारे इस्लाम की तालीमात से, चूँकि अखलाकियात जो दूसरे यानी हम जहाँ से भी देखते हैं, यानी आज के इस दौर में जो दूसरे मॉरलिटी की बात करते हैं, दूसरे मरजियत के हैं, वो तो यानी दरअसल उतना हमें कामयाब नज़र नहीं आता। अच्छा, हमारे ज़ुल्क़रनैन भाई, अगर वक्त हो तो मैं ज़रा एक और अमली तौर पर एक मिसाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, कि अमली तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हम मरजियत की बात करें कि भाई हलाल व हराम की तमीज़ हमें करनी है, या फिर अपने कुरान तालीमात को भी हमें ख़ास मद्दनज़र रखना है, तो यहाँ जैसे अगर हम शादी ब्याह की बात करें, तो निकाह करना यानी आज नौजवान जो हमारे अफराद हैं वो काफ़ी यानी चाहते हैं दिल से कि भाई सादगी से निकाह कर लें, सुकून से भाई निकाह करके अपनी अगली ज़िंदगी जिए, लेकिन वो एक सवाल आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, मुआशरती दबाव नज़र आती है। तो ये एक अमली पहलू है कि देखें हम किस तरह अपने मर्जा से दूर चले जाते हैं, अपनी जो असल मर्जियत है इससे दूर हटकर मुआशरती दबाव में आकर फ़ैसले करने शुरू करते हैं, और यहीं से बहरान का शुरुआत है, और तरह तरह के मसाइल आगे। चूँकि आप देखें ना, अगर कोई इतना कर्ज़ा लेकर कर्ज़े के दबाव पे आकर शादी करे, तो आगे शादी के अगले दिन वो क्या सोचेगा, बताइए ना ज़ुल्क़रनैन भाई।
0: ये जो आपकी बात है, अगर आप इसमें गौर करें ना, तो इसमें जिनके पास वसाइल कम हैं या मीडियम हैं, और जिनके पास ज़्यादा हैं, वो ये इनिशिएटिव लेना उनको कोई बातें नहीं करता, उनको कहता है ये तो बड़ा अमीर था, कर सकता था, इसने नहीं किया, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन दूसरे वाले के लिए, अच्छा, गरीब आदमी की खुशी पूरी ज़िंदगी में पिस जाए, तो एक तो वो शादी होती है जिसमें अभी आपने बताया कर्ज़ा लेके करता है, और अगर अल्लाह उसको औलाद की नेमत, यानी हमारे माशरे में पहला बेटा हो जाए, तो तब भी लोग मुबारकबादों में चैन नहीं लेने देते, वो ना चाहते हुए औकात से बढ़कर ना कोई दावत या कोई चीज़ें या मिठाइयाँ बांटता है, वो भी कर्ज लेके करता है, और उसके बाद उस बच्चे की ज़िंदगी या उस माशरे में आगे चलते जाएं, स्कूल, तालीम, तरबियत, बड़ा हो जाए, तो उस माशरे में जिसके लिए इतनी खुशी मनाई गई, जितना उसने वज़न उठाया कर्ज का, उसकी क्या जगह। अब ये देखें, उसके लिए, उसके बाप के लिए वो भी, और वो भी कर्ज़दार, तो इसमें यकीनन इस माशरे में भी इस चीज़ को लोगों को, और कुछ ने किया भी है यार, आप कॉन्फिडेंट हो जाए ना, यानी आप मिसाल बुरा ना मनाइएगा, हम लोग बात करते हैं

0: जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशंस के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशंस के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई। बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शन में, और घड़ी में स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 10:40 है, और जुमे के दिन बाबस बाबर के दिन का एक बहुत ही निहायत अहम अमल, बाबरकत अमल अब आगे आ रहा है, और वो है जुमे की नमाज। तो इसकी तैयारी इंशाल्लाह ताला, जो हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ तक हमारे अक्सर लिसनर्स तो गाड़ी में सुनते हैं हमें, तो चाहें आप इंशाल्लाह जो गाड़ियों में पहुँच गए, इसका मतलब है कि भाई आपने तो मस्जिद का रुख कर लिया है और फिर तैयारी आपकी मुकम्मल हो गई है, और जो घरों में हैं जो हमें सुन रहे हैं, ओवरऑल सिलसिले में जो तैयारी है जुमे की नमाज़ के लिए, जल्द से जल्द जाना और फिर वहाँ जा कर इंतज़ार करना, इसमें काफ़ी जो है ना खैर है। और यहाँ तक के सुन्नत में ये भी कहा गया कि आप पैदल जाएँ, तो और इस तरह जो है ना जुमे के दिन को सही अपने बच्चों को साथ लेकर जाकर, बच्चों को साथ साथ रखें। एक दिन है जिसमें हम पूरे हफ्ते तो वैसे मशगूल रहते हैं, मसरूफियत रहती है, लेकिन इस दिन को हम थोड़ा बच्चों को साथ रखने की कोशिश करें और फिर उन्हें जाकर थोड़ा उनके साथ बैठकर या उन्हें अपने सामने बिठाएं और तिलावत करने को कहें, उनसे तिलावत सुनें, और मज़ीद घर में जब लौटते हैं तो दस्तरखान में हम बच्चों को शेयर करें और एक साथ दूसरे बातें करें, मुख्तलिफ पहलू उनके क्या मसाइल हैं वो जानने की कोशिश करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मज़मूनदा तरीक़ा ये भी था कि वो दस्तरखान में बैठ कर मुख्तलिफ जो है ना दीनी बातें अगर कहें, या ग़ुलाम सम्मिल्लाह वकुल बी अमीनी, तो यानी कुछ ऐसी तरबियत और रहनुमाई दस्तरखान के टेबल पर भी, दस्तरखान की मेज़ पर भी हो सकती है। आज हम जब हम यानी दस्तरखान पर बैठते हैं और फिर वहाँ काफ़ी अलग किस्म की बातें, और फिर यानी कहीं ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों किया, ये वो डांट डपट, ये वो, तो इस तरह की माहौल दरअसल सही नहीं है। आप नियामत है, इस नियामत को एंजॉय करने के लिए आप उसको तरबियत का एक अहम मौका समझ सकते हैं, और वहाँ तरबियत के लिए ज़रूरी नहीं कि भाई हर वक्त जो है ना आप यानी डांट डपट के ज़रिए वो वाला तरीक़ा इख्तियार करें, बल्कि आप आसानी से मीठी ज़बान से मज़ीद उम्दा अंदाज में आप उनके अपने बच्चों को या जो भी आपके अंडर में है उनकी तरबियत कर सकते हैं। और तरबियत सिर्फ ये नहीं कि भाई हमने उनको नसीहतें देनी है, नसीहत वाली ज़बान जो है ना लोग सुनना भी नहीं चाहते, नसीहत कबूल करना नहीं चाहते। हाँ, अगर आप कुरान का नाम लेकर कह रहे हैं, कुरान में ही आया, हदीस में ही आया, तो एक अलग है, लेकिन अपनी तरफ से जब हम नसीहत के अंदाज़ में कुछ थ्रो डिलीवर करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बात यानी बनती नहीं ना, चूँकि मैं तलाक कहाँ का कौन हूँ, हाँ भाई मेरी बात क्या है। लेकिन जब मैं उसको रिलेट करता हूँ कुरान हदीस से, कुरान हदीस का वो की आयात बताता हूँ, हदीस बताता हूँ, उसकी अलग एक मीनिंग बनती है। तो अपने अप्रोच को उस तरह यानी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें ताकि लोग जो है ना इसको कबूल करें, और अपने बातों पर अपने आप को हावी रखना और ये बनाना कि हाँ भाई मैं तो बड़े बड़े आइडियोलॉजीज़ दे रहा हूँ, बड़े बड़े तकरीरें पेश कर रहा हूँ, नई नई बातें हैं, तो ये दरअसल इस्लामी चीज़ जो है ना इसमें काफ़ी रूहानियत स्पिरिचुअल एक

कहते हैं तो वो छोटी बात भी उस बच्चे के दिल में जाके वो बैठ जाती है, बड़े के दिल में, या आपकी बीवी है या आपका कोई है घर का कोई फर्द है तो उसके दिल में जाके बैठ जाती है। और बड़े से बड़ी तकरीर भी हो जाए कभी उसको समझ में नहीं आती या फिर वो उसको सही से कबूल नहीं कर रहा होता है, फॉर देट ये एक पूरा ये जो मामला है ये डिपेंड करता है कि भाई तौफीक पर अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से मदद, और जब आप इसको इखलास वगैरह जो भी है ये तमाम उमूर को आप सही से समेटेंगे। अच्छा, ख़ानदान की मजबूत बुनियाद के हवाले से हमने बात की कि ख़ानदान की मजबूत बुनियाद क्या है, इस पर हमने डिटेल्स में बताया भी है। मज़ीद हम कुछ मज़ीद और भी सवाल इसमें ऐड करेंगे ख़ानदान की बुनियाद के हवाले से, तो हमारे साथ शेयर होना चाहते हैं अपनी आरा के तबादले के लिए तो 4433 4377 इस नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई ख़ानदान के कैसे हम मजबूत करें, आपको क्या अब विजुलाइज है, आपके क्या एनालाइजिंग है कि आप क्या समझ रहे हैं परदेश में आकर हमारे काफ़ी साल गुजर चुके हैं या फिर एक वक्त गुजरा है, तो वो बंदा एक वो करता है ना रियलाइज़ करता है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे ख़ानदान के मुख्तलिफ फ़ैसलों में, ये प्रॉब्लम हर वक्त हमें देखते हैं, हालांकि बात ऐसी होनी चाहिए थी और ख़ानदान की मजबूती के लिए ये उमूर काफ़ी ज़रूरी हैं, चूँकि हम एक माशरे को अपने माशरे को पीछे छोड़ कर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ माशरे की बात कुछ अलग किस्म की है, तो फिर बंदा जब अपने माशरे से अलग काफ़ी दिनों के लिए अलग रहता है ना तो वो दूसरे माशरे को देखते हुए चीज़ों को उसे समझने की परखने की उसे काफ़ी एक फुर्सत मिलती है या फिर एक वक्त मिलता है, तो इस मौके में वो काफ़ी चीज़ों को समझ लेता है कि भाई ये माशरे में हमारे जो ये रिवायत ना ये नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है, ये है, वो है, तो बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि भाई हमारे माशरे में जो जो भी फैसले माशरा जो फैसले हैं शादी ब्याह से लेकर मुख्तलिफ बच्चों की तरबियत के हवाले से तालीम के हवाले से ये वो, तो यहाँ हमें जो माशरती जो दबाव है या ये जो रिवायात हैं इससे हम कैसे बच सकेंगे और सही राह पर अपने आप को गामजन करेंगे, तो इस सिलसिले में एक और सवाल अगर हम इसको जोड़ें यहाँ पर मौजू प्रोग्राम के इस मरहले में, और वो ये कि एक बात है सामने कराम आज की दुनिया में ये जुमला बहुत आम हो चुका है, लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, उसे जो करना है करने दो, लोगों के मामले में मुदाखलत ना करो, हर इंसान आज़ाद है। अच्छा, आप ये जुमला बड़ा दिलकश जुमला है, लोग ये कह रहे थे, लेकिन देखें वाकई मुआशरा क्या सिर्फ इसी उसूल पर कायम रह सकता है, अगर हम ये कहें ज़ाती ज़िंदगी उसे जो करना है करने दो, इंसान के मामले में मुदाखलत ना करो, और वो जो आखिरी जुमला क्या कहा मैंने, इंसान आज़ाद है, अरे भाई बातें ये सब के सब सही हैं लेकिन युरादु बिहल बातिल कलिमत हक़ युरादु बिहल बातिल, यानी बात तो सच है लेकिन इससे का मफहूम अलग तरीके से लिया जा रहा है, कुछ अलग अंदाज में ज़ाती ज़िंदगी पर यानी मुदाखलत न करना लोगों के मामले में, ये अच्छी बात है, इंसान आज़ाद इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी राह पर चल रहा हो जो उसे तबाही की तरफ ले जा रही हो तो क्या एक यानी मुखलिस इंसान कोई वालिद है कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है शौहर है तो ये क्या वो खामोश रह सकता है अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो क्या आप कहेंगे कि उसकी आज़ादी है या आप फ़ौरन उसे रोकेंगे? हाँ, अगर कोई शख्स अंधेरे में गढ़े की तरफ बढ़ रहा है तो क्या आप खामोश रहेंगे? हरगिज़ नहीं, मोहब्बत का तकाजा खामोशी नहीं बल्कि क्या है, खैर खाही है। इस्लाम का तसव्वुर माशरा महज तमाशाई माशरा नहीं है, इस्लाम हमें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता बल्कि हमें एक दूसरे की खैर खाही और इस्लाह की जिम्मेदारी भी देता है, जैसा कि इरशाद खुदावंदी है कुंतुम खैर उम्मतुन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, ये वाली आयत हम काफ़ी जो है ना सिर्फ इसको दावत तबलीग से रिलेट करते हैं, हालाँकि दावत तबलीग तो हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर वक्त हर लम्हे हर आन जो है ना हमारी उम्मत की खैरियत को इस मामले से जोड़ा गया है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। आज बाज लोग ये कहते हैं कि आपको क्या हक है किसी को समझाने का, आप कौन होते हैं नसीहत करने वाले? सामिन कराम देखें एक मुसलमान की मरजियत वही है, हमें अगर ख़ानदान का तसव्वुर है तो हमारी असल हकीकी हकीकत में हमारी मरजियत क्या है, वही है लोगों की पसंद या नापसंद नहीं है, अगर यानी कुरान

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमने कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम व करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम कससुल कुरान के आज के इस पहले हलके में सामीन का खैर मकदम है। सामीन, सोहबत और रिफाकत ये हमारे लिए आईना होती हैं। वैसे जिंदगी के सफर में हमें कई रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, कभी खानदान, कभी दोस्त, कभी वो रिफाकतें जो हमारी जिंदगी को खुशियों और रंगों से भर देती हैं। लेकिन हाँ, कुरान ने भी इन रिफाकतों और सोहबतों के कई वाकयात बयान किए हैं ताकि हम ये वाकयात सुनें और अपनी जिंदगी की कमजोरियों और कोताहियों को पहचान सकें। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही एक सबक आमोज वाकये की तरफ ले जाएंगे। प्रोग्राम कससुल कुरान, इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद के ईमान अफरोज वाकयात बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ वाकया सुनाना नहीं बल्कि वाकये से वो अनमोल असबाक और रोशन पैगाम निकालना है जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए मिसाल रहा है। इस तरह माजी को हाल से जोड़ते हुए ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुरान के वाकयात किसी एक दौर के लिए नहीं थे बल्कि हर जमाने के इंसान के लिए है। आइए मिलकर सुनते हैं उन वाकयात को जो दिल को नरम करते हैं, अकल को जगाते हैं और ईमान को ताजगी बख्शते हैं। सामीन किराम, आज के इस पुरकैफ सफर में हम चलेंगे कुरान करीम की सूरतुल कलम की तरफ, जहां आयत नंबर 17 से आयत नंबर 32 तक एक जबरदस्त वाकया जिक्र किया गया है। वाकया है अस्हाबुल जन्ना, पीपल्स ऑफ द गार्डन का, एक ऐसे बाग के मालिकान की कहानी जो अपने फलों और दौलत पर गुरूर करने लगे। उनके दिलों में फकीरों के लिए जगह न रही, उनकी जबानों पर शुक्र के बजाय तकब्बुर आ गया, और जब गुरूर इंसान पर गालिब आ जाए तो अंजाम कितना हौलनाक होता है। ये हमें ये वाकया बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए ये सबक आमोज वाकया कि कैसे एक रात में लहलहाता बाग राख का ढेर बन गया और कैसे गुरूर और खुदगर्जी इंसान को अपनी ही मेहनत से महरूम कर देती है। FM 107 पर समाप्त कीजिए आयात कसस। सामीन, चले किस्सा सुनाने से पहले हम जरा वो आयात सुन लें जो अस्हाबुल जन्ना या पीपल ऑफ गार्डन्स का वाकया बयान करती हैं और साथ ही उनके मानी को करीब से

0: उन्होंने इंशाल्लाह भी नहीं कहा। तो अल्लाह ताला जो नियतों का जानने वाला और दिली ख्यालात से वाकिफ है, उसने उन्हें मोहलत ही न दी कि वो मिस्कीनों को महरूम करे और साइल और महरूम के हक को गस्ब करे। बाग पर एक मुसीबत नाजिल कर दी जिसने पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका, फलों को गिरा दिया और टहनियों और पत्तों को खुश्क कर दिया। जब रोशनी अच्छी तरह फैल गई और सूरज तुलू हो गया तो एक अजीब मंजर था। बाग की दीवार पर खड़े वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हमारा बाग यही है? कल जब हम उसे छोड़कर घर गए तो यहाँ घने दरख्त थे, पानी की नदियां रवा थी, फूल महक रहे थे, खोशे लटक रहे थे, हर तरफ बहार ही बहार थी, लेकिन सिर्फ एक रात के अंदर ये तब्दीली, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? शायद ये हमारा बाग ही नहीं, हम किसी और के बाग में आ निकले हैं। मंझले भाई ने कहा, नहीं ये वही बाग है जैसे पहले कि तुम फकीरों को महरूम करते, अल्लाह ताला ने तुम्हें महरूम कर दिया। तुमने बुरा सोचा, ये सब उस बुरी नीयत का नतीजा है। अब अपनी हरमान नसीबी पर मातम करो। क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था अलमकुल्लकुम लौला तुसबिहून कि तुम उसकी तस्बीह क्यों नहीं करते? अब वो कहने लगे, सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। अक़बल बादुहुम अला बादी यतलावमून, फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहने लगे, तुफ है हम पर, हम ही सरकश थे। लेकिन फैसला हो चुका था, अब सिर्फ अफसोस किया जा सकता था। उन्हें अपने किए की सजा मिलने चाहिए थी। कदालिक العذاب, अजाब ऐसा ही होता है। والعذاب الآخرة أكبر, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। لو كانوا يعلمون, काश ये लोग इस हकीकत को जानते। सूरतुल कलम की 33 नंबर आयत पर इस वाक़े का इख्तिताम होता है। तो चलें अब हम अस्हाबुल जन्ना या बाग वालों के वाक़े के असल पैगाम और तफसीर की तरफ रुख करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान तलहा अशरफुज़्ज़मा के साथ Only on FM 107।
0: समाप्त कीजिए खसूसी सेगमेंट बिहाइंड द स्टोरी। सामीन, इस वाक़े में मुश्रिकी नमक्का और हम सब के लिए बेशुमार नसीहतें मौजूद हैं। वैसे सूरतुल कलम की पहली चंद आयात में अल्लाह सुबहान व तआला ने पहले उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुठलाते थे। वो अपने माल दौलत और औलाद पर गुरूर करते थे और समझते थे कि ये सब उनकी इज्जत की निशानी है। लेकिन कुरान वाज़ह करता है कि ये सब नेमतें इम्तिहान हैं, इज्जत की जमानत नहीं। इन आयत की तफसीर में इमाम राज़ी कहते हैं कि अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए दिया ताकि हम शुक्र करें और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह एक लम्हे में ये सब छीन लेता है, जैसा कि बाग वालों के साथ हुआ। समझ, जिस तरह बाग वाले गुरूर और बखल में आकर गरीबों का हक मारने लगे, तो मक्की कुफार की सूरत हाल भी वैसे ही थी कि वो मालो दौलत के नशे में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। तो कुरान ने यह मिसाल इसलिए बयान की कि लोग गफलत और गुरूर से जागे और समझे कि हर नेमत के साथ शुक्र और इन्फाक लाजिम है। इब्ने कसीर के मुताबिक इस किस्से में या वाकये में लालच और नाशुक्री के खिलाफ सख्त तंबीह है। भाइयों ने गुरूर और बखल का मुजाहरा किया तो अल्लाह ने उन्हें अजाब दिया। तो असल सबक सखावत और आजिजी में है। अत-तबरी ने कहा कि बाग दरअसल एक इम्तिहान था, भाइयों ने अपने वालिद की सखावत भुला दी। बाग की तबाही दरअसल अल्लाह की अदल का मुजहर है। गजाली ने नीयतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाइयों की नीयत खराब थी इसलिए उनके आमाल बिगड़ गए। असल कामयाबी इखलास और सखावत में है। इस्लामिक स्कॉलर यूसुफ अली कहते हैं कि ये कहानी, ये वाकया हमेशा के लिए पैगाम है कि हमें मादी फायदे के बजाय कम्युनिटी की भलाई और शुक्रगुजारी को तरजीह देनी चाहिए। और ये बात आज के फर्दियत परस्त मादियत परस्त माशरे में इंतहाई अहम बात है। अब हम इब्ने आशूर का भी जिक्र करते हैं। मुफस्सिर इब्ने आशूर मजीद फरमाते हैं, माल और दौलत का गुरूर इंसान को हक से गाफिल कर देता है। मक्के के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को असातीरुल अव्वलीन कहकर रद्द कर रहे थे। حالانکہ ان کی یہ غفلت اسی طرح تھی جس طرح باغ والے غرور اور بخل میں آ کر غریبوں کا حق مارنے لگے۔ دونوں کے انجام میں عبرت ہے۔ تو اسے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمت ہمیشہ عزت کی نشانی نہیں بلکہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ زمین یہ پیپل آف دی گارڈن کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور بخل کا انجام ہلاکت ہے۔ باغ والے چاہتے تھے کہ صبح سویرے جا کر پھل توڑ لیں تاکہ غریب اور مسکینوں کو کچھ نہ ملے۔ یہی حرص اور بخل ان کی تباہی کا سبب بنا۔ نمبر دو، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور صبح کو کاٹیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے دکھایا کہ انسان کا منصوبہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی طرح دنیا کا عذاب یاد دہانی ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر، یعنی اصل اور سخت عذاب تو آخرت کا ہے۔ تو سامعین، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اگر باغ والے غریبوں کو ان کا حق دیتے تو ان کا باغ محفوظ رہتا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی ہے، جبکہ عاجزی دل کو نرم کرتی ہے۔ اسی طرح جب غلطی ہو تو فوراً اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، دیر کرنے سے وقت نکل جاتا ہے۔ اس طرح نعمت کا اصل حق شکر ہے، شکر انسان کو مزید نعمت دلاتا ہے اور ناشکری نعمت کو چھین دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دولت، یہ باغ، آل و اولاد، یہ سب عارضی ہیں، اصل تحفظ اللہ پر بھروسے میں ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا سبق یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں بھی یہ کہانی ہمارے لیے زندہ سبق ہے۔ آج بھی انسان جب دولت اور حیثیت پر فخر کر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھول جاتا ہے، ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو یہی بخل اور غرور اس کے جائیداد کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں سخاوت، شکر گزاری اور عاجزی عام ہو تو نہ صرف دولت میں برکت آتی ہے بلکہ دلوں میں سکون اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو اصحاب الجنہ، باغ والوں کے واقعے کا اصل پیغام، شکر کرو، سخاوت کرو، عاجزی اختیار کرو، تاکہ اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ آزمائش اور ہلاکت کا۔ سامعین، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے دوستوں اور رفقا کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ کیا ان کی یہ صحبت ہمیں انصاف، سخاوت اور خیر خواہی کی طرف لے جاتی ہے یا پھر گناہوں کی طرف؟ تو یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات اور صحبتوں پر بھی غور کریں۔ جیسے باغ والوں نے غریبوں اور مسکینوں کے حق کو بھلا دیا، کیا ہمارے بھی اپنے برادری میں ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی غریبوں اور مسکینوں کے حق کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اپنی نعمتوں کو دوسرے کے ساتھ بانٹا ہے یا صرف اپنے لیے ہی رکھ دیا ہے؟ اس طرح سامعین، یہ واقعہ صدیوں پرانا ہونے کے باوجود آج کے دور کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक सादा, आसान और बिल्कुल मुफ्त वर्जिश के बारे में बात करेंगे जो हमारी सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैदल चलने या वॉक करने की। जदी जिंदगी में हम में से अक्सर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और जिस्मानी सरगर्मी कम हो गई है। ऐसे में रोज़ाना चंद मिनट की वॉक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुस्बत तब्दीली ला सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोज़ाना तेज़ कदमों से चलने से दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और ब्लड को काबू में रखने में मदद मिलती है। बाकायदा वॉक दिल की बीमारियों, फालिज और हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरात को कम कर सकती है। सिर्फ 3 मिनट की वॉक आपके दिल को ज़्यादा फ़ाल और सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। क्या आप जानते हैं कि पैदल चलना सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। वॉक के दौरान जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो जहनी दबाव, बेचैनी और थकन को कम करते हैं। सुबह या शाम की हल्की वॉक मूड को खुशगवार बनाती है और इंसान को ताजगी और सुकून का एहसास दिलाती है। अगर आप रोज़मर्रा की मसरूफियात से थकावट महसूस कर रहे हैं तो चंद मिनट की वॉक आपकी तवानाई को बहाल कर सकती है। वॉकिंग कैलोरीज बर्न करने का एक आसान तरीका है या जरिया भी है। बाकायदा चलने से वजन को मतवाजन रखने, मसल्स को मजबूत बनाने और जिस्मानी बर्दाश्त में इजाफा होता है। इसके अलावा वॉक हमारे जॉइंट्स की हरकत को बेहतर बनाती है और बढ़ती हुई उम्र में जिस्म को ज़्यादा फाल रखने में मदद देती है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक को जो शामिल कर लें तो उससे लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ियों का अगर इस्तेमाल करें और करीबी अगर शॉप तक आपने जाना है तो गाड़ी के बजाय आप पैदल जाइए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए। दोस्तों या अहले खाना के साथ शाम की सैर को मामूल बना लीजिए। ऑफिस में हर घंटे के बाद चंद मिनट चलने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि सेहतमंद जिंदगी के लिए लंबी और मुश्किल वर्जिश जरूरी नहीं है। रोजाना थोड़ा सा चलना भी बड़े बड़े जो फवायद हैं वो दे सकता है। पैदल चलना एक आसान आदत है जो दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, जहनी सुकून फराहम करती है और जिस्मानी फिटनेस में इजाफा करती है। आज ही अहद करें कि रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों आजकल फ्रॉडस्टर्स मॉडर्न जनरेटिव AI टूल्स का यूज करके रियल टाइम वॉइस और वीडियो क्लोनिंग कर रहे हैं। इस फ्रॉड में आपको एक ऐसी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है जो बिल्कुल आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स, दोस्त या कंपनी के बॉस जैसी दिखती है और सुनाई देती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लाइव कॉल पर चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की टोन को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स सामने वाले का रूप जो है वो लेकर अचानक आपसे पैसे मांगते हैं, किसी बड़ी मुसीबत या मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए, या फिर अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं। आपको लगता है कि आप अपने सच में किसी खास से बात कर रहे हैं, इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा कॉल काटने के बाद उस इंसान के पुराने नंबर पर दोबारा कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए। कभी भी लाइव डिजिटल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि 2026 में डिजिटल आइडेंटिटी को हैक और कॉपी करना बहुत आसान हो गया है। साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया से पब्लिक वीडियोस और ऑडियो सैंपल्स उठाकर कुछ ही सेकंड्स में ऐसी रियलिस्टिक क्लोन्स तैयार कर लेते हैं जो आम भाषा में बिल्कुल नेचुरल लगती है। ये स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में बड़े एग्जीक्यूटिव्स के नाम पर फेक इमरजेंसी वायर ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी कंपनीज को मिनटों में करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल FM 107 पे आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी। दोस्तों इस हाईटेक AI फ्रॉड से खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक सीक्रेट फैमिली पास फ्रेज यानी एक खुफिया कोड वर्ड तय करें। जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला पैसा मांगे तो उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछे। अगर सामने रियल AI क्लोन है तो वो ये कोड नहीं बता पाएगा। दूसरी बार ऐसी इमरजेंसी कॉल्स आने पर तुरंत पैनिक ना हो और जल्दबाजी में कोई ट्रांजैक्शन ना करें। कॉल को कट करें और उस पर्सन के ऑफिशियल या ट्रस्टेड नंबर पर खुद कॉल लगाकर सच्चाई का पता लगाएं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जितना हो सके प्राइवेट रखें ताकि स्कैमर्स आपकी वॉइस या वीडियो क्लिप्स डाउनलोड ना कर सके। इसके अलावा अपने डिवाइसेस में एडवांस्ड एंटी डीपफेक और AI वॉइस डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करें जो फेक इनकमिंग स्ट्रीम्स को पहचान सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
1: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सफा और आज मैं आपके साथ जुड़ गई हूं, लेकर आई हूं एक बहुत ही दिलचस्प शो जिसका नाम है जूनियर जनाब। अच्छा भाई, क्योंकि पहली किस्त है इस शो की तो आपको जरूर ये दिमाग में आ रही होगी बात कि भाई ये जूनियर जनाब आखिर है किस किस्म का शो। तो भाई मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि एक ऐसा शो है जहां हम बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके आइडियाज को सेलिब्रेट करते हैं। अब मेरा मानना यह है कि बच्चे आजकल के दौर में जैसे हम कहते हैं कि भाई बच्चे हैं, क्या इनके कोई ड्रीम्स होंगे, क्या इनके कोई गोल्स होंगे और क्या इनकी कोई अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ सोचती हूँ, तभी ये शो आपके लिए लेकर आई हूँ, पेश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं वो एक छोटे से कदम से स्टार्ट होते हैं। तो भाई हर हफ्ते मेरी और आपकी मुलाकात होती है एक ऐसे जूनियर जनाब से इस शो में, जिनको आप कह लें कि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड बच्चे होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे उन्होंने कहीं कोई वॉलंटियर का काम ही क्यों ना किया हो। ये छोटे छोटे आप कह लें कहीं स्कूल में प्रोजेक्ट्स कर लिए, कहीं किसी आप कह लें कि एज अ वॉलंटियर कहीं कोई और प्रोजेक्ट कर लिया, तो इनका मकसद ये होता है कि अपने छोटे छोटे कामों को लेकर बड़ी बड़ी अपनी अचीवमेंट्स की तरफ चल पड़ते हैं। तो भाई ये शो दुनिया को ये दिखाता है, लिसनर्स को ये सुनाता है कि क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती और हर बच्चा अपनी मेहनत, अपने एम्बिशंस और अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली यहाँ आकर शेयर करता है। तो भाई तैयार हो जाइए एक ऐसे मजेदार शो के लिए जिसके अंदर बच्चा पार्टी इन्वॉल्व होती है और इनकी मजेदार मजेदार सी स्टोरीज, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस हम आपको सुनाते हैं उन्हीं की जबानी, यानी कि हमारे साथ शामिल होते हैं एक जूनियर जनाब जो अपनी लाइफ की अभी तक की जितनी भी उनकी माशाल्लाह से, चाहे वो 9 साल के हों, चाहे वो 15 साल के हों, मतलब अंडर 18 बच्चों की वो कहानियां उन्हीं की जबानी हम आपको बयान करवाते हैं, या आप कह लें कि आपको सुनाते हैं, जो शायद आपको भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर जाएं। एक ऐसे एडवेंचर पे ले चलते हैं आपको जो कि बच्चा पार्टी की आंख से हम देख रहे हैं। और आज हमारे पास जो हम कह लें कि हमारे पास जो शख्सियत नहीं शक्स। ये शख्सियत हसन है, देखें शख्सियत, शख्सियत हम कहते हैं ना पर्सनालिटी, एक शख्स। अच्छा भाई आज हमारे साथ जो बच्चा पार्टी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाएं। और भाई पहले तो हम आपको अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है?
3: मैं हानी हूँ और मैं 10th ग्रेड में पढ़ता हूँ।
2: अच्छा भाई हानी कितने साल के हैं आप?
3: मैं 15 हूँ लेकिन मैं अक्टूबर में 16 हो जाऊंगा।
2: अच्छा बच्चों की ये बात बड़े मजे की होती है, अपने जब जैसी पास आने लगती है ना, डेट ऑफ बर्थ पास आने, बर्थडे पास आने लगती, मैं 15 हूँ लेकिन मैं 16 का हो जाऊंगा, आप मुझे छोटा नहीं समझे। ये मासूमियत होती है बच्चों की। अच्छा भाई हानी ये बताएं कि आज आपको हमारे साथ ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? मुझे याद पड़ता है हानी पहले भी एक दफा पहले कुछ साल पहले हमारे साथ ज्वाइन किया था आपने, ठीक? उस टाइम पर कितने साल के थे हानी? 13-14 साल के?
3: 13 था।
2: 13। अच्छा भाई हानी लॉन्ग को शॉर्ट करते हैं और ये बताएं कि अब दूसरी दफा यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है?
3: अच्छा लग रहा है, मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस तो नहीं है, बिकॉज़ पहले भी किया हुआ, लेकिन मतलब फिर भी एंग्जायटी थोड़ी सी होती है जब करते हैं सब कुछ,
2: नर्वसनेस। अच्छा ये ऐसा फील हो रहा है कि बेटर देन बिफोर, कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट? कुछ अपनी पर्सनैलिटी को लेकर अगर मैं आप बोलूं कि उस टाइम के हानी में और अभी के हानी में कुछ डिफरेंस है.
3: या लाइक sky and earth like that. Oh, yeah, I think so.
2: Mashallah, very good, very good. अच्छा ये होना चाहिए क्योंकि we are all, no matter which age we are all in a learning phase. We will always be in a learning phase. Yeah.

0: अच्छा ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह 2B16 होने वाले हैं आप, तो अपने कुछ इंटरेस्ट के बारे में बताएं ना.
1: मैं आर्ट लाइक करता हूँ एंड गार्डनिंग, तो वो दोनों मेरी हॉबीज हैं प्राइमरली. और मैं और चीजों में भी इंटरेस्ट लेता हूँ लेकिन ये मेरी हॉबीज है प्राइमरली.
0: अच्छा अगर आपकी इसके बच्चों को हम देखें तो मोस्टली हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा स्कूल की अचीवमेंट्स से हम शुरू करते हैं, ठीक है.
1: हाँ.
0: तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ आपने अपने ऐसा कुछ कुछ आइडियाज अपने पेश किए हों, कुछ अचीवमेंट्स आपकी स्कूल में हुई हों, तो वो हमारे साथ जरा शेयर करें.
1: हुई है. मैंने स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था आर्ट का, मैंने उसमें अपनी आर्ट सबमिट की थी और मुझे थर्ड प्लेस मिला था.
0: थर्ड प्लेस.
1: हाँ.
0: अच्छा तो अगर मैं कहूँ कि बचपन में जब आप छोटे थे तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि आई विल बी समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स. एक होता है ना, हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं हमारे दिमाग में. वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. द ग्रेट थिंग अबाउट किड्स इज दे डोंट हैव अ बॉक्स एक्चुअली. तो आपको शुरू से शौक था आर्ट्स का कि नहीं?
1: शुरू से नहीं था. आई वुड थैंक माई पेरेंट्स फॉर दिस बिकॉज उन्होंने हेल्प किया मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट डालने में. मैं पहले एस्ट्रोनॉमी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था एंड आर्ट में भी. तो व्हेनेवर उन्होंने देखा कि मैं कुछ चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, उन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे गाइड किया.
0: अच्छा जी, तो ये बताएं कि पेरेंट्स में अगर मैं, वैसे तो सारे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं दोनों दोनों, लेकिन पेरेंट्स में अगर मैं कहूँ कि अम्मी अब्बू में से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया?
1: मम्मा
0: ने किया. अच्छा कभी आपको ऐसा हुआ कि एक एक सिनेरियो है ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो सोसाइटी में ये सिनेरियो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कभी आपको ये सुनने को मिला है किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, कहीं से कि लड़के क्या आर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे, लड़कियों का काम है प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, एक क्या ड्राइंग और पेंटिंग लेकर, ऐसा कुछ हुआ है?
1: हाँ, मेरे पापा थोड़ा सा ऐसा सोचते थे, बिल्कुल नहीं. वो ऑब्वियसली ओपन माइंडेड है लेकिन थोड़े से वो बैकवर्ड सोच इख्तियार करते थे.
0: सही.
1: तो वो समझते थे कि जो क्राफ्ट्स है वो गर्ली चीज है बिकॉज आप देखते यूजुअली गर्ल्स उसमें होती है. मुझे लगता है बिल्कुल फेक एंड रबिश है बिकॉज ये मेक सेंस नहीं करता. हम क्यों किसी को सब्जेक्ट करें कि मेल्स ये करेंगे, वेमेन ये करेगी.
0: सही. अच्छा एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जनरेशन से पूछनी चाहिए, ये बताएं कि इज इट हार्ड फॉर यू. मम्मा के साथ तो मुझे पता है सारे बच्चों का, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है. यू कैन पोर योर हार्ट आउट टू हर. लेकिन अब मैं बड़ा टेक्निकल सवाल करने लगी हूँ, सोचिएगा, देख देख भाल के जवाब देना कि मुझे ये बताएं कि अब्बू को कैसे कन्विंस करें अगर आपका कोई ऐसा शौक है कि जैसे आपको पेंटिंग्स का, आर्ट्स का शौक है. तो मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, क्योंकि आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी बेसिक अप्रोच फॉर योर फादर स्पेशली क्या होनी चाहिए कि आप उनको ये समझाएं कि अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है. जैसे हमारे पेरेंट्स को कभी होता है ना, एक एग्जांपल मैं दूं कि हमें कन्विंस करना होता है कि अच्छा मेडिसिन पढ़ लो आप, या इंजीनियरिंग कर लो, या कंप्यूटर्स में कुछ. दे गिव अस फिगर्स एंड फैक्ट्स, हमें समझाने की कोशिश करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एज अ किड आप कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, आपने पर्टिकुलरली अपने फादर को, आपने भी कुछ बात की होगी ना फादर के साथ,
1: obviously.
0: तो आप कुछ ऐसी टिप्स, कोई टैक्ट देना चाहेंगे बच्चों को, जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, कहते नहीं अम्मा अब्बा तो समझते ही नहीं हमारी बात है ना, ऐसा होता है.
1: वी ऑल
0: गो थ्रू दैट थिंग. तो आपने उसको कैसे कोप अप किया?
1: आप बस उनको प्रेजेंट करें फिगर्स एंड सब कुछ के आर्ट एंड ऐसे जो डिफरेंट फील्ड्स है उसमें बहुत पैसे है, उसमें बहुत आप अर्न कर सकते हैं, आप बहुत लर्न कर सकते हैं. तो जब उनको समझाने की कोशिश करें वो समझ जाएंगे बिकॉज आफ्टर ऑल आपके पेरेंट्स हैं, आपके एनिमीज नहीं है.
0: अच्छा जो आर्ट है, कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा काम जो आपको इंस्पायर किया होगा, जिसने कि आप कहें कि भाई इस चीज़ ने ना, मैंने फलानी पेंटिंग देखी थी या मैंने फलाने के बारे में पढ़ा था, दैट पर्सन वॉज एन आर्ट पर्सन एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बाई देम, कोई ऐसा है नाम आपके पास जिसको देखकर आप फॉलो करते हैं, यू लुक अप टू दैट पर्सन?
1: लियोनार्डो डा विंची, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे थे. एंड एक और आर्टिस्ट के नाम जिन्होंने स्टारी नाइट ड्रॉ की थी, वो बहुत अच्छी है. आपने देखी होगी जरूर.
0: मुझे याद पड़ता है वो ब्लू कलर की पेंटिंग है, वो बहुत मशहूर है. I really don't remember the name of the exact person, लेकिन उनकी पेंटिंग का मुझे याद पड़ रहा है कि it is a very known painting.
1: Yeah.
0: Okay, I get it. अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपने उनके बारे में पढ़ी हो या देखी हो जो उनके आर्ट में आपको पर्टिकुलरली अच्छी लगती हो?
1: मैंने उनकी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो अलाइव थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, जो चीज़ नहीं, लेकिन आफ्टर वो डाय हुए तो लोगों ने रियलाइज किया कि उनकी आर्ट कितनी मीनिंगफुल थी. जैसे मोनालिसा फॉर एग्जाम्पल, जब वो अलाइव थे उस टाइम में वो बस एक मतलब एक वुमन थी.
0: हाँ हाँ, सही सही.
1: किसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स लोगों ने देखा कितने लेयर्स लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किए उसके अंदर.
0: सही.
1: अपनी होल लाइफ लगाई है और फिर उनको फेम मिला.
0: सही.
1: तो मैं इससे मैसेज ये लेता हूँ कि कभी क्विट नहीं करें, डोंट गिव अप.
0: ये एक बहुत अच्छा, हम लोग ये कहने को बात बड़ी आसानी से कह देते हैं कि डोंट क्विट, लेकिन जो जिस बात पे चल रहा होता है ना उसको पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. क्विट नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा शौक है, मैंने पूरा करना है. अच्छा, अब आर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, अब थोड़ा एकेडमिक की तरफ आएं, तो आपको क्या लगता है योर इंटरेस्ट इन आर्ट, डज इट हैज अ थिंग के मतलब एक होता है ना, हम कहते हैं, अम्मा अब्बा कहते हैं कि भाई तुम आर्ट में इतनी ज्यादा मसरूफ हो गए हो दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज. कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कभी?
1: नहीं, मैं एक्चुअली अच्छा हूँ स्टडीज में. मैं बैलेंस कर लेता हूँ, इवन दो ये बहुत हार्ड है बैलेंस करना, बिकॉज आप जब एक चीज को लाइक करते हैं, आप मिल चाहता है वही करते रहे.
0: ये होता है.
1: हाँ, लेकिन आपको स्टडी करना ऑब्वियसली, मतलब उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी.
0: सही. तो ये बताएं कि आगे चलकर आपके क्या गोल्स हैं, कैसा ये मामला है कि कुछ आर्ट्स में ही करना चाहेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास विंडो है एक्सप्लोरिंग की, मोर टू एक्सप्लोर?
1: हाँ, मुझे लगता है मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए. अभी
0: करना चाहिए.
1: पहले मुझे डॉक्टर बनना था, अब बिटवीन में मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, अब मैं सोच रहा हूँ फिल्म मेकिंग. तो मुझे लग रहा है अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा और ज्यादा.
0: आपके पास माशाल्लाह टाइम है. सो अच्छा, एक बात ये बताएं, जैसे आपने अपनी कोई एक हॉबी एक्सप्लोर की, चूज की, तो आप ये बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये कैसे, हाउ डिड यू गेट इन टू इट?
1: मैं जब बोर्ड था मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की. जैसे मैं यूजली जब मैं छोटा था मैं यूट्यूब देखता था. तो किड्स यूजली कार्टून्स देखते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी स्पेस वीडियोस देखना शुरू कर ली थी. हाँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट नॉच हो गया था उनके अंदर कि स्पेस है क्या. मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि बस एम्प्टी स्पेस ऑफ वॉइड है जो एग्जिस्ट करता है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं. तो मैं प्लैनेट्स देखता था एंड सब कुछ, उसकी वजह से मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आया एंड बाकी चीज़ों में. आर्ट भी ऐसी हुआ था, जब मैंने ड्रॉ करना शुरू किया एंड मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो मैं इंटरेस्टेड हो गया उन चीज़ों में.
0: अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके इंटरेस्ट की एक जर्नी जिसके बारे में हम बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एज पर माई थिंकिंग, एज पर माई बिलीव. मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी हॉबीज क्या है. हमें एक उम्र लग जाती है और हमें पता नहीं चलता व्हाट आर आवर हॉबीज. तो और हॉबीज का कुछ कभी कभी ये भी होता है दैट वी कीप ऑन स्विचिंग देम. मूड ऑफ हुआ, ये कर लिया, बोर हुए, ये कर लिया. तो हॉबीज डू चेंज, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी प्लांटिंग भी आपकी, आपने जो बताया था हॉबी है, तो अगर मैं आपकी प्लांटिंग और आर्ट्स की जो हॉबी है इसको लेकर बात करूं, तो आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा मोमेंट आपको याद है जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था आपकी जर्नी में आपके लिए? कि भाई ऐसे एक होता है ना कि जब हम प्लांटिंग करते हैं तो पहली दफा हम जब सीड
1: बहुत एक्साइटिंग होता है,
0: तो कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? व्हाट वर योर फीलिंग्स अबाउट इट, व्हाट डिड, हाउ डिड इट हैपन, कुछ ऐसा एक्साइटिंग आपको कुछ याद है?
1: 2 years अगो मैंने एक सनफ्लावर सीड डाला था सॉइल में. तो हम उम्र के लिए गए थे 1 week तक. वो एक्चुअली ग्रो हो रहा था कुछ 3 months से, उसने फ्लावर नहीं दिया था. जस्ट आफ्टर उम्र जब वापस आ गए, मैंने देखा कि वो इतने बड़े फूलों के साथ तो बहुत एक्साइटिंग था, लग रहा था कोई रिवॉर्ड मिला हमें इसके लिए.
0: अच्छा अच्छा, जब जब ये आपका जो प्लांटिंग का जो शौक है ये किस हद तक है अगर मैं पूछूं? वैसे मुझे जितना मैंने आप

0: होते हैं कि अम्मा को पता ना चले कि मैं सब्जियां और छिलके कहाँ कहाँ लेकर जाकर उनको छुपा कर क्या क्या चीजें बना रहा हूँ.
1: हाँ.
0: तो कुछ ऐसा है.
1: हाँ, obviously.
0: मुझे इतना एक फनी इनकी मदर ने एक बात बताई. कहती है मैं रूम साफ कर रही थी, वैसे तो अपना रूम खुद ही साफ करते हैं, लेकिन एक दिन मैं ऐसी उनका रूम साफ करने गई तो पता चला बेड के नीचे से जो है ना छोटे छोटे वो सॉइल मेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स इनके चल रहे थे. तो मैं कहूँ ये क्या है, डिब्बियों में ये क्या क्या रखा हुआ है. कहती मुझे इतनी हंसी आई. तो फिर मुझे बाद में जाकर एहसास हुआ नो ही इज प्रीटी मच सीरियस अबाउट प्लांटिंग प्रोसेस. आई एम
1: मैड फॉर हिम.
0: तो ऐसा हमें बताएं कुछ ऐसा आपकी जबानी अगर हम सुनना चाहें कि आइडियाज कहाँ से जनरेट होते हैं भाई. ये जो आप अपनी एक लैब खोल कर बैठे हैं अपने बिस्तर के नीचे, बड़े लोग अपना सामान रख रहे होते हैं और ये सॉइल रख रहे होते हैं और प्लांट्स और सीड्स छुपाई हुई होती हैं इन्होंने.
1: मैं बेसिकली शुरू से बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ. मैं शुरू से बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ. मेरे पेरेंट्स बहुत इससे फेड अप थे पहले कि मैं सोप मिक्स कर रहा हूँ स्लाइम बनाने के लिए और कुछ भी. तो सेम चीज़ विद प्लांट्स.
0: सही.
1: मैं ये करता हूँ, मैं कभी फर्टिलाइजर मिक्स कर लेता हूँ और कभी सीड्स को डाल देता हूँ कोई सॉइल में देखने के लिए क्या निकलेगा उसमें से. मैं बस बहुत क्यूरियस हूँ.
0: क्यूरियोसिटी इट्स वेरी गुड. अच्छा ये एक ऐसा स्पार्क है, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट कि डोंट लूज इट.
1: या
0: होता है ये एज हमारी बढ़ती जाती है, वी गेट इनटू अदर स्टफ एंड वी फॉरगेट अबाउट अवर हॉबीज एंड अवर क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी कहीं गुम हो जाती है, वो फेड आउट नहीं होने देना बेटा, वो रखना. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि एज पर नाउ, वैसे तो हम जब बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली वी हैव अवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड अवर ओन सिचुएशंस, लेकिन एज पर नाउ मुझे बताएं कि आपका अभी का सबसे, जैसे कहते हैं मैं कहूँ कि भाई ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना ही करना है. तो क्या अभी तक दिमाग में क्या प्रोसेसिंग चल रही है?
1: अभी मेरा 10th ग्रेड है तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स लूँ बोर्ड एग्जाम के लिए. वो बस मेरा बिगेस्ट गोल है अभी, क्योंकि बहुत इजी नहीं है, लेकिन जब मैं कर लूँ ये तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल, जो कहते हैं ना एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड इन द स्टार्स. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो एम अच्छा रखता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता ही है. अच्छा ये बताएं कि अभी तो आपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो अगर जैसा कि आप बता रहे थे कि आप स्टडीज में भी अच्छे हैं माशाल्लाह से, ये भी एक अचीवमेंट होती है कि अपनी हॉबीज को साथ लो और अपनी एकेडमिक्स को आप साथ लेकर चलो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. पढ़ाई खुद करते हैं या अम्मी अब्बू जबरदस्ती बिठाते हैं सर पे को डंडा लेकर बैठेगा?
1: मैं खुद करता हूँ. मैं थोड़ा सा शुरू से रिस्पॉन्सिबल हूँ. मुझे
0: अरे वाह
1: बुरा लग रहा है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ.
0: यू शुड बी ये दिस इज अ थिंग विच यू शुड प्राउडली से दैट आई डू नॉट ट्रबल, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस एज. इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल तो ये बताएं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ गई है या इसकी कोई एक स्पेसिफिक वजह है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई तो आपने सोचा कि नहीं भाई ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, या शुरू से ही ऐसे?
1: नहीं, मुझे मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे किसी को तंग नहीं करना. तो मैं शुरू से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे तंग नहीं करना किसी को कि अपना टाइम वेस्ट करे बताने के लिए डू योर होमवर्क और क्लीन योर रूम. मुझे खुद ही करना सब
0: गुड गुड. अच्छा अंडरस्टैंडिंग बच्चा ये माशाल्लाह से गुड, वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि आपका, लोग अचीवमेंट्स के बारे में तो पूछते हैं, अभी तक कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट गुजरा है जिसके बारे में आप कहें ओप्स गलती हो गई, ये वाला तो काम ना मेरे इंटरेस्ट का था और ना मुझसे हुआ ये काम प्रॉपरली? कुछ ऐसा हुआ है कभी, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, कुछ ट्राई करने की कोशिश की हो एंड इट डिड नॉट वर्क आउट? इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग कहते हैं कि भाई
1: बहुत सारे
0: ये हमारे काम की चीज ना थी.
1: हाँ, जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं तो बहुत सारे प्लांट्स बहुत सेंसिटिव एंड बहुत ज्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं उनको,
0: आप कह लें कि टेम्परेचर का इसका उसका बहुत
1: एक वर्ड है उसके लिए, मतलब
0: एक वर्ड
1: उसके लिए.
0: बेटा डिक्शनरी लेकर आऊं?
1: क्या होता है मतलब?
0: अच्छा कुछ भी
1: नीडी है.
0: अच्छा दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर कंडीशंस.
1: उर्दू में एक लफ्ज है,
0: चलें उस वर्ड को स्किप कर जाते हैं. मतलब यूं समझ लें कि वो बहुत मखसूस एक एनवायरनमेंट चाह रहे होते हैं.
1: हाँ, बहुत नीडी एंड बहुत ज्यादा ही, मतलब सेल्फ अब्सॉर्ब.
0: अच्छा चलें आपकी प्लांटिंग के बारे में, आपका सबसे फेवरेट टाइप का पौधा या कोई नाम या कुछ ऐसा होगा कि आपका फेवरेट पौधा है? कौन सा
1: मनी प्लांट फॉर

0: और उसने बहुत चीजें मेरे बहुत सारे अब्यूसेस
1: बर्दाश्त किए.
0: हाँ सच में मैंने उसको पानी ही दिया, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दिया, उसने फिर भी लव कर लिया. सो
1: अच्छा मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्लांट्स. ये अगर आप पानी में डालें तब भी चल जाता है, खाली पानी में. अगर आप सॉइल में डालें तब भी चल जाता है. तो हाँ ये इनकी बात सही है कि बेचारे ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया तो वो बेचारा मनी प्लांट चल जाता है. लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर मेरे पास नहीं चलता, इट्स ओके, वो एक अलग दुख है. अच्छा ये बताएं कि अगर किसी को प्लांटिंग का शौक, आपसे पूछ रही हूँ, आपने इतनी प्लांटिंग कर ली इतने सालों से, तो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाया हुआ है रूम को, तो भाई कुछ टिप्स एंड टैक्स हमें भी दें.
0: आप अफ्रेड नहीं हो ट्राई करने के लिए, आप कोई भी प्लांट ले, इजी टू केयर प्लांट है जैसे मनी प्लांट और कैक्टस, उसके ऊपर रिसर्च करें और फिर देखें उसको क्या चाहिए एंड बस जो आपके पास टाइम है उसमें आप यूटिलाइज कर लें उसके केयर.
1: सही,
0: अपना को बर्डन नहीं करे बेसिकली कोई भी चीज के साथ, आप नहीं कर सकते तो नहीं करे.
1: अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट तो है कि बच्चा समझदार है भाई, प्लांट्स भी उगा रहा है, अपने कमरे को गार्डन भी बना लिया है, वॉक इन पार्क बनाया हुआ उन्होंने अपने अपने कमरे को उन्होंने वॉक इन पार्क बनाया हुआ. तो ये बताएं कि अगर एक ऐसी सिनेरियो लेते हैं कि भाई आपका रूम का अगर कोई स्पेशल किस्म का नाम रखना हो तो क्या क्या होगा आपके रूम का नाम, आप अपनी अपनी नजर से अपने रूम को देखें तो.
0: फॉरेस्ट.
1: फॉरेस्ट, वाह बड़ा ही सिंपल सा.
0: हाँ मतलब और क्या.
1: अच्छा तो फॉरेस्ट के अंदर जो सुपर हीरो बैठा होगा उसका क्या नाम होगा? अपने आप को क्या नाम देंगे?
0: मुझे नहीं पता, मैं हानी हूँ.
1: अच्छा ये भी नहीं, बच्चे कहते ना भाई मैं फलानी पावर हो मेरे पास, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ. अच्छा तो फिर ये बताइएगा कि आपके आगे जाकर अगर मैं कहूँ कोई प्लान्स हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, अपनी हॉबीज को फॉलो करेंगे या ये सोचेंगे कि नहीं भाई एक होता है ना नहीं सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, उसको फॉलो करेंगे या अपनी हॉबीज की तरफ जाना पसंद करेंगे?
0: आइडियली अपनी हॉबीज, लेकिन मैं कभी भी सोचता हूँ कि मे बी मैं अर्न नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगेन ये मतलब बस ऐसे ही लोग बोलते हैं कि आर्ट के अंदर इतना फ्यूचर नहीं है सब कुछ, लेकिन हाँ है, आप जब ट्राई करें अपना वर्क डालें तो आप कर लेंगे कुछ ना कुछ, आप अल्लाह ताला के अंदर यकीन करें.
1: सही. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक होता है ना हम बात करते हैं कि आज से अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए, जब हम बड़े हो जाते हैं देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ कि हम वी लूज दैट स्पार्क समहाउ.
0: या
1: अपने आप को अगर कोई एक रिमाइंडर कोट आपने हमेशा के लिए साथ रखना हो जो आप कहें कि वो दूसरों को भी इंस्पायर करे और चाहे आप कितने बड़े हो जाएं यू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग इन योर माइंड, कोई कोट हो कोई वर्ड हो, वो क्या होगा कि जो आज से 15 साल बाद भी आपको एकदम से बात याद आए, इट ब्रिंग्स द स्पार्क बैक इन यू.
0: डोंट लेट योर इनर चाइल्ड डाई लाइक फॉर श्योर, लाइक यू शुड ट्राई टू लाइक कीप मेमोरीज ऑफ व्हाट यू डिड व्हेन यू वर अ किड. तो आप जब बड़े हो गए तो आप देख पाए उनको कि आपने क्या क्या किया, इनकेस आपने उस स्टॉप कर लिया करना तो आप समझ जाए कि आपने क्या लूज कर लिया.
1: सही सही सही. अच्छा ये एक बात बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एज पर योर अचीवमेंट, ठीक है आपको माशाल्लाह स्कूल से भी आपने मुझे बताया आपको अचीवमेंट्स रही हैं आपकी, आप पेंटिंग वगैरह, किस किस टाइप की पेंटिंग आपको करना पसंद है? कुछ लोगों को होता है ना भाई हमने फ्लावर बना लिए, हमने नेचर पेंट कर ली, हमने टेक पेंट कर लिया, आपको किस किस्म की पेंटिंग पसंद है?
0: पोर्ट्रेट पेंटिंग. हाँ इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ फेस के जो सिमेट्री है, जो प्रोपोर्शंस है, बहुत हार्ड है समझना, लेकिन सेम टाइम में इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर चीज इंटरेस्टिंग होती है बेसिकली.
1: अच्छा ये उन बच्चों में से हैं जो कहते हैं कि जितना मोटिवेशन इसीलिए है क्योंकि इट्स डिफिकल्ट.
0: या
1: अच्छा वाह नाइस गुड. कुछ बच्चे होते हैं ना कहते हैं नहीं भाई ये हमसे ना हो पाएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है. अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मोटिवेशन इनका यही है कि हार्ड चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम भागते रहें उसके पीछे. ठीक है. अच्छा भाई ये बताइएगा कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कोई एक ऐसी कूल सी एडवाइस जो जितने आपके एज ग्रुप के बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको, अब हर किसी का समझाने का लेवल अलग होता है और समझने का लेवल अलग होता है और समझाने का तरीका अलग होता है, तो अगर आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों को कोई एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी?
0: डोंट डू व्हाट पीपल योर एज आर डूइंग, बिकॉज़ वो हमेशा कुछ सिली कलर होते हैं यूजली, कि वो अपने गॉसिप्स में लगे हुए होते हैं, चीज़ों में लगे होते हैं. आप बेटर है कि अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने ऊपर वर्क करें कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में सब कुछ. तो आप अफ्रेड नहीं हो यूनिक होने में और डिफरेंट होने में, बिकॉज वो आपकी खूबी है, खामी नहीं है.
1: योर यूनिकनेस इज योर स्ट्रेंथ. वेरी गुड, आई लाइक दिस थिंकिंग. अक्सर औकात होता है बच्चे शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वॉट इफ अदर किड्स मेक फन ऑफ मी. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्टाइलिंग डिफरेंट होती है, कभी कभी हम कुछ कलर ब्राइट पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा भाई बहुत ब्राइट किस्म का बच्चा है, या कुछ कभी बच्चे हेयर स्टाइल ऐसा बना लेते हैं या कुछ बात करने का अंदाज या कुछ सोच अलग होती है तो उसके ऊपर. बट योर एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज डिफरेंट.
0: एग्जैक्टली.
1: ओके,
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
5: दोस्तों, मस्जिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है. जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें. अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं. हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी. वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे सबसे सबसे टफ आज तक अगर कोई चैलेंज आपके सामने आया हो तो वो क्या चीज थी?
2: सबसे टफ चैलेंज,
1: और उसको आपने कैसे हैंडल किया? कोई ऐसी चीज होगी ना, कभी स्कूल में दोस्त बनाते हुए हुआ हो या अम्मी अब्बू को कोई बात अंडरस्टैंड करते हुआ हो।
2: रिसेंटली मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया था, तो बहुत टफ था बिकॉज मैंने कभी सिंग नहीं किया, वो भी लाइक अराउंड 100 पीपल उनके सामने मैंने सिंग किया स्टेज में, तो मेरे पास स्टेज फ्राइड है, तो उसको कॉन्कर करने के लिए वो बहुत टफ था एक्चुअली, बिकॉज वो इतना ईजी नहीं है मेरे लिए बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ।
1: ओके, बट दैट्स दैट दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट इफ यू थिंक दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड यू गो फेस योर फियर्स।
2: या
1: आपको आई बिलीव हम सबको ही होता है स्टेज फोबिया, तो 100 लोगों के सामने आपको खड़ा कर दो, तो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप
2: so
1: अपने
2: hard.
1: दिमाग में कितना भी कुछ सोच लो, लेकिन जब आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो जाओ, जब आप 4 लोगों के सामने आते हैं ना तो साइलेंट मोड पर आ जाते। अच्छा जी, ये भी एक अच्छी, और वो भी सिंग किया।
2: हाँ गुड, लेकिन मैंने मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपनी आईज बंद की बिकॉज इतनी दफ़ा मैं देखता नहीं था लोगों के वो मुझे देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन मैंने अपना फियर कॉन्कर किया, अच्छा सिंग किया था।
1: वेरी अच्छा, ये आपकी इस बात ने ना मुझे एक चीज़ याद दिला दी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय आई बिलीव 10th ग्रेड और सेकेंड ईयर में थी मैं, हायर सेकेंडरी में थी, तो मुझे याद है आई लव डिबेट्स, तो मैंने एक डिबेट में कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मामला ये होता था कि उस जमाने में ना हमारी असेंबली होती थी बहुत बड़ी, एंड इट वाज अ ह्यूज स्कूल, तो सारे बच्चे असेंबली में खड़े होते, सारे टीचर्स प्रिंसिपल एंड एवरीबॉडी वाज देयर, एंड डिबेट हमें करनी थी, एंड आई वाज अ काइंड ऑफ शाय पर्सन, आई डोंट, मुझे ये था कि भाई उस जमाने में आप इतने 5,000 बच्चों के सामने टीचर के सामने खड़े कैसे। मेरे भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी, उसने कहा बेटा देखो बोलना तो वैसे भी तो आपने करना ये है कि आपने किसी को नहीं देखना, वो सामने दरख्त नजर आ रहा है ना, ट्री, जस्ट लुक एट द ट्री एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, आई थिंक एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो अ ट्री एंड इट हेल्प मी अ लॉट,
2: इट डज लाइक
1: आप ये होता ही है कि अगर आप किसी डिबेट में या किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में किसी में भी आप हिस्सा लेते हो ना, तो द ट्रिक इज कि आप ऑडियंस में जाहिरी बात है आपकी नजर तो जाएगी किसी एक ऐसे इंसान की तरफ, बेशक यू डोंट नो देम, यू डोंट नो हु इज सिटिंग इन द फ्रंट, किसी एक ऐसे बंदे की तरफ आप देखो आई टू आई जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका, देयर लुकिंग, देयर इंटरेस्टेड इन मी,
2: कभी बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं करवाएंगे वो आपके ऊपर हंसेंगे।
1: दोस्तों को तो आप भूल ही जाए ना, दोस्तों की तरफ आपने देखना ही नहीं, क्योंकि आपने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो बस वहाँ डिबेट वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो आपने करना है किसी एक सीरियस इंसान को, लेकिन आपको लग रहा हो कि भाई दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू मी, तो आप बस उन्हें फोकस करके आप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में, इट्स सिंगिंग, इट्स अ डिबेट, इट्स अ स्पीच, व्हाटएवर इट इज, आप बोल दो और यूं सोचो कि आसपास कोई नहीं है, इट हेल्प्स यू, नेक्स्ट टाइम इट विल हेल्प यू। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में आपको क्या लगता है, यू विल बी द सेम पर्सन व्हेन यू गो ऑन द स्टेज और यू विल बी अ बिट डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंट?
2: I'll be a bit different because मेरे पास experience अब आ गया and मैंने अच्छा किया first time में, तो मैं कर सकता हूँ उससे better।
1: अच्छा ये बताएं कि क्या आप ये advice करेंगे कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता हो yet you face it, कभी कभी होता है ना हम rides पे जाते हैं, थीम पार्क में जाते हैं, राइड्स पे जाते हैं, यू आर स्केयर्ड ऑफ इट, टू मच हाइट, गोल घूम रहा है, ये हो रहा है, इट्स अ रोलर कोस्टर, मोस्टली पीपल आर स्केयर्ड ऑफ रोलर कोस्टर्स, वुड यू एज अ पर्सन, मतलब जैसे आपकी नेचर है, आप कहेंगे डर लग रहा है लेकिन डरना चाहिए,
2: हाँ एग्जैक्टली,
1: मजा आएगा, ऐसा आप एडवाइस करते हैं लोगों को एक दफा लाइफ में ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहिए?
2: हाँ एग्जैक्टली, करना चाहिए आपको, बस हाइट फोबिया है तो आप एक टॉल जगह में जाए, वहाँ पर हाइकिंग करे, आप अपने फियर कॉन्कर करे, बिकॉज ये फियर्स हमने मेकअप किए हुए, ये एग्जिस्ट नहीं करते,
1: अरे वाह क्या तो बात बोली. अच्छा मैं एक मजे का एक फैक्ट बताऊं, कि जो फियर का फैक्टर है ना, ये हमारे जब हम छोटे होते हैं ना, वी आर नॉट बॉर्न विद इट.
2: या
1: टिल द एज ऑफ आई बिलीव 3 or 5 ये डेवलप होता है हमारे अंदर और ये सोसाइटी डेवलप करती है हमारे अंदर. तो आई लाइक दिस थिंग अबाउट एवरी किड, आई अप्रिशिएट इट, कि जो अपने फियर्स को कॉन्कर करते हैं. कहते नहीं हमें डर लगता है, लेकिन येट इफ इट्स अ पॉजिटिव थिंग आई विल एटलीस्ट ट्राई इट. तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. और ये लाइफ में जब हम छोटे होते हैं तब हमें पता नहीं चल रही होती है, बड़े होते चले जाते हैं ना, वो हम कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, हम खतरों के खिलाड़ी हैं. तो पॉजिटिव नोट पर जो कोई डिसेंट सी चीज हो.
2: बुरी चीजें नहीं कर रहे, रॉब नहीं कर रहे बैंक को.
1: हाँ जी, बुरी चीजें नहीं, पॉजिटिव. ऑन अ पॉजिटिव नोट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई स्कूल में ही ले लें. ऑन अ पॉजिटिव नोट कुछ बच्चों का ये क्राइटेरिया होता है कि नहीं भाई हम स्पेलिंग बी में क्यों हिस्सा लें, हमारी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है. एटलीस्ट पार्टिसिपेट. स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है?
2: थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ.
1: इट्स नॉट अबाउट अच्छा होना, इट्स अबाउट आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं.
2: हाँ कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं, यूजुअली फेल हो जाता हूँ.
1: इट्स ओके, यू ट्राइंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट इन एवरीथिंग. दैट्स हाउ वी एक्चुअली गेट टू नो व्हाट वी आर गुड इन. नॉट एवरीबॉडी इज गुड एट एवरीथिंग, ऑब्वियसली समवन इज गुड फॉर समथिंग. तो ये बताएं कि आपको, अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो आप कहेंगे हाँ ये चल जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा?
2: बैडमिंटन, वो अच्छा स्पोर्ट है, बिकॉज वो इतना हार्ड नहीं है, रूल्स थोड़े से कम है कंपेयर टू फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. तो वो अच्छा स्पोर्ट है ना, आप खेल सकते अपने फ्रेंड्स के साथ वो.
1: सही सही सही. अच्छा ये बताइएगा कि कोई ऐसा चैलेंज, अभी हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, जो अभी तक आपकी हिम्मत नहीं हुई है करने की, लेकिन आपका दिल करता है कि हाँ भाई इसको ट्राई जरूर किया जाए.
2: डिबेटिंग. हाँ बहुत मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे करना है सेम टाइम, पता नहीं क्यों.
1: अच्छा सोच रहे हैं अभी इंशाल्लाह. हाँ. अगर कोई ऐसा टॉपिक मिले तो उसके ऊपर डिबेट. अभी हमारे कबीर भाई भी एक शो कर रहे हैं डिबेटिंग का, उसके अंदर कभी कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेट करने का,
2: जरूर
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि हम कहते हैं ना एक हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है, बकेट लिस्ट इन द सेंस कि एक लिस्ट होती है जिसके हमने लिखा होता है कि भाई हम क्या क्या करना चाहते हैं लाइफ में. कुछ ऐसा है आपके पास, कुछ कोई बकेट लिस्ट है कि हाँ भाई
2: मुझे स्काई डाइविंग करनी चाहिए, मुझे चांस मिले. हाँ
1: हाइट्स डर नहीं लगता आपको?
2: डर लगता है, इसलिए मुझे करनी है.
1: ओह नाइस, स्काई डाइविंग मुझे भी करनी है बेटा. चलो दोनों साथ चलेंगे, कोई बात नहीं. आप पहले चले जाना, नहीं मैं पहले जाऊंगी, क्योंकि मुझे अक्सर ओकार डर लगता है जब मैं लोगों की हालत देख लेती हूँ ना चीखते चाखते, फिर मैं बैकआउट कर जाती हूँ. अब जैसे मुझे याद है कि राइड्स में ना एक बहुत मशहूर राइड्स है कि इट्स कॉल्ड फ्राइट होती है, वो एंग्री बर्ड वाली.
2: हाँ,
1: एक है
2: स्लिंगशॉट.
1: स्लिंगशॉट, स्लिंगशॉट की एक राइड है. तो उसको जो है ना लोग बड़े मतलब डरते भी हैं, लेकिन हाँ. वो राइड वो उनको एक्सपीरियंस भी करनी है. तो मैंने 2-3 दफा कोशिश की है और मैं कहती हूँ कि जब तक मेरा नंबर आता है तब तक मैं वापस पलट जाती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को सिर्फ चीखते हुए देखती हूँ. I really want to try.
2: सच में मैं गया था 1 month ago.
1: मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अक्सर औकात ये होता है वी आर लिविंग अवर पेरेंट्स फियर्स. तो पेरेंट्स जितने भी सुन रहे हैं ना, मेरी तो उनसे दरखास्त है कि आपके जो अपने फियर्स हैं ना वो आप अपने तक रखें, जो बच्चों के फियर्स, बच्चों के अंदर अपने फियर्स इम्प्लांट नहीं करें. If you are scared of something, if you feel कि नहीं मेरे बच्चे को इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, तो don't give them the concept of getting scared. जैसे अभी आपने बोला कि स्लिंग शॉट से मम्मा को डर लगता है, मम्मा जो है ना बेटे को खींच के पीछे कर रही है लाइन में, करने दे दे, मजा है, एक्सपेरिमेंट है. तो भाई पेरेंट्स से ये गुजारिश है अपने फियर्स इम्प्लांट नहीं करें बच्चों में. देर आर डिफरेंट जनरेशन, ये खतरों के खिलाड़ी हैं सारे के सारे. अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 साल बाद 10 years अराउंड 26 माशाल्लाह 26 years के हो जाएंगे.

0: क्या सोचते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, व्हाट वेयर व्हाट वेयर, कहां कहां क्या कर रहे होंगे, कुछ सोचा है? क्योंकि टाइम तो यूं गुजरता है.
1: हाँ, मेरा प्लान है कि मैं बिजनेस शुरू कर लूँ, तो मुझे देखना है कि मैं फ्यूचर में कोई बिजनेस जॉब कर रहा हूँ और मैं बिजनेस अपना मैंने शुरू कर लिया, जस्ट स्टार्टअप.
0: हाँ, अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, ये तो है कि एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है तो कुछ दिमाग में चल रहा है, किस किस जॉनरा में जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे?
1: अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एवरीडे सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ.
0: ठीक है, क्योंकि एक टाइम मुझे याद है जब पेरेंट्स का एक टाइम ऐसा भी हमने देखा है कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा ना कोई और फील्ड नहीं थी, तो बच्चे जब जिद करते थे ना कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, कंप्यूटर्स की तरफ जाना है, तो पेरेंट्स कहते थे इट्स गुड फॉर नथिंग, इट्स गुड फॉर नथिंग, क्या है, कुछ भी नहीं. उस जमाने में ना वो अब तो इस जनरेशन को तो पता, फिर फ्लॉपी डिस्क का पता है, फ्लॉपी डिस्क नहीं पता नहीं. मुझे पता है सीडीज का पता है.
1: हाँ,
0: सीडीज का पता है. वो जो मैं बात कर रही हूँ डॉस के जमाने की, डॉस और फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जब कंप्यूटर्स और एक्चुअली दिस ब्लैंक स्क्रीन्स और उसके ऊपर सिर्फ कोडिंग चलती थी, तो उस जमाने में भी एक जनरेशन ऐसी थी जो बिल्कुल इस बात पे आमादा नहीं थी कि वी है, उनको ये था कि नहीं हमें कंप्यूटर्स ही करना है, और पेरेंट्स कहते थे कि नहीं देर इज़ नथिंग इन कंप्यूटर्स. और आज देखें, आज AI का दौर, AI के बगैर कुछ चलता नहीं. तो तभी मैंने आपसे पूछा कि मैं एक रिव्यू लूँ आपसे कि भाई वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years. So, चलें, ये भी एक अच्छी बात है that you are thinking about being an entrepreneur. It's not that easy. लेकिन आजकल का दौर यही कह रहा है कि हाँ, most of the people are going towards entrepreneurship. तो वो
1: because अब jobs कम हो गई है market में, इसलिए
0: jobs का कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपना काम अपना होता है. You are a boss of your own thing.
1: वो एक बहुत अच्छी feeling होती है कि अब वो control नहीं कर रहा.
0: हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ये बताइएगा कि जो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी की बता दें या कोई एक ऐसी एडवाइस दे दें जो सारे बच्चों को दिमाग में रखनी चाहिए,
1: जिसमें आपको इंटरेस्ट आप वही करते हैं, गिव अप नहीं करें, मतलब सेम चीज जो मैंने पहले बोला है.
0: और आपके लिए अगर आप कोई दोस्त बनाते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, अगर आप कोई दोस्त बनाते हैं, अगर आप चार लोगों में उठते बैठते, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू सी कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त बनने के लायक है, या ऐसा होना चाहिए इंसान को कि जिससे मैं दोस्ती करूँ, या किसी और की भी अगर किसी से दोस्ती हो तो भाई इसके अंदर ये बात बैड हैबिट ये वाली नहीं होनी चाहिए और ये वाली होनी चाहिए अच्छी बात.
1: तो बेसिकली हम्बल हो, वो लोगों की बैक बाइट नहीं करे बिल्कुल भी, वो बहुत बुरी आदत है. एंड वो अंडरस्टैंडिंग हो, आपके प्रॉब्लम समझ पाए, आपको हेल्प कर पाए जब आपको नीड है, एंड आप भी उनको हेल्प कर पाए. बेसिकली आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड गुड क्वालिटीज.
0: अच्छा भाई, अब एक और सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये है कि ज़रा ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, दोस्त वगैरह हैं आपके?
1: हाँ है, लेकिन है. एक स्मॉल ग्रुप है जिसके साथ मैं वाइब करता हूँ.
0: ठीक है, तो वो जो स्मॉल ग्रुप है, कभी ऐसा हुआ है उनके बीच में, मतलब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो या किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या लड़ाई झगड़ा ना भी हो, एक होता है ना एक डिफरेंस ऑफ थॉट आ जाता है, यस और नो का फर्क आता है, नहीं आई एग्री ऑन इट एंड आई डोंट, तो उस मैटर को कभी सुलझाया, ऐसा ऐसा कोई टॉपिक आया?
1: हाँ, बहुत दफा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उसको एक न्यूट्रल वे में देखा कि आप लाइक कर सकते जो आपको अच्छा लगता है, एंड मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन हम दोनों दोस्त हो सकते हैं फिर भी.
0: अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझदारी की, कि हमारी दोस्ती या हमारे जो घर के भी फैमिली के रिलेशंस होते हैं बहन भाइयों के अंदर, अम्मा अब्बा के साथ, हमारे रिलेशन चलते ही तभी हैं व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस.
1: या एग्जैक्टली,
0: लोग कहते हैं ना कि दोस्त आपकी मेंटालिटी का हो, इट्स नॉट दैट कि दोस्त आपकी मेंटालिटी का हो, ये होता है कि आप किस तरीके से उसे हैंडल कर जाते हैं, कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो एक रिस्पेक्ट होती है, वो जहां पे भी होगी ना. अच्छा, एक बात बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि घूमते फिरते हैं आप भी स्कूल में हैं, दोस्तों के अलावा भी योर अ सोशल पर्सन के, चलें कह लें कि स्कूल में इंटरेक्शन है, तो क्या आपको लगता है कि

0: आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा मैं आ गया है या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या यू थिंक दैट नो वी आर फाइन दैट हाउ एवर लेवल वी आर ऑन एट, तो हम इसी में अच्छे हैं.
1: मैं बोलूंगा कि हम अंडर कॉन्फिडेंट है, हम इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है, अपना को बिलीव, हम अपने अंदर बिलीव नहीं करते एनीमोर.
0: अंडर कॉन्फिडेंस चल रहे हैं.
1: हाँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने अंदर बिलीव नहीं करते, वो अपने फियर्स से कॉन्कर नहीं करते, एंड वो मतलब ओवरऑल इतने
0: वो नहीं है कि मतलब अपने अपने ऊपर एतमाद नहीं है.
1: हाँ, एतमाद नहीं है.
0: अच्छा, ये एक बात बताएं कि ये आप क्या, आपको पता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक होता है ना कि देखें, बात ये होती है कि हमें चार बुराइयां सामने वाले में नजर आ रही हो, ठीक है, ये बात नहीं करता, ये ड्रेसिंग ऐसी करता है, अच्छा इसका हेयर स्टाइल कैसा है, अच्छा ये है, ये एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनीथिंग. तो अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर इट, उसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सीइंग दैट समबडी इज अंडर कॉन्फिडेंट, तो आप अगर अपने आप को उस शू में डालकर देखें तो आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होता है?
1: आप सपोर्ट करें उस पर्सन को, जेन्युइनली आप सपोर्ट करें, आप उसको एवरी में सपोर्ट करें जो आप कर सकते हैं. जब वो कोई कंपटीशन में टेक पार्ट करे, आप उसको बोले वो कर सकता है, गुड लक एंड ऑल दैट, तो उसको आप कॉन्फिडेंस देते हैं.
0: अच्छा भाई, जाने से पहले अब हमारा टाइम भी जो है वो थोड़ा बहुत तकरीबन ख़त्म होने को आ गया है, तो जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि हमारे साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे.
1: ठीक है,
0: चलिए मैं आपसे एक वैसे रैंडम से क्वेश्चन करूँगी. आई जस्ट थ्रो सम क्वेश्चन, यू हैव टू कैच देम, लेकिन सेकेंड्स का सोचना नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है इसके अंदर.
1: ठीक है,
0: ठीक है, तो चले भाई मैं आपसे कुछ यूँ समझ लें 10 questions करूँगी. ठीक है,
1: ठीक है,
0: ताकि मैं सिर्फ एक फन के लिए. चले भाई शुरू करते हैं अपना
1: जी.
0: हम इसे कहेंगे द रैपिड फायर राउंड. ठीक है, तो ये बताइएगा चाय या कॉफी?
1: कॉफी.
0: होमवर्क या प्ले टाइम?
1: प्ले टाइम.
0: ये बताइएगा समर या विंटर?
1: विंटर.
0: Pets or no pets?
1: Pets.
0: Cricket or football?
1: Football.
0: Chocolate or ice cream?
1: Ice cream.
0: Drawing or dancing?
1: Drawing.
0: Okay, good. A morning person or a night owl?
1: Night owl, for sure.
0: What? Maths or science?
1: Science.
0: Okay, last question. You tell me, ki bike achhi lagti hai ya car?
1: Car.
0: Oh, you are a car person. Achha, Sports car?
1: No, like any car.
0: Four-wheel drive.
1: Yeah.
0: Sports car or four-wheel drive? Yeah, a truck. Wow. मुझसे पूछे तो मैं तो sports car. Oh my God. Boom, boom. अच्छा भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबी दे, और आपकी जो बकेट लिस्ट है इंशाल्लाह उसके अंदर और चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ऐड होती रहें. एंड मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज आई सी अ ब्राइट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ब्राइट रखे, ऐसा ही समझदार रखे, एंड रिमेंबर नॉट टू लूज योर स्पार्क. तो भाई साथियों, जाने से पहले हम आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी, एनीथिंग टू द लिसनर्स हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू यू, समथिंग नाइस.
1: डोंट गिव अप.
0: अरे वाह, गुड. छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है कि डोंट गिव अप. ऑलवेज रिमेंबर देयर वाज अ रीजन Why you started. हमेशा उस रीजन को याद रखिएगा. कभी कभी हम लाइफ की भाग दौड़ में भूल जाते हैं दैट वाई डिड वी एक्चुअली स्टार्टेड. तो आपकी कोई हॉबीज हैं, वो भी एक अचीवमेंट है कि आपकी कोई हॉबी है. देर आर पीपल हु कैन नॉट फिगर आउट वॉट देयर हॉबीज आर, हु कैन नॉट फिगर आउट वॉट टू डू वेन देर बोर्ड. तो भाई अपनी हॉबीज को जिंदा रखें अपने अंदर, क्या पता यही हॉबीज आगे चलकर आपके लिए अचीवमेंट बन जाए, आपके लिए एक पाथ बन जाए, और आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको कामयाब रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी टेक केयर करें. जो इंसान अपनी टेक केयर नहीं कर सकता वो दूसरों की भी नहीं कर सकता. यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल करें, सबसे ज़्यादा ख्याल अपना करें. क्योंकि आप जरूरी हैं भाई, आप यू आर इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ. जो अपना ख्याल नहीं सकता दूसरों का भी ख्याल नहीं सकता. तो भाई हमें दीजिए इजाजत, चले हानी
1: जी
0: भाई, हम लोग चले स्टूडियो से बाहर. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर एक नए जूनियर जनाब के साथ मुलाकात होगी, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा. तब तक के लिए आरजे सफा को दीजिए इजाजत. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग सेगमेंट इको स्विच का। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी जिंदगी को बेटर बनाती हैं और हमारी एनवायरमेंट को पॉजिटिव असर देती हैं। भाई आज हम किस पे बात कर रहे हैं सफा? आज हम बात कर रहे हैं फूड वेस्ट कम करने पर। देखिए, आप बुफे डिनर पर गए, ठीक है, प्लेट्स फुल कर ली क्योंकि सब डिशेस आपको अच्छी लग रही थी, पैसा दिया है तो मैं सबकी सब खाऊंगा। लेकिन जब वापस टेबल पर आते हैं ना तो आधा खाना तो प्लेट में ही रह जाता है कि नहीं? या फिर अगर घर में भी हो, घर में अक्सर औकात ही होता है कि ज्यादा खाना बन जाता है और फ्रिज में हम ज्यादा खाने को रख देते हैं ये सोच कर कि भाई हम बाद में खा लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, हम उसे भूल जाते हैं या यूज नहीं होता वो और वेस्ट हो जाता है। देखिए, ये सिचुएशंस हम सबके साथ होती हैं, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक पर आते हैं। देखिए, फूड वेस्ट दुनिया भर में एक सीरियस इशू माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बहुत बड़े अमाउंट में खाना वेस्ट होता है, जबकि दूसरी तरफ कई लोग बेसिक फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ एथिकल इशू नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल इशू भी है। देखिए, अब सवाल ये है कि फूड वेस्ट प्रॉब्लम क्यों होता है? इसका कुछ आप कह लें, इसकी कुछ कॉमन वजहें मैं आपको गिनवा देती हूँ। पहली वजह ओवर सर्विंग है, हम जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं। दूसरी वजह है प्लानिंग का ना होना, घर में या शॉपिंग में ओवर बाइंग करना। तीसरी वजह लेफ्ट ओवर को इग्नोर करना, जो खाना बच जाता है उसे प्रॉपरली रीयूज नहीं करते हम। और भी कई वजह हैं, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इको स्विच क्या है इस केस में। देखिए, सिंपल सा आइडिया है, उतना लो जितना खा सको और जो बचे उसे समझदारी से रीयूज करो ना। देखिए, अब बात करते हैं हम, क्या बात कर लें फूड वेस्ट कम करने की, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। जब खाना वेस्ट होता है ना तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए वाटर, एनर्जी और रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो भी जाहिर बात है वेस्ट ही हो रहे हैं ना। दूसरा फायदा है लैंडफिल्स वेस्ट कम होता है। फूड जब गार्बेज में जाता है तो वो डीकम्पोजिशन के दौरान हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे मीथेन, जो कि क्लाइमेट चेंज का आपको पता है कि बड़ा अफेक्ट करती है ये। तीसरा फायदा है सेविंग, जितना कम फूड वेस्ट होगा उतना ही आपका ग्रोसरी बिल भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा फायदा है अवेयरनेस और ग्रेटिट्यूड, जब आप खाने को वैल्यू देते हैं ना तो आप नेचुरली ग्रेटफुल और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन जाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आप रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, आपने एक बर्गर या बिरयानी की प्लेट ऑर्डर की है जो आपको पसंद है। आप सोचते हैं भाई मैं पूरा का पूरा खा लूंगा, लेकिन हाफ खाकर ऑलरेडी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो फुल हो गया। अब या तो आप उसे वेस्ट कर देते हैं या पैक करवा लेते हैं। यहाँ सिंपल डिसीजन फर्क क्रिएट करता है साथियों। अच्छा, घर का भी एग्जांपल ले लें, चलें बाहर का छोड़ें। होता है कि अक्सर अम्मी या बेगम ने ज्यादा खाना बना लिया, फैमिली मेंबर कभी कभी एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि हम बाद में खा सकें। लेकिन अगर प्लानिंग ना हो ना तो वो एक्स्ट्रा खाना बाद में वेस्ट हो जाता है। इसका सोल्यूशन प्लानिंग है, ना कि ओवर कुकिंग। अच्छा चले, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी ले लेते हैं। इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि आप स्मॉल पोर्शंस लें, मील प्लानिंग करें, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली यूज करें, फ्रिज मैनेजमेंट सीखें। भाई फ्रिज मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है। और हाँ, खाना है तो उसे शेयर भी करें नेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, ये आप कर सकते हैं। तो भाई दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ रेस्टोरेंट्स और बुफेज बहुत कॉमन है, फूड वेस्ट और भी इजीली हो जाता है। इसीलिए यहाँ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी हैं। अच्छा, अगर हम नंबर के परस्पेक्टिव से देखें ना, अगर एक हाउस होल्ड रोज सिर्फ 10% फूड वेस्ट रिड्यूस करे तो महीने के एंड तक नोटिसेबल सेविंग हो जाती है। और अगर एक कम्युनिटी लेवल पर ये हैबिट अडॉप्ट हो तो फूड डिमांड और वेस्ट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो साथियों, फूड सिर्फ एक चीज नहीं है, खाना सिर्फ एक चीज नहीं है जो हम खा लेते हैं, ये मेहनत है, रिसोर्सेज और वक्त का रिजल्ट है। जब हम इसे वेस्ट करते हैं ना तो हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि पूरा सिस्टम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हर निवाला कीमती है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश और आज हम बात करेंगे मुस्कुराहट के बारे में। इस्लाम हमें सिखाता है कि छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ा सवाब रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सदका है। एक सच्ची और प्यारी मुस्कुराहट किसी का दिन बदल सकती है, उसका दिल खुश कर सकती है और उसे नई उम्मीद दे सकती है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन में रहते हैं, इसलिए एक मुस्कुराहट उनके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी नेकियां ढूंढते रहते हैं, जबकि इस्लाम हमें बहुत आसान और सिंपल रास्ता बताता है नेकियां कमाने का। आज से हर किसी से मुस्कुरा कर मिलिए, बात करने पर उसका हाल पूछने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का खूबसूरत सा मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका RJ मावश के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।
3: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो

0: अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कतर्स विजन एज अ गाइड फॉर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। दोस्तों वो कहते हैं ना कि वन स्टेप 2030, जब विजन हो तो फैसले स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग तब होती है जब हर फैसला सिर्फ आज के लिए ना हो बल्कि कल को भी जहन में रखकर लिया जाए। कतर का नेशनल विजन 2030 हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्लियर गाइड का काम करता है। जब कोई नया प्रोजेक्ट या पॉलिसी बनती है तो पहले ये देखा जाता है कि क्या ये विजन गोल्स के मुताबिक है या नहीं। चलिए मैं समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त सिर्फ रोड्स नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिस्टम्स और एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। एजुकेशन में भी सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि फ्यूचर स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है। देखिए विजन कतर को यही सिखाती है कि शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म नुकसान के दरमियान फर्क कैसे किया जाए। इसी वजह से डिसीशंस इमोशनल नहीं प्लानिंग बेस्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कतर का नेशनल विजन 2030 एक कंपास की तरह है जो हर फैसले को सही डायरेक्शन देता है। एंड वन स्टेप टू 2030 का मतलब है हर सोचा समझा हुआ फैसला। इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करती या तब तक एक सक्सेसफुल इकोनॉमी नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वहाँ के लोग शहरी खुश ना हो, और शायद इसी को कहा जाता है लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलबींग। देखिए सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ा लेना असल तरक्की तो है नहीं। कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो डेवलपमेंट अधूरा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है। दोस्तों जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station FM 107.
3: FM 107.
1: दिल से देसी।
4: हेलो,
5: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट्स।
4: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से दिल।

इंटरनेशनल स्टेज पर अपने मुल्क की प्रायोरिटीज भी बयां की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो है पीस, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हां, मुल्क ने काफी अरसे तक कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया है और इसलिए अब हुकूमत की कोशिश है कि अमन जो है उसे कायम किया जाए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। जी हां, डिप्लोमेसी के जरिए वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तावन बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सोशल सर्विसेज को बेहतर बनाना है। अम्बेसडर ने तालीम की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम किसी भी मुल्क की मुस्तकबिल की बुनियाद है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। तालीम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोजगार के मौके पैदा नहीं करती बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म सोसाइटी भी बनाती है। अम्बेसडर ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिनमें स्कूल्स की तादाद को बढ़ाना है, टीचर्स की ट्रेनिंग और मॉडर्न करिकुलम को शामिल करना है। जी हां, वहीं पर जवान नस्ल के लिए उन्होंने एक मजबूत पैगाम भी दिया। उनका कहना था कि अगर कोई यूथ डिप्लोमेसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में करियर बनाना चाहता है तो उसे मेहनत, सब्र और कंसिस्टेंसी को अपनाना होगा। इल्म हासिल करना, मुख्तलिफ कल्चर्स को समझना और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने यूथ को एनकरेज किया कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें और दुनिया के साथ पॉजिटिव तौर पर जो है वो इंगेज हों। वहीं लीडरशिप क्वालिटी पे बात करते हुए अम्बेसडर ने कहा कि आज के ग्लोबल चैलेंजेस का जो मुकाबला करने के लिए लीडर्स में जो क्वालिटी चाहिए वो है ऑनेस्टी, विजन, पेशेंस और इंक्लूसिवनेस। एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेकर चले, उनकी बात सुने और मुश्किल हालात में भी दुरुस्त फैसले ले। अम्बेसडर ने यह भी कहा कि ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पावर्टी और कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ तभी हल हो सकते हैं जब लीडर्स मिलकर काम करें। जिया, कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से आपने कहा कि मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान इंटरेक्शन से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और अमन बढ़ता है। अफ्रीका और अरब दुनिया के दरमियान कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस टाइज मजबूत है जिन्हें मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। वहीं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल्स और मीडिया कोलैबोरेशन से लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। ये अमन और कोऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी भी है। रिया, अम्बेसडर के रोल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बेसडर सिर्फ सियासी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बल्कि वो अपने मुल्क के कल्चर, वैल्यूज और आइडेंटिटी को भी प्रमोट करते हैं। वो मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। डायलॉग, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना उनकी जिम्मेदारी होती है। अम्बेसडर ने बताया कि वो अपने फर्ज को एक अमन के सफीर के तौर पर समझना चाहते हैं जो दुनिया भर में और अपने मुल्क में पीस को, स्टेबिलिटी को और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से भी हमने बात की, जहां अम्बेसडर ने कहा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अपने यंग जनरेशन को एम्पावर करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। उनका कहना था कि अगर यूथ को सही डायरेक्शन और रिसोर्सेज मिल जाएं, तो वो मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। यूथ को ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कराने के लिए स्किल्स और नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने पर्सनल डिप्लोमेटिक सफर से अम्बेसडर ने कुछ अहम सबक भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि डिप्लोमेसी में ना पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी होती है। हर मुल्क और कल्चर मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट बहुत अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं लेकिन परसीवरेंस से उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। उनका मशवरा था कि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन पर फोकस करें और कभी भी सीखना बंद ना करें। वहीं अम्बेसडर ने सक्सेस की डेफिनेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे लिसनर्स के लिए शेयर किया। उनका कहना था कि किसी भी मुल्क की असली कामयाबी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक महदूद नहीं होती। ट्रू सक्सेस तब होती है जब मुल्क में सोशल जस्टिस हो, लोगों को बराबरी के हुकूक मिले, एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो और

0: सोसाइटी मॉरली स्ट्रांग हो। उन्होंने कहा कि एक कामयाब नेशन वो होता है जहां लोग अमन से रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और मिलकर अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। मजीद तफसील में अम्बेसडर ने इस बात पर जोर दिया कि CAR जैसे डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल पार्टनरशिप के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, इसीलिए वो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा अहम समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकन यूनियन जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर वो अपने मुल्क के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और सपोर्ट हासिल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कतर जैसे कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन से उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया बरतरी देखी गई है। अम्बेसडर ने जेंडर इक्वालिटी के हवाले से भी बात करी और कहा कि ख्वातीन को एम्पावर करना भी डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के जरिए विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है जिससे कि सोसाइटी भी स्ट्रॉन्ग हो। वहीं पर आपने मीडिया और कम्युनिकेशन की अहमियत पर भी जोर डाला और कहा कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग से अवेयरनेस बढ़ती है और लोग ग्लोबल इश्यूज को बेहतर समझ पाते हैं। इसीलिए फ्री और रिस्पॉन्सिबल मीडिया एक सेहतमंद सोसाइटी के लिए जरूरी है। आखिर में अम्बेसडर ने उम्मीद जाहिर की कि फ्यूचर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की की तरफ जो है वो आगे बढ़े, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करे। ये इंटरव्यू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अम्बेसडर की सोच, आपके विजन और उनके मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करता है और हमें वाज़े तौर पर समझने में मदद देता है। आपने डिप्लोमेसी, एजुकेशन, लीडरशिप और यूथ एम्पावरमेंट की अहमियत को उभारा और ये पैगाम दिया कि कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही दुनिया में अमन और तरक्की मुमकिन है। उनका पैगाम खास तौर पर यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और इंस्पायर करने वाला है कि वो अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं और अपने मुल्क की खिदमत करें। इंटरव्यू सिर्फ एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव का नहीं बल्कि ग्लोबल यूनिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक अहम पैगाम देता है। दोस्तों, एक बार वापस से मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अम्बेसडर को। थैंक यू सो मच योर एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड शेयरिंग द वैल्युएबल इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस विद अस। आई डेफिनेटली वांटेड टू से दिस दैट वाज ट्रूली एन ऑनर टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आई बिलीव योर थॉटफुल रिस्पॉन्सेज एंड इंस्पायरिंग मैसेज especially for the youth are deeply appreciated. We are really grateful for your openness and for your contribution to a meaningful discussion. We sincerely appreciate and thank you once again.
1: Thank you so much.
0: दोस्त इसी के साथ अब आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह अगले महीने एक और नए एम्बेसडर के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे और उनकी कंट्री और उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
5: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
4: गेम ऑन,
5: वॉल्यूम अप,
4: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
5: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
4: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देश।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स, आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, एफएम 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाईसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइक्लिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर मीडिया कॉरपोरेशन का उर्दू रेडियो आपसे मुखातिब है।

0: हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो इस वजह से मैंने कहा दुआ करवा लेते हैं।
1: अच्छी बात है, सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, और आपके अल्लाह ताला आपकी वालदा को मुकम्मल सेहत तो आफियत अता फरमाए, उनका ऑपरेशन कामयाब रहे और दिल मजबूत मजबूत और मजबूत बन जाए, और इंशाल्लाह वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर आपके पास आएंगे वापस बेइज़्निल्लाह ताला। मुद्दसर रैहान साहब, सवाल क्या है आपका, है कुछ सवाल पूछिए जिसमें पूछना चाहते हैं?
0: मुझे दुआ करवानी।
1: बहुत शुक्रिया आपका मुद्दसर भाई, फी अल्लाह। और टेलीफोन नंबर जिस पर आप अभी रब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवाल पेश फरमा सकते हैं 443-443-77। उसके बाद फिर हम आज की दुआ की तरफ आएंगे, दुआ के बाद फिर जो सवाल आप सामीन की तरफ से आए हैं उनके जवाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, मोहतरम शेख मोहम्मद मूसा साहब उनके जवाब अता फरमाएंगे। और एक कॉल है हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: प्लीज़ ज़रा रेडियो की आवाज़ बंद कर देंगे भाई?
2: हाँ जी बंद कर, जी बंद कर।
1: नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुई इसलिए ये गूंज आ रही है, बंद करेंगे तो होगी। हाँ
2: हेलो
1: जी, अब सही है जी, फरमाइए। क्या क्या नाम है?
2: सरदईद
1: जी।
2: सरदईद
1: आपकी आवाज़ काट रही, दही कुछ ऐसा कुछ नाम जहन में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, क्या कह रहे हैं?
2: मैं सरदईद बात कर रहा हूँ।
1: परवेज साहब
2: जी। सर
1: जी परवेज भाई, क्या सवाल है?
2: ठीक ठाक, पहले आप सलाम कबूल कर दे।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। परवेज भाई क्या सवाल है?
2: सर मेरा भी दिमाग है, थोड़ा दुआ की बहुत जरूरत है।
1: परवेज भाई, परवेज भाई आपकी आवाज़ जो है ना वो पता नहीं कुछ है, या तो रिसीवर से दूर हैं या बहुत
2: करीब। फिर मैं दोबारा कर।
1: हाँ दोबारा कर ले, बहुत समझ नहीं आ रही है, बहुत आवाज़ एकदम आखिर में खिंच जाती है, तो अल्फाज कुछ कुछ बन जाते हैं। चलिए जब आएगी कॉल तो हम ले लेंगे। और इस दौरान में एक और कॉल आ गई, शायद वही हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: सर जी गुलजार हुसैन भट्ट बात कर रहा
1: हूं। माशाल्लाह गुलजार साहब, खुशामदीद, खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर।
3: बहुत मेहरबानी सर, हम भी आपकी आवाज़ सुनते रहते लेकिन टाइम की मुश्किल होता है ना इस वक्त।
1: जी भाई जी गुलजार भाई।
3: सर जी एक सवाल है बस।
1: फरमाइए।
3: ये जो ज़बह करते हैं कोई जानवर यानी।
1: जी भाई।
3: मैंने दो तीन दिन पहले सुना एक आदमी बोला कि अगर ज़बह करेगा ना तो उसका जो हड्डी के सेंटर में नाड़ होती है ना जिसको आराम मगज बोलते हैं हम
1: जी,
3: वो अगर थोड़ा भी छुरी लग जाएगी तो जानवर आराम हो जाते।
1: नहीं छुरी लग जाने से हराम नहीं होता, बस ये कि उसको काटते नहीं है, बस इतना है। लेकिन वो जो
3: अच्छा, अच्छा,
1: अगले
3: अच्छा,
1: अगली बात यह है ना, उसकी वजह यह है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानवर को ज़बह किया, मसलन दुम्बा या बकरा या बैल वगैरह, तो उसको इसका जो पिछले ये जो जिसको हराम कहते हैं इसको अगर इसका और दिमाग का तसलसल जो रबता जो है ना वो बाहर रहे तो फिर जिस्म से खून जल्दी बाहर निकल जाता है।
3: अच्छा,
1: अगर वो कट जाए तो फिर जिस्म के अंदर खून रह जाता है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, कुछ निकल जाता है। तो जिस्म में खून जो है वो इंसानी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे भी बहता खून वो हमारे लिए जायज नहीं है। तो खून निकालना, खून को मुकम्मल तौर पे जितने ज़्यादा वो जानवर की बदन से निकल जाए उसको उसके लिए ये बहुत मुफीद तरीका है कि उस हराम मगज को बहाल रखा जाए और वो उसके अच्छा। दिमाग का और उसके जिस्म का, जिस्म की रगों का एक रब्त रहता है और वो खून निकल जाए, ये उसकी अफादियत है। और बाकी ये कि अगर छुरी लग गई थोड़ा सा टच हो गया तो क्या फर्क, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता।
3: नहीं ज़्यादा लोगों को काटते हैं ना वो, ये जल्दी मर जाए भाई
1: नहीं जल्दी जल्दी जान निकलने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरीन तरीका हो सकता है ना
3: वो मैं समझ गया। बिल्कुल मैं समझ गया, मेरे को एक आदमी बोला हमको नहीं मालूम था, सही बात है
1: जी भाई।
3: जी एक लाजमी किसी से कोई ना कोई तो बात करो तो निकल जाती है कुछ ना कुछ
1: जी,
3: फायदा हो जाता है आदमी को,
1: नहीं मालूम आता है। अगर आप यहाँ चूंकि दोहा में हमारे कई गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद है मुझे तो दो तीन दफा ऐसा हमारे पड़ोस में ही ऐसा ये मौका मिला है या जैसे घर जा रहे तो इतनी गंदी इतनी बदबू फैली हुई थी, तो पता चला कि आज उनके यहाँ ना जो गैर मुस्लिम भाई उनके यहाँ उन्होंने बकरा या गोश्त बनाया है और उस वो गोश्त चूंकि झटके वाला होता है उसमें खून
3: ना,
1: और उसकी उस खून की वजह से पूरे एरिया में

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

1907 में लियो बैकलैंड ने बैकलाइट बनाया था, जो पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था। उस वक्त से लेकर आज तक प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन काफी तेजी से बढ़ा है। इनिशियली प्लास्टिक को एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल समझा गया, जो हर चीज को बेहतरीन बना सकता था, जैसे पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। लेकिन टाइम के साथ इसके ज्यादा इस्तेमाल ने नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करना शुरू कर दी। प्लास्टिक का यूज हर फील्ड में बढ़ता गया, फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम टॉयज टू फर्नीचर, प्लास्टिक हर जगह है। आज की दुनिया में हम ऑलमोस्ट हर चीज प्लास्टिक में देखते हैं, चाहे वो बॉटल्स हों, बैग्स, पैकेजिंग, टॉयज हों, हर चीज के साथ प्लास्टिक का कनेक्शन मस्ट हो गया है। प्लास्टिक की मकबूलियत काफी तेज रफ्तारी से हुई, जो कि इसकी कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी की वजह से था। जब प्लास्टिक ने मार्केट में एंट्री की थी, तो लोगों ने इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मटेरियल समझा था। आज के वक्त में प्लास्टिक का यूज किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिवली बनाने के लिए होता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफी रिड्यूस किया है, जिससे कई चीजों की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है। बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे फूड पैकेजिंग, कंज्यूमर गुड्स और हेल्थ केयर ने प्लास्टिक को अपना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज प्रोडक्ट को सेफली स्टोर करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर्स, बॉटल्स और फूड रैपर्स ने कंसेप्शन और स्टोरेज को काफी इफिशियंट बनाया है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस में भी प्लास्टिक का यूज होता है, जो कि स्टरलाइज्ड और रीयूजेबल होता है। जब पहली बार प्लास्टिक की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो लोग इसको एक इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक मटेरियल समझते थे। इनिशियल स्टेजेस में प्लास्टिक को बाद में रिप्लेस करने की कोई सोच नहीं थी। प्लास्टिक की प्रोडक्शन का ग्रोथ बहुत तेज हुआ और 20th सेंचुरी के दौरान इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। प्लास्टिक का प्रोडक्शन मेनली पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल के जरिए होता है, जो एनवायरनमेंट पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। 1900s के दौरान प्लास्टिक का यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एज अ चीप और वर्सटाइल मटेरियल पॉपुलर हुआ। लेकिन 21st सेंचुरी तक आते आते हमने देखा कि प्लास्टिक वेस्ट के इम्पैक्ट्स काफी सीरियस हो गए हैं। प्लास्टिक का कंजप्शन बहुत बढ़ गया था, लेकिन इसकी वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाई। आज के वक्त में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा बन गया है। हर चीज में प्लास्टिक होता है, टॉयज, पैकेजिंग, फर्नीचर और एवरीडे आइटम्स जैसे बैग्स, स्ट्रॉस और बॉटल्स। हर कॉर्नर में, हर जगह में प्लास्टिक का होना जरूरी है, जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। कहीं पर भी हम सोच नहीं पाते कि हम किस चीज में प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हर चीज में छुपा होता है। इस वाइड स्प्रेड यूज ने एक नया इशू क्रिएट किया है, प्लास्टिक वेस्ट। हर जगह प्लास्टिक का वेस्ट मिलता है, लैंडफिल्स हो, ओशियंस हो या रिवर्स। हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी तेजी से इंक्रीज किया है, लेकिन इसके डिस्पोजल और रीसाइक्लिंग के मेथड उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। इन सभी फैक्टर्स ने प्लास्टिक की प्रॉब्लम को इतना सीरियस बना दिया है कि आज हम इसके एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट पर बात कर रहे हैं। प्लास्टिक की मकबूलियत का मेन रीजन उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वर्सटाइलिटी थी। जब प्लास्टिक मार्केट में आया, तो उसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होना शुरू हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से प्लास्टिक ने जल्द ही अपना प्लेस सिक्योर किया, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का कॉस्ट काफी कम हो गया। प्लास्टिक का यूज इनिशियली कन्वीनियंस के लिए भी होता था। फॉर एग्जाम्पल, फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक की एंट्री से प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गई थी। प्लास्टिक का यूज मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेडिकल सप्लाईज लाइक सिरिंजेस, आईवी बैग्स और सर्जिकल टूल्स प्लास्टिक के ही बनाए जा रहे थे। इससे इन्फेक्शन रिस्क भी कम हुए, क्योंकि प्लास्टिक को इजीली स्टरलाइज किया जा सकता था। प्लास्टिक ने मैन्युफैक्चरिंग को सिंप्लीफाई किया था। इसके फ्लेक्सिबल और लाइट वेट नेचर की वजह से इसे इजीली मोल्ड किया जा सकता था और डिफरेंट

शेप्स में और साइज में प्रोड्यूस भी किया जा सकता था। ये प्लास्टिक की मेन स्ट्रेंथ थी। प्लास्टिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव था। जहां दूसरे मटेरियल्स जैसे ग्लास और मेटल एक्सपेंसिव थे, प्लास्टिक ने एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक की कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक काफी इम्पैक्ट डाला। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बॉटल्स और कंटेनर्स ने ग्लास और मेटल के अल्टरनेटिव्स को रिप्लेस किया। ये मटेरियल्स लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं, जो शॉपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का यूज बहुत कॉमन हो गया है। प्लास्टिक का यूज हर चीज में हो सकता था, फ्रॉम फर्नीचर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू मेडिकल डिवाइसेस। प्लास्टिक ने इन सब इंडस्ट्रीज को इनोवेटिव बनाया और प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल बनाया। डेली आइटम्स में भी प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है, फ्रॉम प्लास्टिक कटलरी टू बैग्स, फ्रॉम टॉयज टू किचनवेयर। प्लास्टिक ने हर चीज को इजी और अफोर्डेबल बना दिया। कन्वीनियंस के नाम पर प्लास्टिक ने जिंदगी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया था कि लोग उस पर रिलाय करने लगे। लेकिन ये कन्वीनियंस एक टाइम के बाद एक प्रॉब्लम बन गई। प्लास्टिक का यूज आज की मॉडर्न कन्वीनियंसेस में बहुत कॉमन है। फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल सप्लाईज, सब में प्लास्टिक का रोल एसेंशियल है। प्लास्टिक ने फूड पैकेजिंग को सिक्योर और सेफ बनाया और हमारे प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया। फॉर इंस्टेंस, प्लास्टिक पैकेजिंग ने प्रोडक्ट्स को कॉन्टेमिनेशन से बचाया और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक का यूज और भी ज्यादा हुआ। गैजेट्स जैसे फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल उनके डिजाइन को इन्हेंस करता है। प्लास्टिक के लाइट वेट नेचर की वजह से डिवाइसेस पोर्टेबल और इजी टू हैंडल हो जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफर बनाया, क्योंकि प्लास्टिक ने इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को मिनिमाइज किया। मेडिकल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक रेवोल्यूशन लेकर आया। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, सर्जिकल ग्लव्स और आईवी बैग्स ने हॉस्पिटल्स में हाइजीन स्टैंडर्ड को बेहतर किया। प्लास्टिक का यूज मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज करने और पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्लास्टिक की कन्वीनियंस ने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया। लोग समझने लगे कि प्लास्टिक का यूज तमाम चीजों में करना कन्वीनियंट और सेफ है, लेकिन ये ओवर रिलायंस का सबब बन गया। प्लास्टिक ने इनिशियली कन्वीनियंस प्रोवाइड की थी, लेकिन ओवर द टाइम हमने प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा कर दिया है कि अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। जब प्लास्टिक का यूज इतना कॉमन हो गया, तो लोग इसे रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेटिव मटेरियल्स या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं सोच पाए। जैसे हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड करते हैं, वही प्लास्टिक का वेस्ट एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है। ये ओवर रिलायंस हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया है। प्लास्टिक ने हमारी कन्वीनियंस को तो बढ़ाया, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाया। प्लास्टिक की कन्वीनियंस के साथ एक हिडन कॉस्ट भी होती है, जो हमने बहुत देर तक इग्नोर की। जब हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो हम एनवायरनमेंट पर बर्डन डालते हैं। प्लास्टिक का ब्रेकडाउन होने में बहुत टाइम लगता है, और जब ये लैंडफिल्स और ओशियंस में जाता है, तो ये वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को डैमेज करता है। प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन प्रोसेस काफी स्लो होता है, ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, और जब प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक क्राइसिस बन जाता है। ये वेस्ट मैरीन लाइफ को डायरेक्टली थ्रेट देता है, क्योंकि प्लास्टिक पार्टिकल्स एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए जो कन्वीनियंस हम प्लास्टिक से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली एक कॉस्ट अफेयर बन जाता है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न के फॉर्म में सामने आता है। अब आपसे मैं कुछ नंबर्स शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू अ 2023 रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हर साल दुनिया भर में 430 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है।
और इसमें से ऑलमोस्ट 60% सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक बार यूज करो और फेंक दो। लेकिन ये प्लास्टिक कहाँ जाता है? लैंडफिल्स में, रिवर्स में, ओशियंस में और कभी कभी तो हमारी खाने की प्लेट तक में, माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में। लेट्स पेंट अ पिक्चर। आप जब बाजार जाते हैं, एक प्लास्टिक बैग में फ्रूट्स या ग्रोसरीज लाते हैं, वो बैग शायद एक घंटे के लिए यूजफुल है, लेकिन डीकम्पोज होने में इसे 500 से 1000 साल लग सकते हैं। और जब ये डीकम्पोज होता है तो ये छोटे छोटे पीसेस माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है, जो फिश, बर्ड्स और इवन ह्यूमंस के बॉडीज में एंटर हो जाता है। अब सवाल ये है कि व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी सो इम्पॉर्टेंट? प्लास्टिक पोल्यूशन ने ना सिर्फ एनवायरनमेंट को हार्म किया है, बल्कि हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक थ्रेट है। जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो टॉक्सिक केमिकल्स एयर में रिलीज होते हैं, जो कैंसर और दीगर बीमारियों का सबब बन सकते हैं। प्लस ये टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्री को भी डैमेज करता है। लेकिन अभी भी उम्मीद है, हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हमारी जिंदगी में बड़े फर्क ला सकते हैं। रीयूजेबल बैग्स यूज करना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह स्टील या ग्लास बॉटल्स, सिंगल यूज स्ट्रॉस को अवॉइड करना, ये सब बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। गवर्नमेंट और कंपनीज को भी अपना रोल प्ले करना होगा। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, बैन्स ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स और रीसाइक्लिंग प्रोग्राम को प्रमोट करना जरूरी है। असल चेंज तब आएगा जब हम और आप अपने अपने हैबिट्स बदलेंगे। तो अहद कीजिए कि अपने प्लैनेट को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए। यहाँ लेंगे हम पहला ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आज ग्रीन फ्लैश में हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं। सो स्टे विद अस, हम आते हैं थोड़ी ही देर में आपके शो सस्टेन द फ्यूचर के साथ। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर और अब टाइम है हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का, जहां हम आपको दुनिया भर की सस्टेनेबिलिटी न्यूज से अपडेट करते हैं। Here are this week's top 3 stories, जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर आती है इंडोनेशिया से। 2025 में इंडोनेशिया ने अपने रिवर्स और कोस्टल एरियाज से 1 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है। ये स्टेप लोकल कम्युनिटीज और वॉलंटियर्स की कोलैबोरेशन का नतीजा है और इसी तरह हम कम्युनिटी ड्राइव एंड क्लीन अप एफर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी खबर है यूरोप से। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक नया लॉ पास किया है, तो 2030 तक सारे प्लास्टिक पैकेजिंग को रिसाइकलेबल या कंपोस्टेबल बनाने का टारगेट रखता है। ये इनिशिएटिव सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेज आउट करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरी और आखिरी खबर है केन्या से, जहां एक एनजीओ ने प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके अफोर्डेबल हाउसेस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट केन्या में लो इनकम फैमिलीज के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक यूनिक और इनोवेटिव अप्रोच है प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल करने की। ये थी हमारी ग्रीन फ्लैश अपडेट। आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी हमें जरूर बताइएगा और इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया @FM107 कतर पे या फिर हमें व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक दे सकते हैं 666-22-107। तो जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM107 दिल से देसी।
0: अब हम बात करते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग इनोवेशन के बारे में, प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट ने प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स डेवलप किए हैं जो पैड प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट और इको फ्रेंडली है। इमेजिन अ फ्यूचर वेयर प्लास्टिक वेस्ट को इंस्टेंटली रिसाइकलिंग किया जा सके। चलिए अब टाइम है हमारी इको लिविंग टिप्स का, जहां हम आपको सिंपल और इफेक्टिव आइडियाज देते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: हर बार शॉपिंग पर जाते वक्त अपना रीयूजेबल क्लोथ बैग साथ ले जाएं। प्लास्टिक बैग्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स। स्ट्रॉज और डिस्पोजेबल कटलरी को अवॉइड करें। अपनी किचन में रीयूजेबल कटलरी रख कर ये हैबिट अपनी लाइफ में शामिल करें। मुख्तलिफ कंट्रीज में कई लोकल रीसाइक्लिंग प्रोग्राम्स हैं। अपने एरिया के रीसाइक्लिंग बिन्स और प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें। अपनी डेली ग्रोसरीज को प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में खरीदें। ग्लास या पेपर प्रोडक्ट्स का यूज करें।
1: Voices of the planet.
2: What can the average person do to reduce the use of plastic bags?
3: Well, I think, you know, every time I go into a grocery store and they're about to stick my purchases into that plastic bag, I say, no, I have my own bag, and they put it in my bag. And I always say, you know, this is saving one bag of plastic from getting out and polluting the environment.
2: Thank you.
0: Listeners, हमारे टेक अवे चैलेंज का वक्त आ गया है।
1: वीकली चैलेंज।
0: इस हफ्ते का चैलेंज है गो प्लास्टिक फ्री फॉर अ वीक। इस वीक ट्राई करें कि आप प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स या स्ट्रॉस को अवॉइड करेंगे। इसके बदले रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स का यूज करेंगे। अगले हफ्ते हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, द क्लॉक इज टिकिंग। Stay tuned and keep making a difference for the future. Thank you for listening to Sustain the Future. Main hoon Mavish, signing off with Green Vibes. Khuda Hafiz, phir milenge.
1: Sustain the Future.
4: Aapne suna hume on air. Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se Desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
6: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi. Dil Se Desi.
7: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
8: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: dance music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी

दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाए

0: के मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदाम कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: न्यूज एट 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दोहा कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फरकान शाही से समात कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने डेनमार्क के फरमारवा शाह फ्रेडरिक दहम को उनके मुल्क के कौमी दिन की मुनासबत से तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम आल सानी ने डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिकसन को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर तहनीत नामा इरसाल किया है। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम आल सानी से लुबनान के सदर जोज़फ़ ऑन ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। और माहौलियाती आलमी दिन के मौके पर वज़ीर माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सबई ने कहा है कि कतर साइंसी निगरानी और पेशगी मनसूबाबंदी पर मबनी एक मजबूत माहौलियाती हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ये थी अब तक के अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। क्या है हाल चाल, ये शो रिव्यू ऑफ द वीक। वेल, रिव्यू ऑफ द वीक है क्या, ये है मूवी का रिव्यू। सो ऐसी मूवीज जो उर्दू में रिलीज हो रही हैं, अगर उर्दू में नहीं तो इंग्लिश में है ना, और हिंदी में रिलीज हो रही हैं, नई मूवीज आ रही हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया के किसी और कोने साउथ की हो, या फिर मूवीज हो नेपाल बांग्लादेश के, इन सब मूवी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। वैसे सिर्फ एक मूवी के बारे में हम बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं कि इस हफ्ते की मूवी कौन सी है। उम्मीद है कि ये महीना आपका बेहतरीन गुजर रहा होगा, आज जुमा का पहला दिन। और चलिए कल या आज शाम को क्या प्लान करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मूवी देखा जाए, बहुत दिन से मूवी नहीं देखा, क्योंकि ये ना ट्रिगर करती है चीजें कि बहुत दिन से कोई ऐसा सिनेमा नहीं देखा जो देखकर दिल जिसको देखकर खुश हो जाए, है ना। तो ये है आज का सिनेमा, ये है एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ज़ॉम्बी।
5: तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है?
6: ज़ॉम्बीज।
4: तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में बात करना कि पहले जब आप देखेंगे इस मूवी को तो कैसा फील होगा, फिर उसके बाद कितने स्टार इसको मिले हैं। हम फिर फन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन को लेकर किस तरह का फैक्ट रहा है इस मूवी का, और उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर का विजन कि इस मूवी को बनाने के लिए कोई तो मुद्दा होगा, कोई विजन होगा, वो विजन क्या है, और फिर इस मूवी की लोकेशन क्या रही है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर किसी भी मूवी को बनाने के लिए एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक्टर जो है वो एक्शन वाला हो, और अगर एक्शन वाला हीरो डरे नहीं और एक्शन ही दिखाने लग जाए हॉरर मूवी में, अरे यार ये क्या कर रहा है, फिर यही दिमाग से और जबान से बात निकलती है। उसके अलावा किसी भी मूवी को बेहतरीन एंगल से दिखाने के लिए, और खास तौर पे जब हॉरर मूवी के बारे में बात हो, तो सिनेमाटोग्राफी और साउंड होना चाहिए लाजवाब। एंड देन एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट का जो पूरा हिसाब किताब है वो तो हम बात करेंगे कि एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है इस मूवी का जिसका नाम है ज़ॉम्बीड, और फिर पूरे परफॉर्मेंस पे भी हम डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स के नज़र से भी देखेंगे कि इस मूवी में क्या बुरा रहा और डायरेक्टर को क्या बेहतर करना चाहिए था ताकि अगली हॉरर फिल्म हमें अच्छी मिले, या फिर ये अच्छी है और ख़राब ना करें अगली फिल्म। तो ये सारी बातें और फाइनल वर्डिक्ट इस मूवी को देखने के बाद क्या है, फाइनल फैसला हमारा क्या है, इस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में बात करना।
7: कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वायरस आउटब्रेक है जो कि कोविड की तरह फैल सकता है, जिसमें इंसान एक दूसरे को काटते हैं जिससे ये मजीद फैलता है।
5: कुछ नहीं होगा मुझे, I'll be back।
4: दोस्तों ये मूवी ज़ॉम्बी पर बेस है, जैसे कि अब तक तो आपको नाम से पता चल गया होगा। शुरुआत में जब ये फिल्म शुरू होती है तो बहुत ग्रिपिंग सी लगती है, पहला हाफ ऐसा लगता है कि हॉरर एलिमेंट बिल्कुल सही है, और आखिर तक जब ये मूवी जाएगी तो मजा आ जाएगा। बहुत दिनों बाद एक ऐसी मूवी बनी है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कहानी में बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं। कुछ सीन्स इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि आपको बोरिंग लगने लगेगा, आपका दिल करेगा चलो भैया चलो नींद आ रही है, ये भी ऐसा आपको फील हो सकता है। हालांकि अगर आपको ऐसी वाली मूवी देखनी है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स बैठो, थोड़ा थोड़ा बीच में डर

लेंगे, बच्चे हैं साथ में, उनको हॉरर देखने का शौक है जिनकी उम्र 12-13 हो गई है, आई थिंक ये मूवी आप देख सकते हैं। जोम्बी ये एक्शन पसंद मूवी लवर्स के लिए है, तो आप इसे थोड़ा तो एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ओवरऑल आप बिल्कुल ऐसा देखने के लिए कंजूरिंग जैसी मूवी देखने को मिल जाए, है ना, एकदम ही डरावनी मूवी देखने को मिल जाए, तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी से ज्यादा और कुछ नहीं। तो शुरुआत में ही मैंने आपको ये बात तो बता दी। अच्छा, इसकी हाइप और रियलिटी पर भी बात कर लेते हैं। इस मूवी का जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पर किया गया था। ट्रेलर्स देखकर लगता है कि ये ज़ॉम्बी जॉनर में कुछ नया लेकर आएगी। ट्रेलर में तो आप मतलब इसको देख लेंगे तो आपको ऐसा लगने लगे, अच्छा छोटी स्क्रीन में भी देखेंगे जैसे मोबाइल में, तब भी लगेगा कि अरे गजब यार, क्योंकि छोटी और बड़ी स्क्रीन में बड़ा फर्क हो जाता है। जब आप बड़े स्क्रीन में जाकर देखते हैं मूवी को तो आपको लगता है कि यार ट्रेलर ना ये सिर्फ पहला कदम था ये बताने के लिए कि मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन पहले कदम के अलावा बाकी जो कदम रहे हैं वो बड़े लड़खड़ाते से रहे इस मूवी के। रियलिटी लेकिन इसकी थोड़ी अलग है। फिल्म का पहला हाफ तो अच्छा है और पेसिंग बनी रहती है, सेकंड हाफ में आते आते कहानी थोड़ी भटक जाती है, इधर उधर निकल जाती है, ऐसा लगता है कहीं कहीं ज़बरदस्ती यू नो 2.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे बनाने की कोशिश है, और फिर क्लाइमैक्स बहुत जल्दी में ख़त्म हो जाता है। क्लाइमैक्स ही तो इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी मूवी के बारे में बात हो, चाहे वो एक्शन मूवी हो, रोमांटिक मूवी हो, क्लाइमैक्स लंबा चलता है तो दिल खुश हो जाता है। और आजकल ना लंबे क्लाइमैक्स चल भी रहे हैं। आप जितनी भी हिट मूवी है वो आप देख लें, मतलब 20 मिनट 15 मिनट का क्लाइमैक्स है ही नहीं, आधे आधे घंटे का एक एक घंटे का क्लाइमैक्स है, और ये लगातार चलता रहता है। आप पुष्पा के बारे में बात कर लीजिए, बहुत लंबा क्लाइमैक्स। अभी धुरंधर ये मूवी आई है, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज, इसमें कितना लंबा क्लाइमैक्स था, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये बहुत लंबा। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि मूवी खत्म हो जाती है और फिर थैंक्स, स्पेशल थैंक्स, डायरेक्टेड बाय दिस, और आखिर में फिर थोड़ा बहुत चल रहा होता है ना। तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि क्लाइमैक्स जल्दी खत्म ना हो, क्लाइमैक्स बना रहे, और ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से क्लाइमैक्स को शूट कर पा रहा है और कितना अच्छा विजन अपना दे पा रहा है। अब क्लाइमैक्स जल्दी खत्म हो जाए तो फिर वो मजा रह नहीं जाता, और अगर क्लाइमैक्स जल्दी खत्म हो रहा तो ये भी समझिए कि अभी जो डायरेक्टर है वो नौधा है। अगर आपको नौधा का मतलब नहीं पता, वो ये कि नया है ना, लेकिन हम बिल्कुल साथ है डायरेक्टर के। डायरेक्टर साहब आप लगे रहे, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और सेकंड हाफ में जैसे कि बताया कि आते आते कहानी भटक जाती है और क्लाइमैक्स बहुत ही जल्दी में खत्म हो जाता है। VFX और मेकअप थोड़े सस्ते से लगते हैं यार। अब आप जब डायरेक्ट कर रहे हैं, आप हॉरर मूवी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका बजट हाई हमेशा रखें VFX के लिए, मेकअप के लिए, और फिर आपको असिस्टेंट बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे जब आप मेकअप वगैरह के लिए या हॉरर मूवी के लिए अपने जो प्रोस्थेटिक्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल पड़ता है मेकअप में, उन सब चीज़ों के लिए बजट आपका बड़ा होना चाहिए। हॉरर मूवी का जो मज़ा है वो ख़राब कर देता है अगर VFX और मेकअप हल्का हो तो। हाइप के मुताबिक फिल्म जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त, ग्रैंड लेवल पे प्रमोशन, लेकिन फिर इस हाइप में अगर फिल्म हल्का कर जाए तो मज़ा नहीं है। ओवरऑल अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे 5 में से 2.5 स्टार में देना चाहूँगा। 1 स्टार इसलिए कि बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक किसी हॉरर फिल्म का एटलीस्ट कोर होता है, लेकिन ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक रहा है भले फिल्म कैसी रही हो। उसके अलावा 1 स्टार एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, जिन्होंने ख़राब स्क्रिप्ट में भी अच्छी एक्टिंग करके दी है। तो डायरेक्टर आगे कहाँ जाएगा, आई डोंट नो। हाँ, ये जो एक्टर्स हैं ये आगे बढ़ सकते हैं। 0.5 स्टार पहले हाफ का सस्पेंस के लिए, जैसे कि पहले हाफ में आपको बताया कि इतनी अच्छी मूवी थी कि आपको पकड़ के रखती है, सेकंड हाफ में थोड़ी ही हल्की हो जाती है। अगर आपके पास वीकेंड पर कोई और काम नहीं है, आप दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, एक बार कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए, वरना आप इस मूवी को स्किप भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फन फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन। दोस्तों ज़ॉम्बी का एक्स्ट्राज बूट कैंप, इस पर बात करते हैं जरा। प्रोड्यूसर ने हायर किया है प्रोफेशनल डांसर्स को और उनको ट्रेन किया है, एक्स्ट्रा ट्रेन किया है। दे लर्न्ड स्पेसिफिक जर्की बॉडी मूवमेंट्स फॉर द परफेक्ट अनडेड वॉक। क्या मतलब है कि अब देखिए, अब आजकल आप देख रहे होंगे कि जो डांसर्स होते हैं वो ब्रेक डांस करते हैं। अब यही ब्रेक डांसर जो है, इनको अगर हम लेकर आ जाए मूवी में और ये डेड वॉक कर दें तो मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। लेकिन जो फैक्ट है इस मूवी में ये है कि जो डेड वॉक कर रहे हैं इस मूवी में एज अ ज़ॉम्बी बनके, वो एक्चुअली प्रोफेशनल डांसर्स हैं। मूवी देखिएगा तो इनको देखिएगा कि ये पूरा एकदम स्टेप सही कर रहे हैं।
आपके दिमाग में ये बात

0: तो चढ़ेगी। उसके अलावा फेक ब्लड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। प्रोडक्शन टीम ने 10,000 लीटर ऑफ कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया, 10,000 लीटर का कॉर्न सिरप, ताकि हाई ऑक्टेन क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए फेक ब्लड को दिखाया जा सके। प्रोडक्शन ने इस पर बहुत मेहनत करी है और लाजवाब इस सीन को आप जब देखेंगे ना, इन सारे सीन को मिलाकर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार खून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा लीटर जो है कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया है, दिस इज एक्चुअली क्रेजी। नाउ अबाउट क्राउड और लीक्स के बारे में, हर मूवी का जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि किसी भी तरह से जब मूवी शूट हो रही हो या फिर मूवी के स्टार्स हो, परफॉर्मर्स हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, उन सबको ऐसे बांध के रखना कि कहीं से भी स्क्रिप्ट लीक ना हो, मूवी के जो शूट है या जो सीन है वो लीक ना हो, मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो लीक ना हो, मूवी की जो असल स्टोरी है वो लीक ना हो। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बचाया जाता है और इसीलिए मैसिव क्राउड को, बड़े क्राउड को या लीक ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए समर पिकनिक का टाइटल जो है वो इस्तेमाल किया गया था। जब ये मूवी यानी कि ज़ॉम्बी बन रही थी तो प्रोजेक्ट का जब शूट चल रहा था तो जो टाइटल था वो था समर पिकनिक। बस अब लोग समझ भी नहीं पाए कि मूवी की शूटिंग हो रही, क्या हो रही है, जब इस चीज़ समर पिकनिक को ज़्यादातर फैलाया गया एज अ फेक टाइटल, तो क्राउड नहीं आया और लीक्स भी नहीं हुए। नाउ अबाउट द लोकल मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म एम्प्लॉयड एक्चुअली 50 लोकल प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हु वर्क इन कंटिन्यूस 12-hour शिफ्ट डेली। तो जो लोकल आर्टिस्ट थे, अभी जब आपको कुछ देर में पता चलेगा कि ये मूवी कहाँ कहाँ शूट हुई है, फिल्म की लोकेशन जो है, तो अलग अलग लोकेशन पे जब ये शूट हुई तो वहाँ के लोकल जो मेकअप के आर्टिस्ट थे उनको बुलाया गया और 50 लोकल प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 12 घंटे लगातार काम किया और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है इस मूवी के डायरेक्टर ने। उसके अलावा ब्रेन प्रॉप्स, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ऐसे सीन है जिसमें ब्रेन दिख रहा है, तो ब्रेन खाने वाला एक सीन है स्क्रीन पर, जब वो बड़ा सा आएगा तो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा ये क्या है, लेकिन वो मीठा रेसबेरी ग्लेटिन है, केक फॉन्डेंट है जिसे एक्चुअली में खाया जाता है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि ये ब्रेन है, दिमाग है। तो दीज ऑल ऑफ थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इन जगहों पर तो मेहनत किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टर के विजन की तो क्या कुछ है, उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें एक मूवी ज़ॉम्बी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते, जो कि बहुत अच्छी फिल्म तो नहीं है लेकिन 5 में से 2.5 स्टार मिला है ओवरऑल, आप जा सकते हैं, 1-time watch मूवी है। शुरुआत में ये फिल्म बहुत ग्रिपिंग लगती है, हॉरर एलिमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। अभी अगर आपने सुना तो हमने फैक्ट्स के बारे में बात करा अबाउट द प्रोडक्शन इस मूवी के, और अब हम जरा बात करते हैं डायरेक्टर के विजन के बारे में कि डायरेक्टर का विजन इस मूवी को बनाते हुए क्या रहा। डायरेक्टर का मेन एम इस कन्वेंशनल ज़ॉम्बी जॉनर को एक नया साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देना था। वो सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं दिखाना चाहता था बल्कि इंसानी फितरत यानी कि ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते थे जब एपोकलिप्स आता है। तो उनका विजन था कि असल डर ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि उन हालात में इंसान जो एक दूसरे के साथ करते हैं उससे पैदा हो। डायरेक्टर ने फिल्म के एटमॉस्फेयर को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और टेंस रखने की कोशिश की है ताकि ऑडियंस हर वक्त डर को महसूस कर सके, ऐसा लगे कि डर या कहे वो जो ज़ॉम्बीज हैं उनके अगल बगल है, जो ऑडियंस है उनके अगल बगल है, ऐसा फील हो सके। इस फिल्म में उन्होंने इमोशनल डेप्थ डालने की कोशिश की है जहां एक बाप और बेटी की कहानी सेंट्रल थीम है। वो दिखाना चाहते हैं यानी कि ये डायरेक्टर दिखाना चाहते थे कि एक्सट्रीम सिचुएशन में भी उम्मीद कैसे जिंदा रहती है। हालांकि स्क्रिप्ट की कमजोरियों की वजह से उनका ये ग्रैंड विजन स्क्रीन पर पूरी तरह उतर नहीं पाया, कहानी का जो पेसिंग इशू है उनके डायरेक्शन पर थोड़ा भारी पड़ गया, फिर भी उनका वर्ड बिल्डिंग का तरीका और डायरेक्शन बहुत ही तारीफ के काबिल है।
1: इट्स अ नेशनल डिजास्टर, वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है,
0: उन्होंने जेनेरिक हॉलीवुड ज़ॉम्बी टेम्पलेट्स को कॉपी करने के बजाय एक देसी और लोकलाइज्ड टच देने का बड़ा रिस्क लिया जो काफी हद तक यूनिक।

0: भी था। देखिए आसान नहीं होता, अगर किसी को कमर्शियल फिल्म बनानी हो तो वो बॉलीवुड के पुराने फिल्मों से कुछ सीन उठाए, फिर अपना कुछ साउंड तेज डाल दे, और उसके बाद कुछ अच्छा मेकअप करने वाले बंदे को उठा ले, वो मेकअप कर दे, और दो चार स्क्रिप्ट लिखने वाले उनसे करवा दे। लेकिन इस तरह की राइटिंग जिस तरह का इस डायरेक्टर ने सोचा और फिर उसको पर्दे पे लाना, मेहनत करना, कहीं ना कहीं फेल होता है इंसान लेकिन इसे सीखता है। तो ओवरऑल ये फिल्म मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी है, बट 2.5 स्टार रेटिंग जो है 5 में से वो भी खराब बिल्कुल से नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में, फिर उसके बाद अगर आप साउथ की तरफ रहते हैं तो जानते होंगे इस दुनिया में अगर आपने मेट्रो कभी इस्तेमाल करी होगी तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। सबसे पहले ये फिल्म वहां शूट हुई है जहां जाने से पूरी दुनिया जो है वो डरती है, वहां पर कुछ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही फेमस जगह है भांगड़ फोर्ट, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, लेकिन असल में यहाँ पर कुछ भी नहीं। कई लोगों ने रात रात भर यहाँ पर सोए हैं, यहाँ पर टहले हैं, घूमे हैं, लेकिन दिन में तो ये एक्चुअली एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट जाते हैं भाई यहाँ पे भांगड़ फोर्ट। सो क्रू ने इस जगह पे भी 9 सीक्वेंस शूट किए हैं, और ये एक अबेंडेंट हिस्टोरिकल साइट है, और लोग कहते हैं यहाँ पर एक अलग सी वाइब है, एकदम बिल्कुल यू नो डरावनी टाइप की वाइब है, इस वजह से यहाँ पर भी ये मूवी जो है वो शूट की गई है। वेल इसका रीज़न भी है, ऑब्वियसली रीज़न ये है कि क्योंकि लोकली भांगड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर डरावनी चीज़ें होती हैं ऐसा लोगों का मानना है, बट असल में ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बस रात में जाने से लोग डरते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा कुछ फील किया होगा, उनको लगता है नेगेटिव वाइब है, ऐसा है वैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो स्पेशल परमिशन ली तो रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जब पूरी सड़क खाली होती थी तब यहाँ पर शूटिंग की जाती थी, बिल्कुल खाली जगह पर। बड़ा मजेदार हुआ करता था ये, ऐसा डायरेक्टर ने बताया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी को लेकर कैसी रही। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का वीकेंड का दिन, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, नहीं हुई कोई प्लानिंग कोई बात नहीं भाई, आप सुन रहे हैं रिव्यू ऑफ द वीक। एक फिल्म का मैं रिव्यू दे रहा हूँ इस वक्त जिसका नाम है ज़ॉम्बी। इंटरेस्टिंग मूवी है, 5 में से 2.5 स्टार मिल गई, पहला हाफ अच्छा है, दूसरा हाफ इतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो इस मूवी को देख सकते हैं। ओवरऑल कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जो बता रहा हूँ या फिर जो क्रिटिक्स बता रहे हैं वो अपने नजरिए से फिल्म देख रहे हैं, और दूसरे लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगती है।
3: वो आवाज की तरफ आते हैं।
4: मरवा दिया आपने।
5: I don't want to die. It's collateral damage.
4: एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। कल ही दे।
3: हम जाएंगे, हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे।
4: This is our only chance.
6: आज तेरा दिन है, जीतना है तूने,
4: और अगर हार गया तो।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसों से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जैसे अगर हम देखें तो कुछ लोगों को एक मूवी थी गुंडे, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, है ना। तो कई लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, कई क्रिटिक्स का ऐसा कहना था ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी। कमर्शियली भी उस मूवी ने बहुत कोई अच्छा काम नहीं किया, बट क्रिटिक्स का मानना था ये अच्छी है। तो अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, अगर कोई प्लानिंग नहीं है। सेकंड हाफ थोड़ा हल्का है, हाई बीस मूवी की जिस तरह से थी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई।

0: प्रोफेशनल डांसर्स को ट्रेन किया गया था 500 घंटे के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आपको बताया। डायरेक्टर का विजन भी हमने आपको बता दिया, फिर फिल्म की लोकेशन भी बता दी, भांगड़ फोर्ट, डीप फॉरेस्ट का फिल्म आया हुआ सीन, फिर उसके बाद अनयूज्ड मेट्रो टनल। अब बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेन लीड एक्टर ने दोस्तों इस रोल के लिए बहुत बड़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये तो मानना पड़ेगा कि एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्होंने लगभग 15 किलो वजन कम किया ताकि वो एक एग्जॉस्टेड और भूखे सर्वाइवर जैसे दिख सके। उनका पेल लुक यानी कि हल्का पीला पड़ा हुआ लुक और सनकेन आईज यानी कि ढकी हुई गड्ढे में गई हुई जो आंखें हैं वो नेचुरल दिखाने के लिए उन्होंने शूटिंग से पहले अपनी नींद तक सैक्रिफाइस की थी। यानी कि मैं कभी एक्टर नहीं बन पाता। हर रोज दोस्तों मेकअप चेयर पर उनको यानी कि एक्टर्स को 3 घंटे बैठना पड़ता था ताकि उनके चेहरे पर रियल स्कार्स और डर्ट इफेक्ट्स दिए जा सके। उनकी एक्टिंग में ये फिजिकल टोल साफ नजर आता है और उन्होंने कैरेक्टर की बेबसी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, जनता तक पहुंचाया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मेन विलन ज़ॉम्बी बना है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो पहचानी ही नहीं जा पाएगी। हैवी प्रोस्थेटिक लेयर्स, कस्टम सिलिकॉन स्किन, ब्लड रेड कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज किया गया है। उस एक्टर को लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता था क्योंकि प्रोस्थेटिक जॉ की वजह से कुछ चबा नहीं सकता था वो। ये ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको यू नो जबड़े पे या मुंह पे प्रोस्थेटिक्स लगा दिया गया तो आप हिला नहीं सकते, खाने के लिए चबाने के लिए आपके पास फिर मौका नहीं होता। अगर आप करेंगे तो वो क्रैक्स दिखने पड़ेंगे और फिर वो हो सकता है छूट जाए, टूट जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर आप लिक्विड पे रहें, तो वो लिक्विड पे रहें तो जो विलन है वो जब प्रोस्थेटिक जॉ पर अपने लगा लेते थे तो लिक्विड पे रहते थे। एक्टर ने अनडेड क्रिएचर की बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए कई हफ्तों तक शीशे के सामने प्रैक्टिस की। खैर एक्टर की इस मेहनत पर स्क्रिप्ट ने थोड़ा पानी जरूर फेर दिया पर उनका डेडिकेशन जबरदस्त था, कमाल का था। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। दोस्तों फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन ही इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। इसका नंबर मैं कहता हूं अगर इस पे स्टार होता तो 5 में से 5 स्टार देने पर मैं तो मजबूर हो जाता। और यही सिनेमाटोग्राफी और साउंड ही है कि इस मूवी को पूरी तरह डूबने से इन दोनों ने यानी कि सिनेमाटोग्राफी और साउंड ने बचाया है। कैमरा वर्क बहुत ही रॉ और ग्रिटी है। डीओपी ने यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने हैंडल्ड कैमरा शॉट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब भी जोम्बीज अटैक करते हैं कैमरा इतना शेक होता है कि ऑडियंस को लगता है कि वो खुद उस भाग दौड़ का हिस्सा है, उस कैओस का हिस्सा है, ऐसा उनको एहसास होता है। डिम लाइटिंग, शेडोज, नियॉन कलर प्लेट्स, पैटर्स ने फिल्म को एक बहुत ही यूनिक और एपोकैलिप्टिक लुक दिया है। रात के सीन्स में डार्क टोन का यूज डर का माहौल डबल कर देता है। साउंड डिजाइन की बात करें तो वो बेहद लाजवाब है। साइलेंस का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली किया गया। किसी भी मूवी को डरावनी बनाना हो अगर तो डर से ज्यादा साइलेंस का सही इस्तेमाल, ठहराव का सही इस्तेमाल सही पॉइंट पे कर लिया, उसके बाद शोर आया, साउंड आया तो लाजवाब हो जाएगा। और फिर सिनेमा सही जगह पे साउंड को लेकर अगर आ गया तो फिर फिल्म जबरदस्त हो जाती है। और मुझे लगता है यही बात है जो फिल्म के फर्स्ट हाफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है या ओवरऑल इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि ये 2.5 स्टार लेकर तो जाती है एटलीस्ट। फिर जब सीन बिल्कुल खामोश होता है या फिर सडन किसी जॉम्बी के गुर्राने की आवाज आती है तो जंप स्केयर परफेक्ट बैठता है। 3D ऑडियो डिजाइन की वजह से लेफ्ट और राइट से आने वाली आहट बिल्कुल रियल लगती है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के नॉर्मल सीन्स में भी टेंशन बिल्ड करने का बिल्कुल सटीक काम किया है। अगर ये साउंड डिजाइन और बेहतरीन कैमरा एंगल्स ना होते तो फिल्म का पहला हाफ भी इतना एंगेजिंग नहीं होता जितना मैं बता रहा हूँ। टेक टीम ने सच में अपना 100% काम किया है। अब जरा फ्री या स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये छोटा सा है। ये फिल्म किस पर बेस्ड है, कैसे चलती है, आगे कैसे बढ़ती है, इस पर जरा नजर डालते हैं। दोस्तों स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक पीसफुल और नॉर्मल सिटी से। हर डरावनी स्टोरी यहीं से क्यों शुरू होती है भाई, जहां अचानक एक अननोन बायोलॉजिकल वायरस जो है वो फैल जाता है। ये वायरस नॉर्मल जिंदा इंसानों को वायलेंट और खतरनाक फ्लैश ईटिंग क्रिएचर्स यानी ज़ॉम्बीज में बदल देता है। कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक मौत के कुएं में बदल जाता है और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। कहानी का जो मेन फोकस है एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बाप है जो अपनी छोटी बेटी को इस तबाही से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो शहर के एक सेफ जोन की तरफ भागने का फैसला करता है जहां मिलिट्री ने सर्वाइवल्स के लिए कैंप लगाया है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ और सर्वाइवर से होती है जिसमें एक एक्स आर्मी का सोल्जर और एक रेबेलियस मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है। वेल, इतनी बात आपने सुनी आपको नहीं लग रहा ये हॉलीवुड टाइप है लेकिन ये है ऐसी जरूर जहां आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। उसके अलावा ये स्टोरी आगे बढ़ती है, इन सभी लोगों को मिलकर इस एपोकलिप्स से लड़ना पड़ता है। सफर के दौरान उन्हें ना सिर्फ उन भूखे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है बल्कि उन हालात में इंसानों की बदलती फितरत और सेल्फिशनेस से भी लड़ना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही भी है, जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं तो हमारी देखने की, समझने की, बात करने की जो कला है वो भी एक्चुअली दोस्तों धीरे धीरे चेंज होने लगती है, उसमें फर्क साफ नजर आता है। फिर धीरे से ये आगे मूवी बढ़ती है और हर मोड़ पर मौत खड़ी मिलती है। रिसोर्सेज बहुत कम है खाने पीने के, है ना, आप कार आपके पास बहुत लिमिटेड है, आपके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी है जो तय करनी है, तो फिर क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ग्रुप जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, फिर सवाल उठता है कि क्या ये छोटा सा ग्रुप सभी खतरों को पार करके सेफ जोन तक पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर रास्ते में ही इस डर का शिकार हो जाएगा। ये सब सवाल है, ये जानने के लिए आपको फिल्म एक्चुअली देखनी पड़ेगी क्योंकि क्लाइमेक्स में एक बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं एक तरह से कि पूरी ओवरऑल टीम ने या ओवरऑल एक्टर्स ने क्या कुछ किया। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस ही इसकी सबसे बड़ी बचत है। मेन लीड एक्टर ने एक मजबूर और प्रोटेक्टिव बाप का रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए डर और उसे बचाने का डिटर्मिनेशन साफ नजर आता है। उन्होंने बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऑडियंस को इमोशनल कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्राउंडिंग देती है। छोटी बच्ची का रोल करने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस ने भी कमाल का काम किया। डर के सीन्स में उनकी नेचुरल एक्टिंग सच में दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है कि ये छोटी लड़की कैसे काम कर सकती है। सपोर्टिंग कास्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक्स आर्मी ऑफिसर के रोल में एक्टर्स ने भी बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस और टफ डायलॉग्स फिल्म में एक नया जोश लेकर आता है। मेडिकल स्टूडेंट का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने भी अपने किरदार को बेहद ही हौसले और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। उसके अलावा जो विलन ज़ॉम्बी है वो एक्टर की फिजिकल एक्टिंग भी बड़ी लाजवाब है और बॉडी मूवमेंट भी जबरदस्त है। स्क्रीन पर आते ही डर का माहौल बना देती हैं जब ये विलन आते हैं। तो एक्टर्स ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस से जान फूंकने की कोशिश की है। लेकिन एक अच्छी फिल्म सिर्फ बेहतरीन विजुअल्स या साउंड से नहीं बनती बल्कि उसकी आत्मा होती है स्टोरी लाइन। यहीं पर ज़ॉम्बीज सबसे ज्यादा मार खा जाती है। सेकंड हाफ में फिल्म का पेसिंग इतना खराब हो जाता है कि आप क्लाइमेक्स का इंतजार करने लगते हैं। सोचिए, पहला जबरदस्त, दूसरे में इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म खत्म हो। उसके अलावा डर और सस्पेंस पहले हाफ में बिल्ड किया गया था, धीरे धीरे बोरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी में बदल जाता है वीएफएक्स के सस्ते इफेक्ट्स और जल्दबाजी में खत्म किया गया क्लाइमेक्स ऑडियंस को डिसअपॉइंट करता है। डायरेक्टर का विजन बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बिखरा हुआ है। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप ज़ॉम्बी मूवी के हार्डकोर फैन हैं और आपने हॉलीवुड या कोरियन ज़ॉम्बी सिनेमा देख रखा है तो ये फिल्म आपको बहुत पुरानी या सस्ती लगेगी, आप इस मूवी को बिल्कुल स्किप कर दें। लेकिन अगर आप बिना किसी हाई एक्सपेक्टेशन के सिर्फ वीकेंड पर दोस्तों के साथ एक माइंडलेस टाइम पास मूवी देखना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर देगी, पहला हाफ तो कर ही देगी। ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप एक बार देखकर भूल जाएंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे या वक्त जाया करना किसी भी तरह से जरूरी तो नहीं है। इट इज स्ट्रिक्टली एन एवरेज वन टाइम वॉच मूवी। तो दोस्तों ये थी मूवी आज की जिसके बारे में हमने बात करी कि इस मूवी का हाइप और बहुत ज्यादा था लेकिन रियलिटी में ये मूवी उतनी खरी नहीं उतरी। इस मूवी को मिला है 5 में से 2.5 स्टार। शुरुआती हाफ ये बहुत ही तगड़ा था, मजेदार था, लाजवाब था, लेकिन उसके बाद फिर ये सेकेंड हाफ में हल्की पड़ जाती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी रिव्यू ऑफ द शो के एपिसोड में जहां पर हम एक नई मूवी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मूवी ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको देखने जाना चाहिए या फिर नहीं। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: सलाम आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नाज़िया एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू शो जो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। और आज के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है और ये मॉडल है प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर। दोस्तों, ये वो बिजनेसेस होते हैं जो प्रोडक्ट्स बेचने की बजाय अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज और कंसल्टेंसी के जरिए कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। इस टाइप के बिजनेस का काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करना, चाहे वो ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, बिजनेस स्टेप या स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी। ये कंपनीज क्लाइंट के चैलेंजेस को समझकर कस्टमाइज सॉल्यूशंस देते हैं जिससे उनका बिजनेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, कंप्लाइंट और सक्सेसफुल बन सकता है। कतर जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में प्रोफेशनल सर्विसेज का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेसेस ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रेगुलेटरी कंप्लाइंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही ये नए इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये कतर के नेशनल विजन 2030 के गोल्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो बस इसी तरह के बिजनेस मॉडल पर बात होगी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कंपनी के ओनर हिमसेल्फ मिस्टर शाहनवाज बावा और कंपनी है SPN पार्टनर्स। वेल, देखा जाए तो ये कतर बेस्ड एक लीडिंग फर्म है जो ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस सेटअप और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जैसी वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वेल, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फोकस है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ हर क्लाइंट को स्पेशलाइज्ड अटेंशन दी जाती है। कंपनी हाई प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी और क्वालिटी सर्विस के लिए जानी भी जाती है। इनकी टीम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है जो लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का तजुर्बा रखते हैं। ये फर्म सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है बल्कि क्लाइंट्स के बिजनेस ग्रोथ का एक ट्रस्टेड पार्टनर बन चुके हैं। आज हमारे साथ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर यानी इस तरह के बिजनेस मॉडल पर बात करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ओनर हिमसेल्फ मौजूद हैं मिस्टर शाहनवाज बावा, जो कि फर्म के ड्राइविंग फोर्स हैं। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के तौर पर आपने ऑडिटिंग, फाइनेंस और बिजनेस एडवाइजरी की फील्ड में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज डेवलप की है। आपकी लीडरशिप में SPN पार्टनर्स ने अपनी पहचान एक ट्रस्टेड

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफ एम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
1: भाई अस्सलाम वालेकुम मुंडियों और कुड़ियों, क्या हाल है? मैं क्या जी, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू द लिस्ट जिसका इंतजार मुझे था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था टॉप 10 की लिस्ट बनाने का, कहने का। इसमें बड़ा मजा आता है, बिकॉज ये लिस्ट जो होती है ये जब तैयार होती है तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक लैब में बैठ के रिसर्चर रहे और रिसर्चर्स सारे के सारे मिल बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन सा गाना किधर रखें। और वेरी डिफिकल्ट लिस्ट, और जितनी डिफिकल्ट उतना ही मजा आता है। तो इस हफ्ते बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, पिछले महीने हुए हैं, मगर अभी तक जो टिके हुए हैं, जो लिस्ट में आ पाए हैं टॉप 10 की ऑन एफएम 107, उनके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो एनएफएम 107 पर। ये जो सहूलत ही बड़ी अच्छी कि आप हमें बताइए कौन सा गाना लिस्ट में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट्स अप टू यू। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका गाना लिस्ट में आए। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा ये गाना भी तो है। तो जितने हमें दिखे, जितने हमने देखे या फिर हमने उनको एनालाइज किया या उनकी लिस्ट देखी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, नंबर ऑफ व्यूज एंड एवरीथिंग अक्यूमुलेटेड टुगेदर, उसके बाद ये लिस्ट बनी। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जहां पर हम देखते हैं कि गाने को तो बहुत ज्यादा व्यूज आए हुए हैं, बट वो गाना वैसा नहीं है जो चलाया जा सके। बट समटाइम्स व्यूज आर लेस, बट देन गाने की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो आज की लिस्ट शुरू करने से पहले, अगेन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज जुड़िएगा। एंड लिस्ट शुरू करेंगे फ्रॉम 10 एंड देन विल गो अप टू द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक, ठीक है? सो गाना नंबर 10 है रूप दी रानी। पति पत्नी और वो दो से मूवी मैंने देखी नहीं है, पर इसमें आयुष्मान खुराना, वामिका, सारा, रकुल प्रीत और गुरु रंधावा ने गा दिया है, तनिष बागची का संगीत है, ही राजेश साथ में। देखो पिक्चर के बारे में भी अच्छे रिव्यूज हैं, बट गाना इज अमेजिंग, इट श्योरली डिजर्व्स द लिस्ट। 10 पे तो ये आ ही सकता है। रूप दी रानी ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगा, बिकॉज गाना बॉलीवुड को आदत हो चुकी है कि रिंस एंड रिपीट करते चले जाएं। तो रूप दी रानी इज एट नंबर 10। कुछ जगहों पे आपको आई थिंक फंक्शंस में ये बजता हुआ जरूर नजर आएगा। आई एम नॉट श्योर कि आप अपनी ऑक्स केबल लगा के सुनेंगे कि नहीं, बट डेफिनेटली जब ये गाड़ियों प्ले होगा, FM 107 प्ले होगा, सो यू विल लिसन टू इट। ये गाना ऐसा है एंड इट डिजर्व्स द स्पेस। सो अ सेलिब्रेटेड ट्रैक ऑन द 10th नंबर, व्हिच इज रूप दी रानी, पति पत्नी और वो दो। पता नहीं इतने लंबे लंबे नाम क्यों लिखने लग गए बॉलीवुड वाले, थोड़ा छोटा करो भाई, टंग स्लिप हो जाती है। सो पति पत्नी और वो दो से ये गाना एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट। अब गाना नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। गाना नंबर 9, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एनीमोर। अब मैं बिल्कुल सरप्राइज होता ही नहीं हूं जब कोई अरेबिक सिंगर वो कोलैबोरेशन करता है किसी बॉलीवुड के साथ। पहले मुझे बड़ी हैरानी होती थी, अरे श्रेया घोषाल के साथ, अरे रे रे रे, ये कैसे कमाल के गाने बन रहे हैं। मगर अगेन अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती, इतने सारे कोलैबोरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साद लमजरद साहब का गाना बेजाफ, नेहा कक्कड़ के साथ गाना, एंड आई एम नॉट सरप्राइज। मुझे लगता है कि साद भाई को किसी ने बोला, भाई इधर ही है पैसा, इधर ही रहो तुम। तो साद रामचरित और नेहा कक्कड़ का ये गाना, वेरी कलरफुल ट्रैक बाय द वे, वेरी कलरफुल ट्रैक, स्पेशली जब आप वीडियो देखेंगे तो साद जो है वो एक कुर्सी बैठे हुए, इट्स लाइक अ थ्रोन एंड ही इज वेयरिंग द ब्लैक क्लोक। होगा भाई क्या लग रहा है आदमी, बॉलीवुड का रंग चढ़ रहा है इन पे धीरे धीरे वीडियो में। एक और बड़ी खास बात है, इन केस यू हैवंट सीन द वीडियो, बिकॉज मुझे बड़ा शॉक लगा था, वीडियो में शहनाज गिल, भाई साहब बॉलीवुड वाला डांस करवा दिया है साथ से। तो ये

0: ये जो कोलैबोरेशन है बड़ा कमाल का है. एक चीज है साद की, वो जो उनकी अदायगी है, जो मौसीकी है, वो अभी भी वैसी की वैसी है. देयर इज नो चेंज एट ऑल. बट ऑफ कोर्स बेजाफ गाना बड़ा जबरदस्त है. एंड अभी तो ये अवेलेबल है विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो स्क्रीन पे आते रहते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट. एंड बड़ा कमाल का गाना है. ब्यूटीफुल ट्रैक, नेहा कक्कड़, साद लमशरद, बेजाफ एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. शहनाज गिल की वजह से भी ये नंबर 10 पे नहीं, नंबर 9 पे है. एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द ट्रैक. एंड जैसे मैंने कहा, काफी कलरफुल है. कुछ ज्यादा ही कॉस्ट्यूम्स हैं इसमें जो इस्तेमाल की गई हैं, विच इज ऑल्सो अ न्यू थिंग. आजकल बॉलीवुड के गानों में उतनी कॉस्ट्यूम चेंजिंग नहीं देखने को मिलती है, बट आजकल जो सिंगल ट्रैक्स निकल के आते हैं उनमें जो सिनेमेटोग्राफी और जो डायरेक्शन हो रहा है, भाई नेक्स्ट लेवल है. एंड फॉर द वीडियो इटसेल्फ, यू शुड लिसन टू दिस ट्रैक. आई नो आप अभी ऑडियो सुनेंगे, बट इसका जाके उसके बाद आप वीडियो भी जरूर देखिएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग यूनिक टू सी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला जो गाना है एट नंबर 8, ये गाना FM 107 पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले चलाया था अपने शो में शाम में. एंड ये गाना है चांद मेरा दिल से. इसमें अनन्या पांडे हैं और लक्ष्य हैं.
1: खासियत है आपकी,
0: सचिन जिगर का संगीत है. एंड राघव है इसमें, जोनिता है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मैं लिरिक्स की सबसे पहले बात करूंगा, बहुत बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं. अमिताभ भट्टाचार्य को क्रेडिट उतना दिया नहीं जाता है, बट देना चाहिए, ही टोटली ट्रूली डिजर्व्स इट. अच्छा, ये जो मूवी है चांद मेरा दिल, मुझे पहले लगा था कि इस मूवी को सैयारा की तरह प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज आई डोंट नो, इट सीम्ड लाइक इट. ऐसा लगा जैसे सैयारा ने बोला था ना, भाई देखो पिक्चर देखते रहना, पहले गानों से मतलब रखो. सो गानों से जो मतलब रखा गया है, उसमें से गाने आए हैं सामने. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे आर चार्ट बस्टर्स, जैसे सैयारे के गाने एकदम से, वो कहता है ना देसी भाषा में, फट गए थे, आ गए थे, तो वैसे भी नहीं है, मगर काफी अच्छे वेल रिटन सॉन्ग्स हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कोई ऐसा ट्रैक नहीं जो मैं बोलूं कि अरे फिर से रीमेक कर दिया, अरे लो फिर से रिमिक्स कर दिया, वैसा नहीं है. सो ओरिजिनली रिटन, इसलिए मैंने अमिताभ भट्टाचार्य को क्रेडिट दिया. वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. सचिन जिगर को दूसरा क्रेडिट जाता है. अमेजिंगली डन. खासियत, ये गाने के लिरिक्स भाई इतने डीप लिखे हुए ना, और इतना बढ़िया लिखा हुआ है ना, स्पेशली लाइक द हुक एज वेल. तो इसका जो हुक है, इसके जो लिरिक्स हैं, काफी ज्यादा फ्रेश. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रेशनेस सुनने को मिल रही गाने में. आई एम रियली रियली रियली हैप्पी फॉर इट. तो ये जो ट्रैक है, ये आप जरूर जरूर सुनिएगा. एंड लेट मी नो बाय द वे, ऐसा कोई और ट्रैक सिमिलरली आपको स्ट्राइक जरूर करने वाला है, बिकॉज ये गाना सुन के आपको 2-3 गाने याद आ जाएंगे जो आपने रिसेंट टाइम्स में शायद सुने होंगे. सो मैं दोहरा देता हूं, गाना नंबर 10, 9 और 8. गाना नंबर 10 है रूप देरानी, पति पत्नी और वो 2 से. गाना नंबर 9 है बेजाफ, साद लमशरद और नेहा कक्कड़. नंबर 8 पे खासियत, चांद मेरा दिल, अनन्या पांडे इसमें, लक्ष्य है, सचिन जिगर का संगीत है, एंड ऑफ कोर्स राघव जोनिता गांधी ने गाया है, और अमिताभ भट्टाचार्य के कमाल के लिरिक्स हैं. विल बी बैक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे 7, 6 और 5 पे कौन से गानों ने गद्दी जमा ली है. FM 107 पर दिस इज टॉप 10, जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड.
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: बैक टू टॉप टेन. टॉप टेन की लिस्ट में गाना नंबर 10, 9, 8 हो चुके हैं. रूप दीरानी बेजाफ खासियत. अब है गाना नंबर 7, 6 और 5 दी वारी. नंबर 7 पे गाना माय गॉड ये कुछ अलग हुआ है. एक एनिमेटेड लव स्टोरी इन अ ट्रैक, क्या बात है. पहले मुझे लगता था कि हिप हॉप के जरिए, रैप के जरिए स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की जाती है, मगर दे हैव डन इट. दे हैव नहीं, बैरान हैज डन इट. सो बैरान, ये गाना है बंजारे एंड अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. बैरा, एक्चुअली बैरान भी नहीं, मैं बैरा बैरा.
1: साम साम रखी बहुत छाती के लगाई मने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मने.
0: ये लैंग्वेज जो है मैं जानता हूँ, उसके बाद भी मैंने ऐसे बोल दिया. तो आप देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, पहले सुनिएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना लेंगे. बिकॉज ये एक एक सच में एक लव स्टोरी है पूरी के पूरे गाने में. अब वेरी गुड स्टोरी टेलिंग बाय द वे. और उसके सुनने के बाद, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर लैंग्वेज अलग होने के बावजूद आपके समझ में आ जाएगी, हिंदी के उर्दू के आसपास ही है. उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे, यू विल बी ब्लोन अवे. बिकॉज इसमें जो स्टोरी टेलिंग है वो सिर्फ गाने के अंदर नहीं है, गाने से निकलकर जो एनिमेशन किया गया है वो भी काबिल तारीफ है. ओके, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नंबर 7 पे बहरा एनिमेटेड लव स्टोरी. ओके, मूविंग ऑन. गाना नंबर 6 की बारी है अब. गाना नंबर 6 पे हमने काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया था ऑफिस में बैठ के, क्या कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए. एंड देन तेरा हो जाऊं इज द ट्रैक. है जवानी तो इश्क होना है ये मूवी का नाम है. मैंने जैसे बोला ना, बॉलीवुड को लंबे लंबे नाम रखने के लिए कोई पता नहीं, कोई कह रहा है कि कोई किसी ने कह दिया है कि पिक्चर हिट हो जाएगी, आई डोंट नो. मगर है जवानी तो इश्क होना है ये मूवी का नाम है. गाने का नाम है तेरा हो जाऊं. ट्रैक में नजर आ रहे हैं वरुण धवन, पूजा हेगडे, स्टीवन बेन और जोनिता गांधी ने गाया है, और साथ में है वायु. गाना बहुत बहुत जबरदस्त है. बहुत बहुत, दो बार बहुत बहुत, तीसरा नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त है. वेरी वेल रिटन बाय द वे, वेरी वेल रिटन. मुझे ये भी लगा था, मैंने कहा वरुण धवन दिख गए, वरुण धवन प्लीज रीमेक गाना मत करना प्लीज. और नहीं है रीमेक गाना, अच्छा गाना है, ओरिजिनल गाना है, फ्रेश है. टिपिकल बॉलीवुड डांस नंबर है, समझे ना. बॉलीवुड क्या करता है, एकदम से हीरो को खड़ा कर देता है, पीछे अंग्रेज होते हैं नाच रहे होते हैं. तो ये टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल का कोरियोग्राफ्ड गाना है. बड़ा ही कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है. एक बात और मुझे लगती है कि पूजा हेगडे के करियर को रिवाइव करने के लिए उसकी पीआर टीम बहुत ज्यादा लगी हुई है. पूजा हेगडे किसी मूवी में होती है तो मूवी चल जाती है पर उन पर फोकस नहीं हो पाता है, लाइक कोई याद नहीं रख पाता है, ऑल्दो शी इज ब्यूटीफुल. लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद उनका पता चल जाए. पीआर का गेम है भाई, पीआर की टीम बढ़िया काम करेगी तो बढ़िया काम हो जाएगा. हमारा काम तो बताना है आपको गाना कौन सा है. तेरा हो जाऊं ये गाना सुनिए. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पैपीएस्ट नंबर्स दिस मंथ, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. और ये गाना है एट नंबर 6. अब गाना नंबर 5 की बारी है, तो गाना नंबर 5 भी सुन लीजिए. गाना नंबर 5, देखो जी, दूसरा पार्ट मुझे बहुत डर लगता है जब कोई पिक्चर कहती है कि अब दूसरा पार्ट आने वाला है. एंड दिस इज स्कैरी फॉर मी बिकॉज सेकंड पार्ट इज कमिंग आउट, कॉकटेल 2. गाना है जब तलक. शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका. प्रीतम दा का संगीत है, अरिजीत सिंह की आवाज है, अमिताभ भट्टाचार्य की लिरिक्स है. देखो, आई वॉन्ट टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे पिक्चर से उम्मीद ज्यादा तो नहीं है. शाहिद कपूर का थोड़ा सा सितारे थोड़े से जगमगा नहीं रहे, मगर गाने से पूरी पूरी उम्मीद है. जब तलक इज एक्चुअली अ नाइस ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. प्रीतम दा कुछ तो, प्रीतम के पास कुछ तो है भाई, प्रीतम दा कुछ तो कर लेते हैं बढ़िया, जो गाने को एकदम उठा देता है. एंड थैंकफुली इस पिक्चर में एक दो गाने हैं जो पुराने गानों की याद दिलाएंगे, पुराने एज इन के 2010s 15s वाले आसपास उसके, मगर ये गाना बहुत फ्रेश है. जब तलक इज एब्सोल्युटली अ बैंगर एट नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट. अब है बारी नंबर 4 की. ये गाना लिस्ट पे नंबर 1 भी रह चुका है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड गाना है इस लिस्ट में. और अब बारी है इसी गाने की, क्योंकि ये गाना थोड़ा सा एक दो पायदान नीचे आ चुका है एट नंबर 4. और गाना है वाओ. गाने का नाम ही यही है जी, वाओ. आरडी सांधू का गाया हुआ ये गाना नंबर 1 भी रह चुका है, मेरे ख्याल में 2 भी रह चुका है. हमारे फज्जू भाई ने रखा था इसे. अभी गाना है नंबर 4, वाओ, आरडी सांधू की आवाज में. बढ़िया गाना है, चंगा गाना है, मजा आ जाएगा सुन के, और इसलिए अपनी जगह पर है. आई डोंट नो अगले हफ्ते क्या होगा, कोई गाना इसे हटा पाए.

0: रहेगा, क्या इसे 5 से नीचे ले जाएंगे या फिर क्या होगा. बट ऑल द बेस्ट टू आरडी संधू. राइट नाउ इट्स एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट. सुनिए और लौट के आइएगा एफएम 107 पर. टॉप 10 ऑन द लिस्ट अभी 3-2-1 बाकी है.
1: एफएम 107 टॉप 10.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो, तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं, तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी एफएम 107

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10. वंस अगेन एफएम 107 की लिस्ट जारी है, 10 से लेकर अभी तक आ चुके हैं सीधा 4 तक और अभी 3-2-1 बाकी है. 10 पे था रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, देन बेजाब सादला मुजरद और नेहा कक्कड़, देन खासियत चांद मेरा दिल से, देन बैरा फिर है तेरा हो जाऊं है जवानी तो इश्क होना है, देन जब तलक कॉकटेल 2 से, फिर नंबर 4 पे वाओ हड्डी संधू और अब बारी है नंबर 3 ऑन द लिस्ट. ये गाना, ये कोलैबोरेशन इतना खास इतना स्पेशल है मैं बता नहीं सकता. ओनली वन गाय कैन डू दिस राइट नाउ और कॉन्स्टेंटली ये जो ड्रॉप करना है कि ये आते ही हिट हो जाना है, ये सिर्फ अभी एक ही बंदा कर रहा है और वो है अपना दलजीत दोसांझ. दलजीत पाजी ने भाई क्या गाना बना दिया यार, ये रांझा. रांझा जो गाना है डेविड गेटा का म्यूजिक है भाई, डेविड गेटा का म्यूजिक लिया है, गुट्टा आऊंगा तो डेविड गुट्टा तो डेविड गेटा का म्यूजिक है साथ में सिया अगेन वंस मोर. और क्या वीडियो है, क्या वीडियो है, वो थिएट्रिकल प्रेजेंस और कैमरे के सामने दलजीत दोसांझ का जो प्रेजेंस है भाई इंटरनेशनल क्वालिटी. वीडियो भी इंटरनेशनल क्वालिटी है, बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल कलर्स हैं एंड एक स्टोरी टेलिंग है पूरे के पूरे गाने के अंदर, वो थिएटर वो स्टेज इट्स ब्यूटीफुल. और प्रॉप्स का जो इस्तेमाल किया है भाई, क्या डायरेक्शन किया गाने का. आई एम नॉट जस्ट ब्लोन अवे बाय द सॉन्ग बट ऑल्सो द वीडियो द विजुअल्स ऑफ इट अमेजिंगली डन. सो नंबर 3 पर है दलजीत दोसांझ, दलजीत पाजी का गाना रांझा, कति जहर गाना भाई. अब बारी है गाना नंबर 2 की, वो गाना जो नंबर 1 से एक पायदान चूक गया. गाना नंबर 2 है एक बंदे का रिटर्न, उसका कमबैक और ये बंदा बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम से. आई एम एक्चुअली इस फैन, बहुत सारे गाने दिए हैं जो एक नंबर हैं एंड वी आर वेटिंग कब आएंगे, फाइनली आ चुके हैं. जस्ट माना कि इज बैक एंड बैक विद अ बैंगर. गाने का नाम है रहो बचके, जानी है साथ में एंड अमरिंदर सिंह भी हैं और लेटेस्ट पंजाबी गानों की लिस्ट में भाई साहब बहुत बढ़िया जा रहा है. वो गाना हरियाणवी में बोल दिया मैंने बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट. सो जस्ट मानक रहो बच के एक पायदान से चूक गया है और ये गाना है एट नंबर

two on the list. और अब बारी है फाइनली FM 107 पर टॉप 10 के गाना नंबर 1 की. FM 107 पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जरूर जुड़े रहिएगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ FM 107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. इस लिस्ट में हो सकता है आपका गाना ना हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, तो प्लीज सेंड अस, लेट अस नो कि कौन सा गाना आपके जहन में है और लिस्ट में नहीं है, वो कितना अच्छा है. लेट्स डिसाइड मिलजुल के. ओके, तो FM 107 कतर हमारे DMs में जरूर जरूर आइएगा एंड बताइएगा जरूर. आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे दोहा वाला कभी के नाम से. सो ऑन द लिस्ट एट नंबर 1, ये ट्रर नहीं करना चाहिए था, मैं ड्रम रूल करना चाहता था. नंबर 1 पे शुभ द गाना शुभ ने गाया है, बाउंस. द ट्रैक इज एट नंबर 1. व्हाट अ ट्रैक. जिस बीट पे इन्होंने गाया है गाना, आई नो शुभ कैन समवॉट रैप, समवॉट राइम, समवॉट सिंग, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं उनके गाने को. मैं क्या बताऊँ, एक अलग किस्म की टोनैलिटी है शुभ की, एक अलग किस्म का जॉनरा है. R&B भी कर लेते हैं वो, हिप हॉप भी कर लेते हैं वो, एक रोमांटिक गाना भी बना लेते हैं. बंदा बहुत बहुत कलाकार आदमी है और ये गाना भी बहुत बढ़िया है, बाउंस. जैसे मैंने कहा ना, इस बीट पे गाना किसी के लिए भी मुश्किल है, किसी के लिए भी. एक ट्रेंड सिंगर को भी बहुत मुश्किल से इस पे लिरिक्स बिठाने को टाइम लगेगा. सो शुभ हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब. ब्यूटीफुल ट्रैक एट नंबर 1, बाउंस. एंड शाउट आउट टू ऑल द पंजाबीज आउट देयर. ये गाना आ चुका है हमारी लिस्ट में नंबर 1. अगले हफ्ते क्या होगा नहीं पता, बट अभी नंबर 1 पर है. एंड एज आई मेंशन्ड, आपको कोई गाना हो जो लिस्ट पे आना चाहिए जरूर बताइएगा. बट फॉर नाउ द लिस्ट इज एंडिंग विद अ बैंगर, शुभ का बाउंस. अब मैं दोहा वाला कबीर आपसे लूंगा इजाजत. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी टॉप 10 के. बट याद रखिएगा कि आपके जो व्यूज हैं ओपिनियन से बड़े मैटर करते हैं. सो डू सेंड अस योर सॉन्ग्स एज वेल. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा. FM 107 टॉप 10 नंबर 3.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। यस, चाहे तो प्यार से ए फॉर अमिता कह लीजिए या फिर सिर्फ आपकी अमिता कहकर भी आप मुझे बुला सकते हैं। वेल, अभी सूरज की सुनहरी किरणें दोहा की स्काईलाइन को छू रही हैं। हाँ, तो जनाब जब सूरज की पहली किरण, सुबह सुबह की बात कर रही हूँ, दोहा के स्काईलाइन को छूती है तो शहर धीरे धीरे जाग रहा होता है। कहीं स्कूल की भागम भाग है तो कहीं किचन में चाय की खुशबू है। पर इससे पहले कि आप ईमेल्स, ब्रेकफास्ट प्रेप और दिन भर की टू डू लिस्ट में खो जाएं, मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए रुकें, जस्ट फॉर अ मोमेंट। क्यों? क्योंकि हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक नई नवेली जर्नी पर, जिसका नाम है मेरी पहचान। मेरी

So yes, जनाब, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू शो, मेरी पहचान। यस, ये शो किस बारे में है धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। पर आज हम बाहर की दुनिया की बात नहीं करेंगे, आज हम उस दुनिया के बात करेंगे जो आपके अंदर है। अक्सर हमें कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी बीवी है, या फिर ये उनकी मम्मी है। लेबल्स, लेबल्स और सिर्फ लेबल्स। पर दोस्तों, आज हम उन लेबल्स को ना हटा कर देखेंगे। आज हम उस औरत को ढूंढेंगे जो दुनिया के बताने से पहले मौजूद थी। फिर चाहे आप 18 साल की हो और सोच रही हो कि क्या मेरी आवाज की कोई वैल्यू है, या फिर आप 90 साल की हो और अपनी फेवरेट चेयर पर बैठकर ये रियलाइज कर रही हो कि मेरी आवाज हमेशा से ही जरूरी थी। ये शो आपका स्पेस है, आपकी महफिल है, आपकी मजलिस है और ये आपका अपना घर है। तो समझ गई आप, ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो ऑल माई ब्यूटिफुल लेडीज, खास तौर से मेरी पहचान में वो सारी बातें होंगी जो आम तौर पर हम करना चाहते हैं या करते हैं लेकिन फिर कहीं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते। सो दिस इज द लेडी शो और यहाँ पर मैन नॉट अलाउड है। एग्जैक्टली तो चलिए अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जुड़ना है 666-22-107 पर, 666-22-107, और बताना है हमें कि कौन है आप जब किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, सोचिए, बताइए कि कौन है आप। यस, आप मुझे जवाब दे सकती हैं 666-22-107 पर। सो वेलकम है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू शो मेरी पहचान पर, और शो की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ जो कि आप सब ब्यूटीफुल लेडीज को डेडिकेटेड है। बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: वेलकम है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मेरी पहचान ये खासम खास शो आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां होगी आपकी कहानी आपकी जुबानी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब पूरा शहर सो रहा होता है और जब कतर की सड़कों पर सन्नाटा होता है तब एक घर की औरत का दिमाग ना सबसे ज्यादा शोर कर रहा होता है। वो रात के 2 बजे उठकर पानी पीते वक्त भी ये सोच रही होती है कि कल बच्चे के स्कूल बैग में स्पोर्ट्स किट रखी कि नहीं, या फ्रिज में धनिया खत्म तो नहीं हो गया, या कल उनकी अपॉइंटमेंट है तो याद दिलाना है। इसको कहते हैं द मेंटल लोड। ये वो इनविजिबल वजन है जो हम हर वक्त उठाते हैं पर इसकी कहीं कोई गिनती नहीं होती। आज हमारा जो थीम हमने रखा है दैट इज द अनसंग स्ट्रेंथ, यानी वो ताकत जिसकी कोई वाहवाही नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता। हम अक्सर जब सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा में लार्जर देन लाइफ हीरोज को केप पहनकर उड़ते हुए देखते हैं, पर मेरे नजदीक असली हीरो वो है जो बिना केप के, बिना थके, बिना चिल्लाए पूरे घर को अपने कंधों पर संभाले हुए है। और तभी मुझे श्रीदेवी जी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का वो एक सीन हमेशा याद आता है और कितनी गहरी बात कही है उस सीन में।
1: मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है।
0: और सच में ये बात मेरे दिल को ना बहुत गहराई से लगी कि जब कोई प्रोफेशनल शेफ खाना बनाता है तो हम उसे शेफ कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं, पर वही काम जब एक माँ, एक बीवी और एक बेटी रोजाना 3 बार करती है तो हम उसे फर्ज, ड्यूटी का नाम दे देते हैं और उसे साइड में रख देते हैं। हाँ, क्यों? क्यों हमारे हाथों के मैजिक को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ लिया जाता है? हम सिर्फ खाना नहीं बनाते, हम यादें बनाते हैं, हम सुकून परोसते हैं, पर इस प्रोसेस में हम अक्सर अपनी खुद की भूख, अपनी थकान भूल जाते हैं। हमें लगता है कि थकना एक गुनाह है, ये आराम मांगना एक कमजोरी है, पर सच तो ये है कि आपका हर छोटा काम एक आर्ट है और आप उस घर की सबसे बड़ी आर्टिस्ट हैं। आज मैं ना थोड़ी गहरी बात करना चाहती हूँ। मैं आज उस औरत से बात करना चाहती हूँ जो शायद अभी एक भरी पूरी डाइनिंग टेबल पर बैठी है, सबको खाना परोस रही है पर अंदर से खुद को ना अकेला महसूस कर रही है। इसे कहते हैं द लोनलीनेस ऑफ मैरिज या द बर्न आउट ऑफ मदरहुड। कभी कभी हम सबके लिए मौजूद होते हैं पर हमारे लिए कोई मौजूद नहीं होता। हम सबका ख्याल रखते हैं पर हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। आपको लगता होगा कि आप एक चेन की सिर्फ एक कड़ी हैं जिसे बस जुड़े रहना है, पर याद रखिए आप सिर्फ एक लिंक नहीं है, आप वो आग हैं जो पूरी चेन को गर्म रखती है, जो उस घर को घर बनाती है। अगर वो आग बुझ गई तो घर ठंडा हो जाएगा। इसीलिए अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और तभी डियर जिंदगी फिल्म में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है ना, एक बहुत प्यारी बात सिखाता है, डोंट लेट द पास्ट क्रिएट योर फ्यूचर। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि अब तो उम्र निकल गई या अब तो मैं सिर्फ एक माँ हूं। नो, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पास्ट में जम गई है। ये एक जीता जागता मास्टरपीस है जिसे आप आज भी अपने हाथों से पेंट कर रही हैं। जी हाँ, हर दिन एक नया मौका है अपने स्टेयरिंग व्हील को वापस पकड़ने का। बिल्कुल सही, जब लगे तब आप वो बन सकती है जो आप हमेशा से बनना चाहती थी। वैसे क्या आप जानती हैं कि साइंस भी आपके साथ है? यस, साइकोलॉजी कहती है कि औरतें मल्टीटास्किंग में मर्दों से ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल कर सकता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमें थकने का हक नहीं है। अगर कुदरत ने हमें मल्टीटास्किंग की ताकत दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई मशीन है। असली स्ट्रेंथ ब्रेक लेने में भी होती है। असली ताकत ये कहने में होती है कि आज मैं थक गई हूँ, आज मुझे ना थोड़ा वक्त चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जब आप आज अपनी रोजमर्रा या यूं कहे डेली की भागम भाग में हो तो एक पल रुक कर खुद से कहें, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बड़ा काम है। आपकी अनसंग स्ट्रेंथ ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। आप सिर्फ एक रोल नहीं है, आप एक रूह हैं, जिसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी पहचान है। हाँ, मेरी पहचान शो पर आप मेरे साथ हैं और आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर के अंदर अपना एक छोटा हुआ ख्वाब वापस जी सकती हैं। तो कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ। फिलहाल एंजॉय कीजिए अगला गाना। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का उन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और मेरी पहचान ये खासम खास शो आपके लिए मैं लेकर आई। तो ये बात बताएं कि अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आसपास के ना माहौल को भूल जाइए, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं अपने घरों की, दोहा के विलास की, अलसद के अपार्टमेंट्स की, वेस्ट बे के ऊंचे टावर्स की। हम उन्हें सजाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, मगर क्या आपने कभी उस घर के बारे में सोचा जिसमें हम हर पल हर लम्हा रहते हैं? हमारा जिस्म या यूं कहें हमारी बॉडी, ये हमारी रूह का पहला और आखिरी घर होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम इसी घर को सबसे ज्यादा जज करने लगते हैं, हम आईने के सामने खड़े होकर सबसे पहले अपने फ्लॉज ढूंढते हैं। अरे ये रिंकल आ गया, ओहो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ये पेट थोड़ा सा मेरा कम हो जाता तो अच्छा था। हम अपने ही जिस्म से एक जंग लड़ रहे होते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि हम ये जंग खत्म कर दें। हमारे जिस्म ने, हमारी बॉडी ने कितना कुछ सहा है, सोचिए जरा। वो पोस्टपार्टम चेंजेस, आपके पेट पर वो स्ट्रेच मार्क्स, और वो कोई फ्लॉज नहीं है दोस्तों, वो इस बात का सबूत है कि आपने एक नए जीवन को, एक नई लाइफ को इस दुनिया में लाया है। वो निशान लाइफ गिविंग स्ट्रेंथ के मेडल्स है। हाँ, वो सफेद बाल जिन्हें हम सिल्वर स्ट्रेंड्स कहते हैं ना, वो गुजरे हुए सालों की कहानी सुनाते हैं। हर एक सफेद बाल के पीछे एक तजुर्बा है, एक सीख है, एक शायद बच्चों की वो शरारतें हैं जिन्हें देखकर हम मुस्कुरा रहे होते थे। वक्त के साथ आने वाली झुर्रियां हमारी मैप ऑफ लाफ्टर है। वो बताती है कि हम कितनी बार दिल से हंसे हैं। हम आईने में देखकर फ्लॉज क्यों ढूंढते हैं, क्यों ना हम विक्ट्रीज ढूंढें। आपका शरीर वो वेसल है जिसने आपको हर हार्ट ब्रेक, हर दुख, हर बड़े सेलिब्रेशन के पार उतारा है। जब आप गिरने वाली थी तो इसी बॉडी ने आपको संभाला है। तो दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि 40 या 50 की उम्र के बाद ना लाइफ ठहर जाती है। लोग कहते हैं अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तुम क्या करोगी। लेकिन मैं यहाँ कतर में ऐसी औरतों को देखती हूँ जो मुझे हैरान कर देती है। मैंने ऐसी लेडीज देखी है जो 50 की उम्र में अपना पहला होम बिजनेस शुरू कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो 60 में पेंटिंग ब्रश उठा रही हैं, क्योंकि उनके बचपन का शौक कहीं दब गया था। मैंने दोहा में ऐसी माओं को देखा है जो बच्चों के ग्रेजुएट होने के बाद वापस यूनिवर्सिटी गई और अपनी डिग्री पूरी की। इट्स नेवर टू लेट किसी भी नए चैप्टर को खोलने के लिए। आपकी उम्र आपकी कहानी को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ एक नया मोड़ लेती है। आपकी बॉडी शायद थोड़ा स्लो हो जाए, पर आपकी विल पावर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे इस वक्त ना कंगना रनौत का क्वीन का वो डायलॉग याद आ रहा है जो कहती है कि मुझे तो लगता है मेरा टेस्ट ही खराब है, पर नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूँ। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मैं खुद के लिए काफी हूँ, आई एम इनफ। ये 5 शब्द हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका जिस्म जैसा भी है, जितना भी बदल गया हो, वो आज भी काफी है। आपको किसी और के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान इससे कहीं बड़ी है कि आप कैसी दिखती है। आपकी पहचान इसमें है कि आप कौन है। तो आज जब आप आईने के सामने जाएं, तो सिर्फ फ्लॉज मत देखिए, अपने हाथों को देखिए जिन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी आंखों को देखिए जिन्होंने इतने सपने देखे हैं, और कहिए शुक्रिया। क्योंकि जब आप अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं, तभी हम दुनिया से लड़ने की हिम्मत पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने ख्वाबों को, अपनी असलियत को छुपा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम टू मच है। आगे हम बात

करने वाले हैं एक ऐसी बात जिसे मैं कहूंगी छुपी हुई मैं। हाँ, ये छुपी हुई मैं क्या है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमको छुपना पड़ रहा है, कैसे उन बाउंड्रीज को सेट करें जो हमारी पहचान बचाती है। हाँ, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी एक शानदार सा गाना आपकी राहों में आ रहा है जब तक है जान फिल्म का। तो कहीं ना जाए, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और खासम खास शो मेरी पहचान सुन रहे हैं आप. अब वक्त है हमारे सबसे खास और हमारे सबसे करीबी सेगमेंट का, छुपी हुई मैं, द हिडन मी. तो दोस्तों, हम सबके अंदर ना एक ऐसी औरत बैठी है जिसे हमने बरसों से अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है. यस, हम उसे बाहर आने ही नहीं देते. और क्यों क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है. कभी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि हम टू मच हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, ज्यादा सपने देखने वाले हैं. और कभी डर लगता है कि शायद हम नॉट इनफ हैं, यानी कि एक अच्छी बेटी नहीं है, एक परफेक्ट वाइफ नहीं है, एक अच्छी दोस्त नहीं है, वगैरह वगैरह. वेल, इस डर की वजह से हम एक मास्क या यूं कहें नकाब पहन लेते हैं. सबके लिए मुस्कुराना, सबकी हाँ में हाँ मिलाना, पर उस नकाब के पीछे वो छुपी हुई मैं घुटन महसूस कर रही है. आज वक्त है उस मास्क को उतारने का. आज वक्त है खुद से दोबारा दोस्ती करने का. तो ये दोस्ती हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं. आपको पता है हीलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? थेरेपी से, किताबों से, हाँ शायद इनसे होती है. मगर सबसे पहले हीलिंग की शुरुआत होती

है बाउंड्रीज से, और बाउंड्रीज की शुरुआत होती है हमारी डिक्शनरी के सबसे छोटे मगर सबसे ताकतवर शब्द से, नहीं यानी कि नो। हम औरतों को ना बचपन से यस, हाँ जी, हाँ कहना सिखाया जाता है। हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं देख लूंगी, पर दोस्तों जब आप अंदर से टूट चुकी हैं, जब आपका जिस्म थकान से चूर हो रहा है और तब आपको ये काम दिए जा रहे हैं, तो आप किसी एक्स्ट्रा काम के लिए, किसी बिना मतलब की सोशल गैदरिंग के लिए नो क्यों नहीं कहती? अगर आप नो कहती हैं तो लोग आपको सेल्फिश समझते हैं। वैसे उसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। नहीं कहना सीखिए। हाँ, क्योंकि जब आप नहीं कहती है ना किसी और को, तभी आप हाँ कह पाती हैं अपने आप को। ये आपकी रूह की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे और कहेंगे कि अमिता मैं खुद को वापस कैसे पाऊं, जिंदगी तो इतनी बिजी है। तो चलिए मैं आपको कुछ बड़ी मजेदार टिप्स देती हूँ जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली, रिक्लेम अ हॉबी। याद कीजिए वो एक ऐसी चीज जो आपको बेइंतहा पसंद है। लाइफ की इस भारी भरकम टू डू लिस्ट से पहले शायद आपको गाने का शौक था, या आप मिट्टी में फूल लगाना पसंद करती थी, मींस लाइक गार्डनिंग, या शायद आप डायरी में शायरियां लिखती थी। आज सिर्फ 15 मिनट निकालिए, सिर्फ 15 मिनट। फोन को साइड में रखिए, बच्चों को उनके पापा के पास छोड़िए और वो काम कीजिए जो सिर्फ आपके लिए है। वो 15 मिनट आपकी इंटरनल बैटरी को रिचार्ज करेंगे एंड इट्स योर सेक्रेट प्लेस। दूसरी बात है कि स्टॉप कंपैरिजंस। जी हाँ, ये सोशल मीडिया ना मतलब है तो बड़ी कमाल की चीज, लेकिन एक हाईलाइट रील है और आपने उसे देख लिया तो हम सोशल मीडिया के किसी भी परफेक्ट घर, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट बॉडी, उसे देखकर ना बिखर से जाते हैं और अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं। याद रखिए, आप किसी और के रेड कार्पेट को अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर मत कीजिए। उनके फिल्टर्स के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानती हैं। आपकी लाइफ एक असली मूवी है, कोई 15 सेकंड की रील नहीं। इस मूवी की डायरेक्टर आप हैं, तो स्क्रिप्ट अभी अपनी मर्जी से लिखिए, ठीक है? और कंपैरिजंस, मैं कहूंगी दिस इज सुकून का चोर। हाँ, उसे अपने घर में मत आने दीजिए। यस, एंड तीसरी सबसे कमाल की टिप, दैट इज चूज काम ओवर गिल्ट। यानी कि हमें बैठने में ना गिल्ट होता है। अगर हम दिन में 10 मिनट के लिए सोफे पर बैठ गए तो दिमाग में घंटी बजने लगती है कि अरे कपड़े धोने हैं, अरे मुझे ये काम करना है, मुझे इनसे मिलने बाहर जाना है। भाई उसके लिए मैं कहूंगी कि शाहरुख खान का डियर जिंदगी का ना वो डायलॉग याद कर लो। अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे ना, तो कोई और ले लेगा। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। हाँ चलिए, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ चुकी हैं। सच में वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। सच कहूं तो आपसे बात करते करते मुझे खुद ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिल का ना बोझ थोड़ा हल्का हो गया। आज हमने कितनी गहरी बातें की है ना, हमने उस अनसंग स्ट्रेंथ की बात की है जिसको हम सलाम करना भूल जाते हैं, बट हमें हमेशा सलाम करना चाहिए क्योंकि वही हर घर की बुनियाद है। हमने अपने जिस्म की कहानी सुनी है और ये समझा कि हर निशान एक जीत की निशानी है। हमने छुपी हुई मैं का हाथ थामा और सीखा कि नहीं कहना कोई गुनाह नहीं है भाई, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। मेरी उम्मीद है कि आज का हमारा पहला एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। वैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जब आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रही होती हैं तो आप कौन होती हैं? वेल, इस पर मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए और ज़्यादातर लोगों ने अपने रिलेशंस के बारे में बताया कि मैं या तो बेटी होती हूँ या माँ होती हूँ, या फिर ये बताया कि मैं उस टाइम कुछ नहीं कर रही होती हूँ, कुछ ने लिखा मुझे समझ नहीं आता है, कुछ ने अपना नाम लिख के भेज दिया। वेल, मैं कहूँगी कि आज का ये शो आपके नाम मैंने रखा था और ये सवाल जिसका जवाब आपने दिया है, मैं कहूँगी इस सवाल के बारे में फिर से सोचें, आज फिर से वक्त निकाल के सोचें और बताएं अपने आप को कि आप कौन हैं जब आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रही होती, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं आपको ना एक मिरर चैलेंज देने वाली हूँ। तो आज जब आप ये शो सुनने के बाद अपने कमरे में जाएंगी तो मैं कहूँगी कि मिरर के सामने खड़ी हूँ, और एक काम कीजिएगा,

आज ही मत चेक कीजिए कि आपके बाल स्ट्रेट हैं कि नहीं, लिपस्टिक सही लगी है कि नहीं. आज अपनी स्किन के पोर्स या रिंकल्स मत गिनिए, ठीक है? आज बस आप अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए, डायरेक्ट अपनी रूह में देखिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मुझे तुम पर बहुत नाज है. बस ये अपने आप से कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना, तो वो एक पार, वो एक ताकत अपने अंदर आती है. और ख़ुद को जब आप पसंद करते हो ना, तो ज़िंदगी जीना बहुत खूबसूरत और बहुत आसान हो जाती है. वेल, हम सबको माफ़ कर देते हैं, पर खुद को क्यों नहीं कर पाते? हाँ, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है. मेरे ख्याल से इसके बारे में हम ना बात करेंगे अगले एपिसोड में मेरी पहचान के. तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है. हाँ, बने रहना है हमारे साथ. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हमारे FM 107 के, उस पर आप जुड़ सकते हैं. और आर्जी अमिता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं. और जाने से पहले मैं कहूँगी कि अपना खूब सारा ख्याल रखें. आई होप कि आज का हमारा मेरी पहचान शो का पहला एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा. तो हमसे आपके फीडबैक्स भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है? 666-222-107 पर. और अभी जाते जाते मैं कहूंगी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देश.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
1: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है, एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें, एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात न सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप।

तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए।

0: और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आरजे सफा और मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा वक्त और स्पेस के इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज राजों के बीच। ये है एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि इस शो का नाम भी है। एक ऐसा शो जो हर एपिसोड में सुनने वालों को एक ऑडियो एडवेंचर पर ले जाता है। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो कहीं खो सी गई हैं, और कभी कभी तो कॉस्मिक मिस्ट्रीज के बारे में भी बात की जाएगी जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। यहाँ हर बात को हम बड़े ही सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी साइंस और फिक्शन का ट्विस्ट भी डाल देंगे भाई, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बात। तो भाई अपनी क्यूरियोसिटी जगाइए, इमेजिनेशन को फ्री छोड़ दीजिए और हमारे साथ इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा बन जाइए। ये है वक्त और स्पेस की दुनिया सिर्फ आपके लिए, यानी एक्सप्लोरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साथियों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए ये कहना तो गलत ना होगा कि अगर मैं कहूँ एक ऐसी लाइब्रेरी जो शहर से ज्यादा मशहूर थी। जरा सोचिए, समंदर के किनारे एक ऐसा शहर जहाँ से हवाओं के साथ साथ इल्म की खुशबू भी आती हो, यानी अलेक्जेंड्रिया। ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं, एक दास्तान का है, और इस दास्तान का सबसे रोशन सितारा था यहाँ की लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये कोई आम सी किताबों की गोदाम नहीं थी साथियों, ये तो उस जमाने का वो सर्च इंजन था जहाँ सब कुछ एक जगह इकट्ठा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ स्क्रोल्स होते थे, लैपटॉप्स नहीं। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक ख्वाब थी, वो भी एक ऐसा ख्वाब जहाँ दुनिया का हर इल्म, हर लिखी हुई बात एक छत के नीचे इकट्ठी हो जाती थी। क्या पोएट्री, क्या साइंस और क्या तारीख, यहाँ सब कुछ अवेलेबल था और लोग यहाँ आते थे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इल्म के समंदर में डूब जाने के लिए। चलिए आपको बताती हूँ कि इस शानदार आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी यूँ शुरू होती है दोस्तों कि लगभग 3rd century BCE में इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया शहर उस वक्त दुनिया का कल्चरल हब बन रहा था। रस्ते रस्ते अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग जबानें, अलग सोचने के तरीके, यानी यहाँ से हर किस्म के शख्स का गुजर हुआ करता था। शहर में बाजार थे, पोर्ट्स थे और बेहतरीन इमारतें भी मौजूद थीं। इसी शहर में एक ऐसा प्लान बना जो सब प्लान से बड़ा था, यानी एक लाइब्रेरी जो सिर्फ इजिप्ट का नहीं पूरी दुनिया का इल्म संभाले। ये आइडिया इतना बड़ा था कि उस वक्त के स्कॉलर्स ने सोचा अगर कहीं कोई चीज लिखी गई है, चाहे फिर वो कहीं भी हो, हमें उसका नुस्खा चाहिए। समंदर से आने वाले जहाजों का एक रूल था, अगर किसी के पास कोई किताब या स्क्रॉल है तो पहले वो लाइब्रेरी आएगी, उसकी कॉपी बनेगी, फिर असली या कॉपी उस शख्स को वापस कर दी जाएगी। जरा सोचिए कितना कमाल का सिस्टम था ना ये, जहां से गुजर रहे हैं वहां पर इल्म भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ऐसा था जैसे आज हमारे फोन्स एयरपोर्ट पे चेक हों और वो हमारी सारी ई बुक्स का बैकअप ले लें। अच्छा, इस लाइब्रेरी के अंदर का माहौल भी बिल्कुल अलग था। यहाँ आकर ऐसा लगता था जैसे आप किसी इल्म के महल में आ गए हों। लाइब्रेरी का डिजाइन कोई बोरिंग शेल्फ और टेबल वाला नहीं था, ये एक पैलेस जैसा था। ऊंचे ऊंचे हॉल, मार्बल के फ्लोर, सूरज की रोशनी के लिए बड़ी बड़ी विंडोज और हर तरफ स्क्रॉल्स के रैक्स। और मजे की बात ये थी कि यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती थी बल्कि डिबेट्स, लेक्चर्स और रिसर्चेस होती थी। स्कॉलर्स का काम था सवाल उठाना और फिर उनके जवाब तलाश करना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ हजारों नहीं लाखों स्क्रॉल्स थे, यानी एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन, पोएट्री से लेकर

लेकर ज्योग्राफी सब कुछ और हर स्कोर में उस वक्त की बेस्ट नॉलेज होती थी। इस लाइब्रेरी के लिए एक हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि लाइब्रेरी का मकसद था जो कुछ भी आज तक लिखा गया है वो यहाँ मौजूद हो। वाह भाई, मतलब ये जगह तो उस वक्त के OTT प्लेटफॉर्म जैसी थी, बस बिना मंथली सब्सक्रिप्शन के। अच्छा, इस दौर में इल्म का समंदर अपने उरूज पर था। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस वक्त का स्कॉलर्स का डिज्नीलैंड था। लेकिन राइड्स की जगह यहाँ आइडियाज के रोलर कोस्टर्स मिलते थे। हर रोज नई सोचने वाली बातें की जाती थी, नई डिस्कवरीज पे ध्यान दिया जाता था और नई थ्योरीज जन्म लेती थी। स्कॉलर्स यहाँ दुनिया के कोने कोने से आते थे, ग्रीस के फिलोसोफर्स, इजिप्ट के मैथमेटिशियंस, इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स और एशिया के फिजिशियंस। यानी हर किसी के पास अपना एक अनोखा इल्म होता था जो वो यहाँ आकर शेयर किया करते थे। लाइब्रेरी का एक और कमाल ये था कि यहाँ सिर्फ किताबें कलेक्ट नहीं होती थी बल्कि ट्रांसलेशन का भी एक बड़ा डिपार्टमेंट था। अगर कोई इल्म किसी जबान में लिखा होता तो उसे दूसरी जबान में तब्दील कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जाती थी। जरा सोचिए, एक ग्रीक स्क्रॉल अरबिक में, एक संस्कृत स्क्रॉल ग्रीक में, एक इजिप्शियन स्क्रॉल लैटिन में। यानी ये था नॉलेज का वर्ल्ड टूर। अगर बात की जाए पढ़ने के स्टाइल की तो स्क्रॉल्स और मेमोरी का मैजिक था। आज जैसे हम किताबें खोलकर पेज पलटकर पढ़ते हैं, उस वक्त स्क्रॉल्स होते थे, जैसे लंबे कपड़े या पेपिरस पे लिखे हुए लफ्ज जो एक रोलर पर लपेटे हुए होते थे। पढ़ते वक्त आप स्क्रॉल को एक साइड से खोलते और दूसरी साइड से लपेटते बंद करते चले जाते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लोग सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि याद भी करते थे, क्योंकि उस वक्त कोई सर्च बार थोड़ी हुआ करते थे। जैसे आज की तरह इंटरनेट खोला, सर्च बार में अपनी क्वेरी डाली और आपको सब कुछ पता चल गया। और तो और लाइब्रेरी में काम करना एक ऐसी जॉब थी इसमें बोर्डरम का तो चांस ही नहीं था। रोज नए स्क्रॉल्स आते, नए लोग मिलते, नए एक्सपेरिमेंट्स होते। स्कॉलर्स अपनी नोटबुक्स यानी उस वक्त के स्लेट्स पर नोट लिखते और फिर रात को लैंटर्न के नीचे उस पर रिसर्च करते। वैसे अगर स्क्रॉल के स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में स्क्रॉल इतने कॉमन हो गए थे कि स्कॉलर्स उन्हें बेल्ट की तरह लटका के घुमा करते थे ताकि सबको पता चले कि भाई मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। ये उस वक्त का एकेडमिक फैशन था। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बाहर एक ऐसा बाजार भी मौजूद था जहां सिर्फ आइडियाज बिका करते थे, है ना इंटरेस्टिंग बात। जरा सोचिए कि आप किसी फिलोसोफर को 5 copper coins दे दें और उसके बदले वो आपको एस्ट्रोनॉमी पर एक अच्छा खासा लेक्चर सुना दे, या किसी को एक छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए तो वो आपको एक पोयम लिख कर दे देगा, वो भी आपके नाम पर। यानी इल्म यहाँ सिर्फ शेल्फ पर बंद नहीं था, सड़कों पर भी घूमता था। इस लाइब्रेरी की बदकिस्मती ये थी कि फेमस होने के बावजूद भी इस लाइब्रेरी को आग निकल गई। चलिए आपको बताते हैं कि आग कैसे इस किताबों के शहर को निकल गई। जरा सोचिए, रात का वक्त, अलेक्जेंड्रिया का आसमान समंदर की नमी से भरा पड़ा हो और मशालों की रोशनी से रोशन भी हो, शहर में हवा हल्की सी तेज चल रही है, लेकिन कहीं दूर एक इमारत के अंदर गर्मी और खामोशी हल्के घने बादल की तरह जमा हो रही है। फिर वो पल आता है कि एकदम से एक चिंगारी उठती है, सिर्फ एक चिंगारी, जो शायद किसी मशाल से उठी या किसी की गलती से, और वो चिंगारी लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए सूखे पेपर्स स्क्रॉल्स तक पहुंच जाती है। आपको ये याद दिला दूं कि पेपर्स कोई आम कागज नहीं, एक ऐसा मवाद है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो लकड़ी से बना होता है। जैसे ही आग एक स्क्रॉल को छूती है, वो चट्टान पे गिरी बिजली की तरह फैल जाती है। हर शेल्फ पर हजारों स्क्रॉल्स, हजारों की तादाद में, हर स्क्रॉल में सदियों का इल्म। आग एक एक शेल्फ को निगलती जा रही थी और धुआं उन ऊंची खिड़कियों से बाहर निकल रहा था जिनसे कभी आसमान से रोशनी आया करती थी। शहर के लोग दूर से देखते ही रह गए उस इमारत को, जो दिन के वक्त इल्म का महल थी, अब रात के वक्त आग का जंगल बन चुकी थी। कुछ स्कॉलर्स ने बहुत कोशिश की कुछ स्क्रॉल्स बचाने की। लोग उन स्क्रॉल्स को लपेट कर बाहर भागने लगे, लेकिन आग का गुस्सा इतना तेज था कि जो एक पल पहले उनके हाथ में था, अगले ही पल वो हवा में राख बन गया था। आग की गरज, लकड़ी के गिरने की आवाजें, लोगों की चीखन पुकार और बीच बीच में एक अजीब सी खामोशी, जैसे कि हर कोई समझ रहा हो कि कुछ ऐसा खत्म हो रहा है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। धुआं इतना था कि यूं लगता था कि उसकी उदासी आहिस्ता आहिस्ता चांद तक पहुंच गई है। समंदर का पानी भी आग के उस अक्स से लाल हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि जलते हुए पेपायरस की एक अलग ही खुशबू होती है, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी दर्द भरी। और उस रात अलेक्जेंड्रिया के आस पास

हवा में वही खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो इन के खत्म होने की गवाही दे रही थी। तो दोस्तों, इस मंजर के बाद जब सुबह हुई तो लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ जली हुई लकड़ी, राख और कुछ टूटे हुए शीशे बचे थे। हजारों स्क्रॉल्स, सदियों का इल्म हवा में उड़ चुका था, जैसे कोई नीला समंदर एक रात में सूख गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ सब कुछ नहीं जला था। कुछ स्क्रॉल समंदर के रास्ते दूसरी लाइब्रेरीज तक पहुँचा दिए गए, और कहीं तो कुछ स्कॉलर्स ने अपनी याददाश्त में पूरा इल्म जिंदा रखा था, और इन्हीं स्कॉलर्स के बदौलत लाइब्रेरी राख से उठकर सफर पर निकल गई। यानी आग ने जरूर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की इमारत को खत्म कर दिया, लेकिन जो चीज स्क्रॉल्स से भी ज्यादा ताकतवर थी वो थी उन स्कॉलर्स की याददाश्त। साथियों, उस वक्त के स्कॉलर्स सिर्फ पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि चलती फिरती लाइब्रेरीज थे। जो कुछ भी वो स्क्रॉल्स में पढ़ते थे वो उनके दिल और दिमाग में उतर जाया करता था। इसलिए जब इमारत जल गई, इल्म का एक हिस्सा इंसानों के साथ जिंदा रहा। कुछ स्क्रॉल्स तो आग लगने से पहले ही दूसरी जगहों पर भेज दिए गए थे, और उनमें से कुछ को स्कॉलर्स अपने हाथों से कॉपी बनाकर छापते थे, जैसे वो कोई आम कागज नहीं थे बल्कि एक खजाना थे। और फिर यही कॉपीज मेडिटेरेनियन के पोर्ट से गुजरकर ग्रीस, रोम और एशिया के शहरों में जा पहुंची, और इन्हीं कॉपीज ने किया इल्म का ग्लोबल टूर। जरा सोचिए, एक ग्रीक फिलोसोफर अपने शहर के छोटे से स्टडी रूम में बैठकर अलेक्जेंड्रिया का स्क्रॉल पढ़ रहा है, जो शायद किसी इजिप्शियन स्कॉलर ने लिखा था, जिसने अपना इल्म शायद किसी इंडियन मैथमेटिशियन से सीखा था। यानी एक स्क्रॉल का सफर 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकता था, बिना इंटरनेट, बिना फोन, सिर्फ जहाजों और याददाश्त के जरिए। और यही वजह है कि आज हम तक कुछ अलेक्जेंड्रिया का इल्म पहुंच गया। एस्ट्रोनॉमी के नोट्स, ज्योमेट्री के रूल्स, हर्बल मेडिसिन्स के फॉर्मूलास, यहां तक कि पोइट्री के टुकड़े भी। क्या आप जानते हैं, जब भी कोई नया स्क्रॉल मिलता, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसी छोटी लाइब्रेरी में रख दी जाती थी। यानी ये उस वक्त का अपना ऑफलाइन क्लाउड स्टोरेज था। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक लेगेसी है, एक ऐसी दास्तान जो हमें आज भी इंस्पायर करती है। अलेक्जेंड्रिया के बाद जब भी कोई नई लाइब्रेरी बनाई जाती, लोग कहते हमें अलेक्जेंड्रिया जैसी लाइब्रेरी बनानी है। यानी ये लाइब्रेरी एक इंस्पायरेशन थी, जिसने दुनिया के बहुत बड़े लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया, जैसे मिसाल के तौर पर इस्तांबुल की लाइब्रेरीज, ब्रिटिश लाइब्रेरी का शुरुआती कॉन्सेप्ट और मॉडर्न एरा का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो भाई, अलेक्जेंड्रिया ने एक बात तो क्लियर कर दी, इल्म को कैद नहीं किया जा सकता, और आग इमारत को खत्म कर सकती है लेकिन आइडियाज को नहीं। इस कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी मौजूद है। यानी अगर आप आज इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको डिजिटल अलेक्जेंड्रिया जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, जहां स्कॉलर्स पुराने स्क्रॉल्स के बचे हुए हिस्से स्कैन करके ऑनलाइन डाल रहे हैं, ताकि वो हर इंसान के पास पहुंच सकें। यानी जो ख्वाब 2300 साल पहले था, वो आज के जमाने में दोबारा जिंदा हो रहा है, लेकिन इस फर्क के साथ कि अब कोई आग इसे छू भी नहीं सकती। हाँ, बस चार्जर लगाना जरूरी है। साथियों, आग ने जरूर अलेक्जेंड्रिया की इमारत को खत्म कर दिया, लेकिन जो चीज स्क्रॉल से भी ज्यादा ताकतवर थी वो थी स्कॉलर्स की याददाश्त। उस वक्त के स्कॉलर्स सिर्फ पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि चलती फिरती लाइब्रेरीज थे। जो कुछ वो स्क्रॉल्स में पढ़ते वो दिल और दिमाग में उतार लेते। इसलिए जब इमारत जल गई, इल्म का एक हिस्सा इंसानों के साथ जिंदा रहा। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का जिक्र जब भी होता है तो लोग ज्यादातर उसकी आग और उसके गुम हो जाने पर बात करते हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट भी मौजूद हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। चलिए उन बातों में से कुछ बातों का वीआईपी टूर हम आपको करवा देते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये एक लाइब्रेरी तो थी ही, और कुछ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी थी। यानी इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें रखी हुई नहीं होती थी, यहाँ स्कॉलर्स एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। एस्ट्रोनॉमी के लिए टूल्स, मेडिसिन के लिए हर्बल गार्डन्स और ज्योमेट्री के लिए डायग्राम रूम्स तक यहाँ पे मौजूद थे। यानी कहा जा सकता है कि ये उस वक्त का हॉवर्ड प्लस नासा प्लस सर्च इंजन सब एक ही इमारत में था। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ आने वाले हर जहाज से इनका टूल टैक्स लिया जाता था। नहीं समझ में आया तो बताती हूँ भाई। अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर आने वाले हर जहाज के पास अगर कोई किताब या स्क्रॉल होता तो वो पहले लाइब्रेरी में आता था। लाइब्रेरियंस उसकी कॉपी बनाकर ओरिजिनल वापस दे दिया करते थे, लेकिन कभी कभी ओरिजिनल लाइब्रेरी में ही रख लिया करते थे और कभी कभी मालिक को कॉपी पकड़ा दिया करते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि ये पायरेटेड वर्जन का रिवाइज था। यानी यहाँ लाइब्रेरी को ओरिजिनल मटेरियल दिया जाता था। और तो और स्क्रॉल्स की डेकोरेशन भी एक आर्ट थी। स्क्रॉल्स पर सिर्फ लिखा नहीं होता था, उनकी आउटर कवरिंग पर आर्ट बनाए जाते थे, गोल्ड इंक, ज्योमेट्रिक डिजाइन।

0: और कभी कभी छोटी छोटी पेंटिंग्स। इससे स्कॉलर्स को दूर से ही पता चल जाता था कि ये स्क्रॉल पोइट्री का है या साइंस का। और अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि आज के कलर्ड बुक कवर्स की शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियंस का सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम भी मौजूद था। यानी कहा जाता है कि यहाँ स्क्रॉल्स को रैंक किया जाता था उनकी इल्म की क्वालिटी के हिसाब से। जैसे आज हम मूवीज को 5 स्टार देते हैं ना, टॉप रैंक स्क्रॉल्स को एक अलग VIP शेल्फ में रखा जाता था जहाँ सिर्फ स्पेशल स्कॉलर्स ही एक्सेस कर सकते थे। इस लाइब्रेरी में एक खोया हुआ सेक्शन भी था। बहुत हिस्टोरियंस मानते हैं कि लाइब्रेरी के नीचे एक हिडन बेसमेंट था जहाँ रेयर स्क्रॉल्स रखे जाते थे। आग में ये हिस्सा जल गया कि नहीं, इस बात का तो कोई कंफर्म सबूत नहीं, लेकिन सोचें अगर वो बेसमेंट एक दिन मिल जाए तो क्या होगा। शायद हम फिर से अलेक्जेंड्रिया के उस असली ट्रेजर को देख सकेंगे। साथ ही जरा इमेजिन कीजिए कि आप उस दौर में वहां होते, एक स्कॉलर के जैसे जिसके हाथ में एक नया स्क्रॉल होता और आपको मालूम होता कि ये स्क्रॉल ऐसी नॉलेज रखता है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, तो आप क्या करते? कॉपी बनाते, उसे छुपाते या पब्लिक को पढ़ाते? यही वो डिसीजंस थे जो उस वक्त के लोगों ने लिए और उनके फैसलों का असर हम आज तक महसूस करते हैं। दोस्तों, सही कहा जाता है कि इल्म कभी नहीं मरता। आग, राख, हवा में उड़ते अल्फाज, ये सब कुछ देखकर लगता है कि अलेक्जेंड्रिया का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी भी तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं था, वो एक सोच थी कि दुनिया का हर इल्म एक दिन हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। सदियां बीत गईं, अलेक्जेंड्रिया की इमारत अब बस तस्वीरों में है, स्क्रॉल्स अब सिर्फ कुछ म्यूजियम्स में ही बच गए हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो कि एक ग्लोबल नॉलेज हब था, आज की लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज और इवन इंटरनेट में जिंदा है। आज हम अपने फोन पर बैठकर किसी भी मुल्क के रिसर्च पेपर को या किसी भी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को या किसी भी शायर की नज़म को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यही अलेक्जेंड्रिया का ख्वाब था, इल्म, वो भी बिना बॉर्डर्स के, बिना रुकावट के। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो मॉडर्न अलेक्जेंड्रिया को यूं कहा जा सकता है कि इल्म आपकी जेब में। अगर आप सोचें आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप एक छोटी अलेक्जेंड्रिया है, हर फाइल, हर PDF, हर सर्च रिजल्ट एक स्क्रॉल की तरह है जो आपके लिए खुला है। बस फर्क ये है कि आपको पोर्ट पर इल्म का टूल टेक्स नहीं देना, इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ वाईफाई का एक पासवर्ड चाहिए होता है। साथियों, अलेक्जेंड्रिया ने हमें ये सबक दिया कि इमारतें गिर सकती हैं, कागज जल सकते हैं, लेकिन आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं। हर दफा जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, आप उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं जो अलेक्जेंड्रिया से शुरू हुई थी। इसलिए चाहे किताबों से सीखे, ऑनलाइन लेक्चर से या किसी उस्ताद से, ये जरूर याद रखिएगा कि आपका सीखना एक तरह से अलेक्जेंड्रिया की आखिरी स्कॉल जिंदा रखने जैसा है। अलेक्जेंड्रिया एक लाइब्रेरी थी जो आग में जली लेकिन कभी नहीं मरी, क्योंकि वो अब हमारे दिमाग, हमारे दिल और हमारे इंटरनेट के सर्च बार में जिंदा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात इसी शो में, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ, एक भूले हुए सिविलाइजेशन या पुरानी टेक्नोलॉजीज जो कि खो गई हैं, या कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए RJ सफा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास।

0: उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
1: दोस्तों साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं जो काफी जरूरी है खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट हैं और स्पोर्टी हैं और स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे अली अल उबैदली के बारे में। अली अल उबैदली कोई फुटबॉलर नहीं है बल्कि एक स्नूकर प्लेयर हैं। जी हाँ दोस्तों, मशहूर स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन किया। अली अल उबैदली ने अपनी कंसिस्टेंसी, फोकस और टेक्निकल स्किल की वजह से गल्फ और एशियन लेवल टूर्नामेंट्स में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। वो कतर नेशनल स्नूकर टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं और कई मरतबा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कतर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अली ने एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स और अरब लेवल कॉम्पिटिशन्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी। उन्होंने डबल्स और टीम इवेंट्स में मेडल्स जीतकर कतर को फख्र महसूस करवाया। स्नूकर और बिलियर्ड्स जैसे हाईली टेक्निकल स्पोर्ट्स में उनकी काम पर्सनालिटी और प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत उनको दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है। उन्होंने कतर में क्यू स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी कामयाबियों की वजह से कई यंग प्लेयर्स स्नूकर और बिलियर्ड्स की तरफ आए और नए टैलेंट को मोटिवेशन मिली। अली अल उबैदली की डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उनको कतर स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक रेस्पेक्टेड नाम बना दिया है। आज भी वो नए एथलीट्स के लिए एक मिसाल समझे जाते हैं और कतर के क्यू स्पोर्ट्स के सफीर के तौर पर जाने जाते हैं। बताता चलूं कि पिछले महीने अली अल उबैदली ने फोर्थ गल्फ गेम्स दोहा 2026 के बिलियर्ड्स और स्नूकर मुकाबलों में 15 रेड स्नूकर सिंगल्स इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक सादा, आसान और बिल्कुल मुफ्त वर्जिश के बारे में बात करेंगे जो हमारी सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैदल चलने या वॉक करने की। जदीद जिंदगी में हम में से अक्सर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और जिस्मानी सरगर्मी कम हो गई है। ऐसे में रोज़ाना चंद मिनट की वॉक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुस्बत तब्दीली ला सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोज़ाना तेज़ कदमों से चलने से दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और ब्लड को काबू में रखने में मदद मिलती है। बाकायदा वॉक दिल की बीमारियों, फालिज और हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरात को कम कर सकती है। सिर्फ 3 मिनट की वॉक आपके दिल को ज़्यादा फ़ाल और सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। क्या आप जानते हैं कि पैदल चलना सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। वॉक के दौरान जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो जहनी दबाव, बेचैनी और थकन को कम करते हैं। सुबह या शाम की हल्की वॉक मूड को खुशगवार बनाती है और इंसान को ताजगी और सुकून का एहसास दिलाती है। अगर आप रोज़मर्रा की मसरूफियात से थकावट महसूस कर रहे हैं तो चंद मिनट की वॉक आपकी तवानाई को बहाल कर सकती है। वॉकिंग कैलोरीज बर्न करने का एक आसान तरीका है या जरिया भी है। बाकायदा चलने से वजन को मतवाजन रखने, मसल्स को मजबूत बनाने और जिस्मानी बर्दाश्त में इजाफा होता है। इसके अलावा वॉक हमारे जॉइंट्स की हरकत को बेहतर बनाती है और बढ़ती हुई उम्र में जिस्म को ज़्यादा फाल रखने में मदद देती है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक को जो शामिल कर लें तो उससे लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ियों का अगर इस्तेमाल करें और करीबी अगर शॉप तक आपने जाना है तो गाड़ी के बजाय आप पैदल जाइए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए। दोस्तों या अहले खाना के साथ शाम की सैर को मामूल बना लीजिए। ऑफिस में हर घंटे के बाद चंद मिनट चलने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि सेहतमंद जिंदगी के लिए लंबी और मुश्किल वर्जिश जरूरी नहीं है। रोजाना थोड़ा सा चलना भी बड़े बड़े जो फवायद हैं वो दे सकता है। पैदल चलना एक आसान आदत है जो दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, जहनी सुकून फराहम करती है और जिस्मानी फिटनेस में इजाफा करती है। आज ही अहद करें कि रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग सेगमेंट इको स्विच का। यहां हम बात करते हैं उन छोटी-छोटी हैबिट्स की जो हमारी जिंदगी को बेटर बनाती हैं और हमारी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव असर देती हैं। भाई आज हम किस पे बात कर रहे हैं सफा? आज हम बात कर रहे हैं फूड वेस्ट कम करने पर। देखिए, आप बुफे डिनर पर गए, ठीक है, प्लेट्स फुल कर ली क्योंकि सब डिशेस आपको अच्छी लग रही थी, पैसा दिया है तो मैं सबकी सब खाऊंगा। लेकिन जब वापस टेबल पर आते हैं ना, तो आधा खाना तो प्लेट में ही रह जाता है कि नहीं? या फिर अगर घर में भी हो, घर में अक्सर औकात ही होता है कि ज्यादा खाना बन जाता है और फ्रिज में हम ज्यादा खाने को रख देते हैं ये सोच कर कि भाई हम बाद में खा लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, हम उसे भूल जाते हैं या यूज नहीं होता वो और वेस्ट हो जाता है। देखिए, ये सिचुएशंस हम सबके साथ होती हैं, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक पर आते हैं। देखिए, फूड वेस्ट दुनिया भर में एक सीरियस इशू माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बहुत बड़े अमाउंट में खाना वेस्ट होता है, जबकि दूसरी तरफ कई लोग बेसिक फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ एथिकल इशू नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल इशू भी है। देखिए, अब सवाल ये है कि फूड वेस्ट प्रॉब्लम क्यों होता है? इसका कुछ आप कह लें, इसकी कुछ कॉमन वजहें मैं आपको गिनवा देती हूँ। पहली वजह ओवर सर्विंग है, हम जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं। दूसरी वजह है प्लानिंग का ना होना, घर में या शॉपिंग में ओवर बाइंग करना। तीसरी वजह लेफ्ट ओवर को इग्नोर करना, जो खाना बच जाता है उसे प्रॉपरली रीयूज नहीं करते हम। और भी कई वजह, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इको स्विच क्या है इस केस में। देखिए, सिंपल सा आइडिया है, उतना लो जितना खा सको और जो बचे उसे समझदारी से रीयूज करो ना। देखिए, अब बात करते हैं हम, क्या बात कर लें फूड वेस्ट कम करने की, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। जब खाना वेस्ट होता है ना, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए वाटर, एनर्जी और रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो भी जाहिर बात है वेस्ट ही हो रहे हैं ना। दूसरा फायदा है लैंडफिल्स वेस्ट कम होता है। फूड जब गार्बेज में जाता है तो वो डीकम्पोजिशन के दौरान हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे मीथेन, जो कि क्लाइमेट चेंज का आपको पता है कि बड़ा अफेक्ट करती है ये। तीसरा फायदा है सेविंग, जितना कम फूड वेस्ट होगा उतना ही आपका ग्रोसरी बिल भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा फायदा है अवेयरनेस और ग्रेटिट्यूड। जब आप खाने को वैल्यू देते हैं ना, तो आप नेचुरली ग्रेटफुल और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन जाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आप रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, आपने एक बर्गर या बिरयानी की प्लेट ऑर्डर की है जो आपको पसंद है। आप सोचते हैं भाई मैं पूरा का पूरा खा लूंगा, लेकिन हाफ खाकर ऑलरेडी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो फुल हो गया। अब या तो आप उसे वेस्ट कर देते हैं या पैक करवा लेते हैं। यहाँ सिंपल डिसीजन फर्क क्रिएट करता है साथियों। अच्छा, घर का भी एग्जाम्पल ले लें, चलें बाहर का छोड़ें। होता है कि अक्सर अम्मी या बेगम ने ज्यादा खाना बना लिया, फैमिली मेंबर कभी कभी एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि हम बाद में खा सकें। लेकिन अगर प्लानिंग ना हो ना, तो वो एक्स्ट्रा खाना बाद में वेस्ट हो जाता है। इसका सलूशन प्लानिंग है, ना कि ओवर कुकिंग। अच्छा चले, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी ले लेते हैं। इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि आप स्मॉल पोर्शंस लें, मील प्लानिंग करें, लेफ्ट ओवर्स को क्रिएटिवली यूज करें, फ्रिज मैनेजमेंट सीखें। भाई फ्रिज मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है। और हाँ, खाना है तो उसे शेयर भी करें नेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, ये आप कर सकते हैं। तो भाई दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ रेस्टोरेंट्स और बुफेस बहुत कॉमन है, फूड वेस्ट और भी इजीली हो जाता है। इसीलिए यहाँ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी हैं। अच्छा, अगर हम नंबर के परस्पेक्टिव से देखें ना, अगर एक हाउस होल्ड रोज सिर्फ 10% फूड वेस्ट रिड्यूस करे, तो महीने के एंड तक नोटिसेबल सेविंग हो जाती है। और अगर एक कम्युनिटी लेवल पर ये हैबिट अडॉप्ट हो, तो फूड डिमांड और वेस्ट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो साथियों, फूड सिर्फ एक चीज नहीं है, खाना सिर्फ एक चीज नहीं है जो हम खा लेते हैं। ये मेहनत है, रिसोर्सेज और वक्त का रिजल्ट है। जब हम इसे वेस्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि पूरा सिस्टम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हर निवाला कीमती है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, इको स्विच एक और

0: सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon RJ Mavish. Aur aaj hum baat karenge muskurahat ke bare mein. इस्लाम हमें सिखाता है कि छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ा सवाब रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सदका है। एक सच्ची और प्यारी मुस्कुराहट किसी का दिन बदल सकती है, उसका दिल खुश कर सकती है और उसे नई उम्मीद दे सकती है। आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशानी और टेंशन में रहते हैं, इसलिए एक मुस्कुराहट उनके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी नेकियां ढूंढते रहते हैं, जबकि इस्लाम हमें बहुत आसान और सिंपल रास्ता बताता है नेकियां कमाने का। आज से हर किसी से मुस्कुरा कर मिलिए, बात करने पर उसका हाल पूछने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का खूबसूरत सा मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे मावश के साथ।

0: Messi. Cricket ho. And he's
1: hooked that away. That's four runs.
0: Football ho. या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
3: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
4: FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कतर्स विजन एज अ गाइड फॉर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। दोस्तों वो कहते हैं ना कि वन स्टेप 2030, जब विजन हो तो फैसले स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग तब होती है जब हर फैसला सिर्फ आज के लिए ना हो बल्कि कल को भी जहन में रख कर लिया जाए। कतर का नेशनल विजन 2030 हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्लियर गाइड का काम करता है। जब कोई नया प्रोजेक्ट या पॉलिसी बनती है तो पहले ये देखा जाता है कि क्या ये विजन गोल्स के मुताबिक है या नहीं। चलिए मैं समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त सिर्फ रोड्स नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिस्टम्स और एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। एजुकेशन में भी सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि फ्यूचर स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है। देखिए विजन कतर को यही सिखाती है कि शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म नुकसान के दरमियान फर्क कैसे किया जाए। इसी वजह से डिसीशंस इमोशनल नहीं प्लानिंग बेस्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कतर का नेशनल विजन 2030 एक कंपास की तरह है जो हर फैसले को सही डायरेक्शन देता है। एंड वन स्टेप टू 2030 का मतलब है हर सोचा समझा हुआ फैसला। इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करती या तब तक एक सक्सेसफुल इकोनॉमी नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वहाँ के लोग शहरी खुश ना हो, और शायद इसी को कहा जाता है लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलबींग। देखिए सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ा लेना असल तरक्की तो है नहीं। कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो डेवलपमेंट अधूरा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है। दोस्तों जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो, तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेहतराज ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर वापस दे और उसके लिए बेहतरीन अज्र है। उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा, उसे कहा जाएगा, आज बशारत है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, यही है बड़ी कामयाबी। उस रोज मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे, जरा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं, मगर उनसे कहा जाएगा, पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर आजाब। वो मोमिनों से पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? मोमिन जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, मौका परस्ती की, शक में पड़े रहे और झूठी तवक्कोआत तुम्हें फरेब देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और आखिर वक्त तक वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। लिहाजा आज न तुमसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुला खुला कुफ्र किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारी खबरगीरी करने वाली है और ये बदतरीन अंजाम है।